0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं। प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे पूजा नमस्कार।
1: नमस्कार रणनीति उषा सभी को मेरा नमस्कार। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन सार्वजनिक संस्थाओं में वित्तीय अपराधों के खिलाफ अपने अभियान को मजबूत कर रहा है। 2023 में पारित फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एक्ट के तहत प्रकाशित नई दिशा निर्देशों के साथ एक रिपोर्ट में FCC ने सार्वजनिक संस्थानों से मानकीकृत संचालन प्रक्रियाओं के मैनुअल, जिसे SOPM कहा जाता है, तैयार करने का निर्देश दिया है। कई सार्वजनिक संस्थाओं में किए गए निरीक्षणों के दौरान आयोग ने संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि सार्वजनिक खरीद, लाइसेंस जारी करना और अनुबंधन प्रबंधन में दस्तावेजीकृत प्रक्रियाओं की अनुपस्थिति पाई है। FCC ने यह भी बताया कि बेहतर प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए सुझाई गई लगभग 90% सिफारिशें अब तक लागू नहीं की गई है। FCC चेतावनी देते हैं कि जो संस्थाएं इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं करेगी उन्हें मुकदमा का सामना करना पड़ सकता है और 50,000 रुपए से 5,00,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। रिपोर्ट में सार्वजनिक संस्थाओं के लिए स्पष्ट लक्ष्य भी तय किए गए हैं। जनवरी 2027 तक मुख्य गतिविधियों का 60% और सहायक कार्यों का 50% दस्तावेजीकृत होना चाहिए। लगभग 28 जमाकर्ताओं जो सिल्वर बैंक के प्रशासनिक निगरानी में आने से प्रभावित हुए हैं ने एकजुट होकर समूह बना लिया है। वे इस मामले की जांच के लिए स्वतंत्र जांच की मांग कर रही है ताकि मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके और अपनी बचत वापस पा सके। उन्होंने इस बैंक में 1 मिलियन रुपए से 74 मिलियन रुपए तक जमा किए थे। बैंक पर संदेह है कि इसने संदिग्ध कर्ज दिए हैं जिनकी कुल राशि 7.7 बिलियन रुपये है। विदेश में मालदीव्स में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 5 इटाली नागरिकों की मौत हो गई है। रोम स्थित विदेश मंत्रालय ने बताया कि माना जा रहा है कि ये डाइवर्स 50 मीटर यानी कि 164 फीट गहराई पर गुफाओं में जाने का प्रयास कर रहे थे। ये हादसा वावू एटोल में हुआ है। और अब मौसम का हाल। हमारे इलाके पर अस्थिर और हल्की हवाएं बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय बादल कुछ घिरे रहेंगे और हल्की वर्षा होगी। देश के पूर्व, दक्षिण और ऊंचाइयों पर कोहरा भी छाया रहेगा। रात को देश के दक्षिण पूर्व में बादल कुछ घिरे रहेंगे और बारिश होने का भी अनुमान है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर

0: से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से पश्चिमी एवं दक्षिणी लगूनों में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 23 से 25, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:31 पर, सूर्यास्त शाम 5:41 पर होगा। तो मौसम की इस खबर के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम मिलेंगे 6:30।
1: You're listening RM Free Radio.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم उस मौला के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा नहीं। मेरे अजीज सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। यौम जुम्मा मुबारक हो। आपकी खिदमत में ये खाकसार नागुद निसार हाजिर हैं और आपकी समागतों की नज़र है उर्दू प्रोग्राम सबाल खैर। जुम्मातुल मुबारक की इन लतीफ़ घड़ियों में हम दिल की अता गहराइयों से आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हुर्मत वाला महीना माह दुलकादा हमारे दरमियान जारी व सारी है। वो मुबारक महीना जिसका ताल्लुक हज बैतुल्लाह से जुड़ा हुआ है, वो अजीम इबादत जिसके लिए अहले ईमान दुनिया भर से मक्कातुल मुकर्रमा का रुख करते हैं, जहां दिल मदीने की हाजरी के लिए धड़क उठते हैं, जहां लबों पर लब्बैक सजती है। सामईन, इसी खूबसूरत निस्बत की एक झलक आज हम अपने प्रोग्राम में पेश करेंगे। उम्मीद है आप आखिर तक हमारा साथ देंगे। आइए हस्ब मामूल सबाल खैर का बाकायदा आगाज कलाम रब्बानी की तिलावत से करते हैं। बागौर वदब समात फरमाइए।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, मक्का मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा की हाजरी की सआदत पाना ऐसा अनमोल मौका है कि नसीब वालों को ही मिलता है। उस पर जितना शुक्र किया जाए कम है। जब भी किसी को ये पुरमुसर्रत मौका मुयस्सर आए, उसे इस उम्मीद के साथ ये सफ़र करना चाहिए कि हरमैन तय्यबैन की मुकद्दस फ़जाओं में जाऊँगा, वहाँ हर वक्त होने वाली रहमतों से फैज़ हासिल करूँगा, अपने गुनाहों को बख्शवाऊँगा और अपने तारीख दिल को जिलाऊँगा। तेरा

मोहतशिम सामईन, मक्का मुकर्रमा वो मुकद्दस मकाम है जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म पर काबतुल्ला की बुनियाद रखी। खाने काबा को देखना खुद एक इबादत है। तवाफ़ काबा करते हुए दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, आँखें नम हो जाती हैं और रूह अल्लाह तबारक व ताला की अजमत में खो जाती है। मकाम इब्राहीम, सफ़ा मरवा की सगी, जमजम का पानी, हर जगह अल्लाह तबारक व ताला की निशानियों से लबरेज

सामईन कराम, उर्दू महफिल सबा अल खैर में निसार अख्तर एक बार फिर आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता है। इसमें कोई शक नहीं कि मदीना मुनव्वरा शहर मोहब्बत, शहर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत, अमन और रहमत का गहवारा है। मदीने की फ़ज़ा में एक ख़ास महक, एक ख़ास नूरानियत है।

जो हर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को छू जाती है। वहां हर कदम पर सीरत नबवी की खुशबू बिखरी हुई है। सामईन, अब सुनिए वो कलाम जो हमें मदीने की गलियों में ले जाती हैं।

सामईन मोहतरम, जो लोग हज के लिए जाते हैं उनको हज के बदले में ऐसे अजीमुलशान इनामात से नवाजा जाता है जिनके बारे में सुनने के बाद हमारे दिल में भी उस मुकद्दस मकाम की ज़ियारत का अरमान मचलने लगता है। हाजियों के लिए दिल से बस यही दुआ निकलती है कि अल्लाह तबारक व ताला उनका सफ़र आसान फरमाए, उनकी इबादात को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और उनको सलामत अपने अहलो अयाल में वापस लौट

सामईन जी वकार, ज़िक्र मदीना आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाईस तस्कीने दिलो जाहें। मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत और उसकी जुदाई में दुनिया की सबसे ज़्यादा ज़बानों में कसीदे लिखे गए, लिखे जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ज़वजल ता क़यामत लिखे जाएंगे। सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इश्क मदीना, याद मदीना, गम मदीना, ज़िक्र मदीना, फ़िक्र मदीना और बार बार हाज़िरी मदीना की तौफीक अता फरमाए। आमीन।

इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, वो जहां भी रहे मदीने में है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसी शेर के साथ हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम सबाल खैर अपने अख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है आपने इसे ज़रूर पसंद फरमाया होगा। जो हुज्जाज कराम इमसाल हज के लिए गए हैं, उन तमाम खुश नसीबों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला उनका सफ़र आसान फरमाए, उनकी इबादात को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और उनको सलामत अपने अहलो अयाल में लौटाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, इन दुआया कलिमात के साथ अब निसार अख्तर आपसे इजाज़त लेता है। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगले जुम्मे को फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

0: Continuous music. RM3.
1: मारी शक्ति स्वरूपा मारी जगदम्बा विष बुजाली कंकुना पगले रंगवा आवती चौदह भुवन मा तेज पथरावती आवो नवराते मारी मावड़ी जोग माया

प्रणाम श्रोताओं, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हैं पूजा। कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन केवल श्वासों का प्रवाह नहीं,

0: अपितु कर्मों और भावनाओं का दर्पण है। इसी कारण कहा जाता है कि अपने सत्कर्मों के साथ अपने जीवन को सार्थक बनाएं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं।
1: वाह

श्रोताओं, भक्ति वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और कर्म वह मार्ग है जो मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है।

शक्ति में शक्ति कार्यक्रम जारी है। श्रोताओं, केवल हाथ जोड़ने से भक्ति पूर्ण नहीं होती, सच्ची भक्ति तो हृदय की पवित्रता में बसती है। आइए इसी के साथ भक्ति में शक्ति कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एक सुंदर भजन के साथ।

श्रोताओं, जब मन में दया, वाणी में मधुरता और व्यवहार में विनम्रता आ जाए, तभी भक्ति का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है।

भक्ति में शक्ति कार्यक्रम जारी है। श्रोताओं, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल समय उसे प्रदान करता है। कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे समय आने पर जीवन का सत्य बनकर सामने आते हैं।

श्रोताओं, कहा जाता है भक्ति मन को संयम देती है और सत्कर्म जीवन को सम्मान। श्रोताओं, इसी के साथ हम भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के अंत का पहुंचे हैं। भक्ति आत्मा की शक्ति है और कर्म मनुष्य का वास्तविक परिचय। चलिए, इसी विचार के साथ कार्यक्रम के अंत का पहुंचे हैं। आप सभी के मन में भक्ति और आस्था रहे, बस यही कामना है। पूजा को अनुमति दीजिए, मेरी ओर से सभी को प्रणाम और शुभ दिन।

0: Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.
1: घड़ी मिलाती चली इस समय दिन के 12 बजे हैं।
2: टाइम चेक दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा से। पूजा आपको नमस्कार।
3: नमस्कार पूनम, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हमारी सड़कों पर 11 खतरनाक स्थान यानी ब्लैक स्पॉट पहचाने गए हैं, जहां यातायात को बेहतर बनाने और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य शुरू किए जाएंगे। पहले काम में से BF38 मार्ग पर ब्रह्म स्थान यानी कि पूर्वी क्षेत्र में ट्रैफिक लाइट लगाना है। ये कार्य ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी यूनिट के बजट से 2.4 मिलियन रुपए के निवेश के साथ किया जाएगा। और पर्यावरण को ध्यान में रखकर देश में 61 कंट्रावेंशंस जारी किए गए हैं। इमरजेंसी रेस्पॉन्स सर्विस के सहयोग से पर्यावरण पुलिस द्वारा ये कार्रवाई चिकुनगुनिया और डेंगू बीमारी के कारण चलाई गई है। मॉरिशस के कुछ अस्पतालों में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रणाली समाप्त कर दी गई है। पोर्ट लुइस के जीतू अस्पताल में नई ट्रोमा इमरजेंसी यूनिट का उद्घाटन किया गया, जिसमें अब कलर कोड प्रणाली लागू होगी। मरीजों का इलाज उनकी स्थिति की गंभीरता के आधार पर लाल, पीला या हरे कोड के अनुसार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू के अनुसार ये प्रणाली मरीजों के लिए जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर को संभालने में मदद करेगी। विदेश की खबरों में

0: ट्रंप शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन से उभरने वाले सबसे स्पष्ट परिवर्तन में से ये है कि बीजिंग अब सीधे तौर पर ताइवान को अमेरिका के साथ व्यापक आर्थिक संबंधों से जोड़ रहा है। पिछले एक साल के व्यापार वार्तालाप में ताइवान को मुख्य रूप से कई क्षेत्रों में से एक माना गया था, खासकर सेमीकंडक्टर, अमेरिका ताइवान व्यापार संबंध और ताइपेई को अमरीकी हथियारों की बिक्री के मामले में। बीजिंग से कल आए संदेश से संकेत मिलता है कि ताइवान के प्रति अमरीका का दृष्टिकोण दो पक्षों के बीच दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता के लिए अब एक पूर्व शर्त बनता जा रहा है। और उधर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील के ठीक एक दिन बाद भारत ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क को बढ़ाकर 15 कर दिया है। इस बीच उत्तराखंड के व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। सरफरा व्यापारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए गुरुवार को प्रदेश भर में वहां पर अपील के विरोध में प्रदर्शन किए। देहरादून के व्यापारियों ने आयात शुल्क में बढ़ोतरी और जनता के लिए सोना न खरीदने की घोषणा के प्रति अपना सांकेतिक विरोध दर्ज किए। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। रॉयल रोड मोसलमान सेंट अंद्रे में 45 साल के 45 years old श्री महेंद्र सिंह परगास, जिन्हें लोग अश्विन नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दोपहर के 3 बजे इनकी पत्नी प्रतिमा परगास के मकान रॉयल रोड मोसलमान सेंट अंद्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोसलमान सेंट अंद्रे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टूडे 8:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। अब सोचने वाली बात ये है कि वो अजनबी हसीना है तो कौन, अब क्या पता मिल जाए वो हमारे प्रोग्राम में।
1: सफर
0: आरएनटी रेडियो मनोरंजन। जी हाँ, आपका स्वागत करती हूँ मैं वेदिता। नमस्कार, कैसे हैं आप? 12:09 हुए हैं। देखो भाई देखो, अभी देखते देखते 15 दिन निकल गए इस मई महीने में। सोचने वाली बात है ना, अभी अभी लगता है नया नया साल शुरू हुआ था और अभी 5वां महीना है ये, और फिर उसके बाद और 15 दिन में ये महीना भी चला जाएगा। ज़िंदगी तो हमारी धीरे धीरे करके बस लाइफ में हम वही कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, वही हमारा 9 to 5 जॉब, वही हमारा घर पे जाके खाना बनाना, कपड़े ये वो वगैरह वगैरह यही होता है। इंसान जिए तो कब जिए, इंसान को चाहिए कि अपने काम में भी खुशियाँ ढूंढ ले। इंसान को चाहिए कि उसको हर एक चीज़ में वो खुशियाँ ढूंढ ले जिससे उसके मन में कोई बोझ ना रहे और जिंदगी लगे कि हाँ भाई हमने जिंदगी जी है। कोशिश हमारी पुराने गीतों के साथ यादों को महकाने का और आपके लाइफ को थोड़ा जबरदस्त बनाने का साथ देते रहिए। डोंट फॉरगेट टू कॉल मी, नंबर है 4028070।
2: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

0: सुहाना सफर।
1: मैंने एक गीत लिखा है और चलिए उन्हीं गीतों के साथ हम भी आगे बढ़ते हुए अगला गाना गुनगुनाते हैं। आपका स्वागत करती हूँ मैं वेदिता आप ही के अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर।
2: RM3 Radio।
3: Jumna,

0: अरे भाई झूम ही तो रहे हम सभी झूम रहे हैं
1: सुहाना सफर
0: चलिए जी यहाँ पर सुहाना सफर हमारा जो प्रोग्राम है इसमें अब हमारे जो दोस्त हैं हमारे जो लिसनर्स हैं उनके नाम भी शामिल करने का टाइम आ गया है सो हमारे साथ अभी टिकटॉक पे बहुत सारे दोस्त हैं हमारे साथ हैं शर्मिला जीतन यादव शर्मिला संगीता जीतन एंड शर्मिला बीना दीप्ति गंदावरी और गाना होगा आपके लिए केतिका हाय केतिका अंशनी कैसी हो आप और

0: मुफ्ता खान सलाम आपका हम वेलकम करते हैं थैंक यू सो मच और सबने पूछा कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ अर्चना डांडा फ्रॉम न्यूजीलैंड हाय वेलकम आज अर्चना जल्दी आ गई लैला मदारन आपका भी हम स्वागत करते हैं और यहाँ पर किरण थैंक यू सो मच रवि शालिनी नीरव साथ दे रहे हैं और साथ में संध्या लक्ष्मोदू हमारे साथ हैं और खुशी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है संध्या जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एंड भामा हमारे साथ है अनिल राम भजन जी वी हैव शारदा लखनौत नमस्कार स्वागत है एंड बेंसी हमारे साथ लैला जी थैंक यू सो मच रीता सी गुलाम आपका भी हम वेलकम करते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में प्रोग्राम है सुहाना सफ़र चलिए सफ़र तो हमारा शुरू कब से हो गया है अब इसको आगे ले चलते हैं और जी शीला मार्टिन आपके लिए भी पेश हमारा प्रोग्राम का अगला गाना
1: RM3 Radio. Radio. Radio.
0: चलिए जी रीना जी का वेलकम करते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में एंड लीना के लिए भी साथ में है इंद्रानी कैसे हो सिस्टर प्रिया आपके लिए भी ये गाना

चलिए यहाँ पर एक गाने की फरमाइश आई है और ये है मरियम की तरफ से, कहती हैं आपको देखकर बस एक ही गाना याद आया, छोड़ दो आंचल। लीजिए गाना चल पड़ा।

0: दीवाना कहेगा कि सुहाना सफर का हिस्सा बन जाओ और रेडियो मनोरंजन सुनते जाओ।
1: सुहाना सफर
0: जी हाँ, सुहाना सफर हमारा प्रोग्राम है और सफर में हम सफर बने हैं अभी कविता दोली, विमला, प्रेमा गोखूल, साथ में इंदिरा रामदोनिया, इंदिरा मुतावर सिंह, कहते हैं उनके दोस्त प्रकाश और राजेश के लिए गाना होगा, राजेश के लिए जरूर। साथ में ये गाना हम मरियम के नाम एक बार फिर डेडिकेट करेंगे। रेखा तस्लीमा, रेखा जी हमारे साथ हैं, उन्होंने गाने की फरमाइश की है, नोट किया है। प्रिया लक्ष्मण, उनकी बेटी प्रिया, उनके दामाद, उनके पति, उनकी पूरी फैमिली और साथ में रेना, चेष्टा, सबके लिए गाना मांगा है। निशा भवानी का हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। वहीं पे हम कुणाल को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, उनके सास ससुर, उनकी बीवी, उनकी पूरी फैमिली, गंगाराम फैमिली की तरफ से। एंड वेलकम करते हैं सना, शवि और मीला रामा का हमारे प्रोग्राम में। प्रीति दाव जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं और आपने भी गाने की फरमाइश की है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया ये कौन सा गाना है। ओके, सना कहती है इट्स माय बर्थडे, ओ माय गॉड हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो आपको हम सब की ओर से विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे, उम्मीद करती हूँ कि यू विल गेट लॉट्स ऑफ सरप्राइज।

0: ठीक, वरना नेक्स्ट गाना आपके लिए, नाज के लिए। और हम माया रामदोस जी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। जय माता दी, स्वागत है नासिम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। नव पलट हमारे साथ हैं, उनके लिए भी वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और साथ में ये गाना अंश आपके लिए, प्रियंका गोयल नमस्ते, साहिल वेलकम, और यहाँ पर कीर्ति चतु का भी हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं।
1: You're listening to RM3 Radio.

0: ना सफर हाँ ना सफर
1: भाई दिल का भंवर कुछ भी कहे, यहाँ पर हमारा दिल तो यही चाहता है कि गाने कुछ ऐसे कमाल के हो कि हमारे जो लिस्नर्स हैं वो इन्हें प्यार से गुनगुनाते रहे, गाते रहे और अपना मूड बनाते रहे। हमारी एक छोटी सी कोशिश आपके होठों पे मुस्कान लाने की रहती है और कुछ नहीं। आप खुश रहें, आप जहाँ भी रहें हमारे साथ जुड़े रहें, आपका मूड अच्छा हो। और वैसे भी आज फ्राइडे है, फ्राइडे में वैसे भी मूड अच्छा ही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारा फ्राइडे में बहुत सारा काम आ जाता है तो इंसान का जो मूड है थोड़ा बिगड़ भी जाता है। लेकिन घबराएगा नहीं, हम हैं आपके साथ, आपके पास और आपके लिए एक से एक बढ़कर खूबसूरत गाने लेकर आई हैं जो आप और हम साथ में सुनेंगे और साथ में मिलकर गुनगुनाएंगे। तो यहाँ पर वैसे एक प्यारा सा गाने हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और भाई गाने की बात चली है तो यहाँ पर आँखों ही आँखों में बहुत सारे इशारे भी हो रहे हैं, तो चलिए यादों की इस खूबसूरत बारात को आगे ले चलते हैं। गाना हम शेख के नाम डेडिकेट करेंगे, सूरज है ट्रियो।

पुलिसी वी हैव माला एजी अंजू और साथ में आरव के लिए गाना होगा बेटा आरव आपके लिए सुल्ताना खंदाई का वेलकम है अंजी आमुगम नासिम की आज वेडिंग एनिवर्सरी है तो चलिए यादों को संजोते हैं और आपके लिए गाना स्पेशली ये प्यारा सा गाना हम अपनी प्यारी सी परी के नाम डेडिकेट करते हैं

खूबसूरत सा गाना आपके लिए तोहफा, जी हमारी ओर से गिफ्ट आपके लिए। चलिए जी नेक्स्ट गाना जो होगा हम रानी यलेश सूबी कल्याणी हरी साथ में मिस्टर नूरुद्दीन के लिए। वी हैव अक्षय शैला वाइतलिंगम, आपका वेलकम है। देवीना अनसुया सभी हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे गाने एंजॉय कर रहे हैं, खूब मस्ती हो रही है यहाँ पर। आप सबों का हम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। इस गाने की भी फरमाइश आई है और ये गाना हमें लेके जा रहा है 1 बजे के समाचारों की ओर। चलिए विशाल आपके लिए नेक्स्ट गाना हर हर महादेव, एंड बोना पीछे आपको भी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रिसी वैन और समीर दिलेन, रीना साथ में है, बबलू, और यही गाना हम डेडिकेट करेंगे माला बुदू आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड साथ में ये गाना वृंदा सोहन के लिए जो कि हमारे साथ हैं फ्रॉम इटली, उनके सभी फैमिली के लिए जो मॉरिशस में हैं।

0: ये सुनते हैं समाचार सुमेरा अकबर अली के साथ। नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। संक्रामक बीमारियों के चलते अधिकारी अपने कदम और ठोस कर रहे हैं। सिर्फ एक ही दिन में देश में पर्यावरणीय जुर्मों के 61 कंट्रावेंशन जारी किए गए। इनमें सार्वजनिक जगहों पर कचरे फेंकना शामिल है। इमरजेंसी रेस्पॉन्स सर्विस के सहयोग से पर्यावरण पुलिस ने एक कार्रवाई चलाई। चिकुनगुनिया, डेंगू और लेप्टोस्पायरोसिस के मामलों के चलते ये कदम उठाए जा रहे हैं। साल के आगाज से इलीगल लिटरिंग के लिए 507 कंट्रावेंशन जारी किए जा चुके हैं। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल नादेक मुर्शिद में गांजे के भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं लेगा। आज सुबह एएमए पर नादेक के सीईओ कुणाल नाइक ने एमबीसी को दिए एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की। उनके मुताबिक नादेक का किरदार सलाह मशवरा करना है, जानकारियों और स्थितियों का जायजा लेना है, मुख्तलिफ तरीकों पर अध्ययन करना है और गांजे को लेकर नीति में सुधार लाने के संदर्भ में सिफारिशें पेश करना है। आखिरी फैसला संबद्ध अधिकारियों और सरकार पर मुनहसर है। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर हमारी सड़कों पर 11 ब्लैक स्पॉट्स पाए गए हैं। गाड़ी चालकों की आवाजाही को बेहतर करने और राहगीरों की हिफाजत के लिए इन ब्लैक स्पॉट्स पर काम किया जा रहा है। सबसे पहले देश के पूर्व स्थित ब्रह्मस्थान की B-38 सड़क पर सिग्नल लाइट स्थापित किए जाएंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी यूनिट में 2.4 मिलियन रुपए निवेश किए गए। ये कार्य 11 जून को खत्म होंगे। विदेश में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के नए मामले सामने आए हैं। पूर्वी इतुरी राज्य में करीब 246 संक्रमित मामलों की पुष्टि की गई है और 65 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।

0: really don't agree with this song कि दिल उसे दो जो जान दे दे. भाई जब जान दे दिया इंसान ने तो दिल देने का क्या फायदा है ना. लगता है आपको फायदा है? सुहाना सफर बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, लेकिन हम यहाँ पर जान देने की या लेने की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ प्यार देने की और लेने की बात करते हैं. वेलकम, स्वागत है आप सबों का हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर. सुहाना सफर रेडियो मनोरंजन पर वेदिता के साथ यहाँ पर रानी, योलेश, सुबी, कल्याणी, हरी, मिस्टर नूरुद्दीन, साथ में दिवीना, अनसुया का वेलकम करते तो हैं ही. चलो कोई बात नहीं, दोबारा फिर से वेलकम कर दिया. मनोज, तरुण राम, कविता, खूबलाल, प्रिया, ललिता, साथ में मनीता, आरती, लीना, इन साथ में है वीना. आनंद और रानी के लिए गाना होगा प्रणाम संजय. ओमी, बबीता, नीमन, आपका स्वागत है. विजय, विद्यालय को साथ में है राजीव मंदाकिनी यानी कि जीवमान. एंड वी हैव बनीता, शमिला, चुनीलाल, रियाज, महरेज, आपका वेलकम करती हूँ मैं. रागिनी जी, आपका भी स्वागत है. वीरेन कुमारी, ललिता, रोशन, आपने गाने की फरमाइश की है, गाना मेरे पास है. साथ में है नीलिमा, दीपक बिहारी और अनिल जी, आप सबका हम स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में. कहीं कहीं तो लोगों ने ये भी लिखा है कि विनीता जी आपसे गाने मांगने की कोई हमें आप ऑप्शन देते नहीं हो, सारे गाने जो आप चलाते हो हमारे पसंद के होता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है. चलो ठीक है. और यहाँ पर वैसे तरुण जो हैं बहुत अच्छा गाते भी हैं, उनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ, बहुत अच्छा गाते हैं और उनको हमारे गाने अच्छे लग रहे हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, इससे हमारे लिए और कौन सी बड़ी बात हो सकती है. तो चलिए नेक्स्ट गाना जो होगा रागिनी जी हम आपके लिए डेडिकेट करते हैं. और साथ में ये जो गाना होगा हम तेज सनातन आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के नाम चला रहे हैं. मंजुला कौले सर, आपके हस्बैंड के लिए गाना होगा. और वहीं पर स्वराज हमारे साथ हैं, कहते हैं कि स्वराज और मॉर्गन के लिए गाना. चलिए जी नेक्स्ट गाना. पमा विशाल, स्वागत आपका प्रोग्राम में. और साथ में यही गाना हम चला रहे हैं आपके लिए. और ये गाना होगा थामुतरन, आपके लिए वनक्कम. एंजनी कोपन, आपके लिए भी गाना होगा. और साथ में सभी हमारे लिसनर्स थे.
1: You're listening RM Free Radio.

वैसे यहाँ पर अंजनी काम कर रही है, कहती है हमारे कैंटीन के टीम के लिए गाना चलाए ना, अभी हम भोपाल में हैं और कभी खाना खाने भी आइएगा, खाने के टाइम पे तो हम यहाँ पर आपके साथ होते हैं, है ना? कोई बात नहीं, एंजॉय योर फूड एंड लीजिए गाना आपके लिए।

0: RL3 Radio. Radio. Radio.
1: भाई हमारे तो लिसनर्स आज मूड में आ गए हैं, कहते विदिता जी क्या ये रोमांटिक गाने, आज तो फ्राइडे है, थोड़ा सा तो डांस करवा दो। माया जी को बड़ा डांस करने का मन है। चलिए शोभा, रेशमा, अनिल, सिमला बिजादर, सरेना, नीरू और अनसुया का वेलकम करती हैं। एंड हमारे साथ यहाँ पर वनीदा। वनीदा हेलो स्वीटी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।

और उनको मेरी खांसने की अदा बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच, क्योंकि वो म्यूजिक समझती है ना, वो भी गाती है तो उनको पता है। चलिए जी, हम सबका वेलकम करते हुए गाना पेश है आपके लिए, एंजॉय करें।

0: सारा जमाना अगर हसीनों का दीवाना है तो फिर दीवानी कहां गई, चलिए जानते हैं।
1: RM3 Radio.
0: ये गाना हम खास तौर पे चला रहे हैं अंजू के लिए जो कि कनाडा से हमें सुन रही है। हेलो अंजू, वेलकम।

0: शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, यस लता जी के साथ आवाज चित्रकार की, और बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा गाना खास आपके लिए, आपके फ्राइडे को बनाने के लिए और भी जबरदस्त। सुहाना सफर और बताइए, सफर सुहाना अभी नहीं बनेगा तो कब बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, चलिए इनसे मिलते हैं। हेलो
1: हेलो, हाय नमस्ते, आ गई हूँ मैं हंसते
0: हंसते। आशा जानू कैसी हैं? आशा
1: सुना रही हूँ
0: आज। आशा जब भी आती हैं ऐसे ही आती हैं, है ना?
1: जैसे आपकी अदा निराली है, हम थोड़ा बहुत कोशिश कर लेते हैं।
0: हाँ, कोशिश कामयाब हो जाती है, वैसे कोशिश इंसान को करनी चाहिए। बताइए आज आप क्या लेकर आई हमारे लिए?
1: तो इतने मस्ते मस्ते गाने चल रहे हैं, तो अपनी तरफ से भी एक मस्ती वाला गाना लाए हो।
0: मैं एक्सपेक्ट वही कर रही थी आपसे, आपको पता भी है
1: जी।
0: कौन सा गाना? डिस्को डांसर।
1: सुपर डांसर है ना? ये मैं कंफ्यूज होती हूँ कभी, डिस्को डांसर लगता है पर वो गाना सुपर डांसर
0: मेरे ख्याल से सुपर डांसर है।
1: सुपर डांसर तो मूवी है, डांस डांस।
0: हाँ, क्योंकि डिस्को डांसर डांस डांस दो मूवीज आई थी मिथुन दा की, और ऐसे में थोड़ा मुश्किल होता है, डांस डांस है डिस्को, दोनों में तो डांस ही कर रहा है ना बेचारा।
1: तो दोनों में से अगर
0: बेचारा
1: आप वो सुपर डांसर वाला गाना लगा दीजिएगा, और खास तौर पर टुडे इज वर्ल्ड फैमिली डे, तो आई विश ऑल फैमिलीज हैप्पी फैमिली डे, एमबीसी फैमिली और जितने भी लिसनर्स हैं सभी फैमिलीज के लिए अपने

0: पूरे जानू परिवार की तरफ से
1: जी
0: और हैप्पी फैमिली डे।
1: थैंक यू।
0: फैमिली के साथ झूमिए, नाचे गाइए, वेदिता जी के साथ जुड़े रहिए।
1: बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एंड थैंक यू, आप जब भी आती हैं हमारे साथ कोई ऐसा गाना ज़रूर आप मांगती हैं जिससे हमारे जितने भी लिसनर्स हैं ना उनका भी मूड बन जाता है।
0: जी वीकेंड है ना।
1: हाँ कह सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, आपका गाना हम थोड़ी देर में चलाएंगे। फिलहाल अभी के लिए एक गाने की फरमाइश आई थी कालिया फिल्म से, वो गाना हो जाए।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: प्रोग्राम है सुहाना सफर और सफर हमारा इतना खूबसूरत हो जाएगा ये मुझे पहले से ही पता था ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं था मैं जानती हूँ कि जब भी यहाँ पर सुहाना सफर प्रोग्राम शुरू होता है जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पर आते हैं सबके गाने यहाँ पर एक से एक बढ़ के होते हैं फरमाइश कभी कुछ ज़्यादा हो जाती है लेकिन कोई बात नहीं हम यहाँ पर कोशिश करते हैं गाने फिट करने की यहाँ पर हम औरो और आकांक्षा का वेलकम करते हैं घोंगुब में हैं अभी कावाश में काम चल रहा है तो दोनों काम भी करवा रहे हैं और साथ में हमारे गाने भी एंजॉय कर रहे हैं थैंक यू औरो एंड आकांक्षा और साथ में ये गाना जो है वैसे इनके लिए किसी ने मांगा था और उनका ही नाम मैं भूल गई हो सके तो माफ़ कर देना हाँ नितिश ने मांगा था ठीक है तो नितिश आपके लिए स्पेशल ये गाना हमारे साथ वैद्य भी है और वैद्य ही कहती है कि भाई डांस डांस करके तो हम तो थक गए जबकि मनीता कहती है कि ये जो गाना आपने चलाया था शोला जो भड़के इसमें भगवान जी का हाँ उनका नाम था ना भगवान तो उनका डांस कर करके बड़ा ही मज़ा आया चलो थैंक यू नुश का हम वेलकम करते हैं और साथ में यहाँ पर हम अक्षय का भी स्वागत करते हैं प्रोग्राम में माया जी आपके लिए भी गाना थोड़ी देर में हम चलाएंगे साधना के लिए और रागिनी के लिए भी और दिनेश गोपी जी स्वागत है एक बार फिर से आपका चलिए बबीता जी नमस्कारम कैसी हैं आप और बबीता का वेलकम है विश्वनाथ प्रयाग हमारे साथ हैं कहते हैं कि ट्रिनिदाद से हम आपका साथ दे रहे हैं एंड थैंक यू सो मच उम्मीद करती हूँ कि सिर्फ गाने सुन नहीं रहे हैं बल्कि हमारे गानों पे डांस भी कर रहे हैं ज्योति गिरदारी आई एम फाइन थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद गौरी अमृता नमस्कार आसफा हाशमी आपके लिए गाना होगा रफ़ी जी के तो बहुत सारे गाने हमने चलाए अभी और उनमें से एक हमारा फेवरेट है गुलाबी आँखें वो हमने चलाया था साधना है मोदी ब्लॉन्च से और रयांश प्रणाम आपको अंशीना आपका भी स्वागत है
2: You're listening RM Free Radio Radio Radio
1: तो जैसे यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आशा जानू ने गाने की फरमाइश की थी वो गाना हम लेकर आए हैं एनटीआर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े हैं आप विदिशा थैंक यू माला जी चलिए गाना होगा आपके लिए और साथ में ये गाना हम ज्योति जी आपके लिए शिवम आपके लिए भी गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं और साथ में कविता अन्नू का वेलकम करते हैं हमारे सब प्रोग्राम में तो माया जी मोहताज ब्लॉन्च में हमें सुन रही हैं उम्मीद करती हूँ गाने पे डांस जरूर करेंगी

चलिए जी, सुपर डांस से तो आ भी गई और भामिनी नक्चेदी आरती सदासीवन शाहिद हैं पाकिस्तान से, कर्नेल सिंह इटली से, सपना राम तोहल बिजादर शोभा जो कहती हैं कि बैच में 1984 की आज 42nd ईयर हो गया उनका नर्सिंग का, सो कंग्रेचुलेशंस टू यू। वैसे इटली हो, पाकिस्तान हो और फिजी आइलैंड हो, न्यूजीलैंड से साथ दे रहे हैं, साउथ अफ्रीका से साथ देते हैं, कनाडा से भी एक मैसेज आया था आज सुबह, थोड़ी देर पहले। फ्राइडे का दिन है, मूड तो बनाना ही पड़ेगा।

0: खूबसूरत सा गाना आपके लिए स्पेशली डेडिकेट करते हैं उन तमाम दोस्तों के लिए जो साथ दे रहे हैं हमारे और हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर, राधा सामी हमारे साथ हैं, गुड आफ्टरनून। और हमारे साथ आयशा जुड़ गई हैं, चलिए उनके लिए भी होगा ये गाना।
1: RL Free Radio, Radio, Radio.
0: चलिए जी, इस गाने की फरमाइश आई है पाकिस्तान से। शाहिद जी ने कहा है उनकी पूरी फैमिली के लिए गाना हो जाए जो साथ में हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, टिकटॉक पे लाइव हैं। थैंक यू जी। आयशा का हम स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, जो अभी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और माधुरी आ गई हैं बहुत देर से सही, लेकिन आई तो सही। चलिए उनके लिए भी गाना डेडिकेट करते हैं और साथ में ये गाना होगा फॉर बैप्स हेलेन। क्या बात है, आपको मजा आया, हमें जानकर अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आश रूपलाल के लिए भी गाना होगा। सायरा बानू भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ज्योति गिरधारी आपका भी स्वागत है।

0: सुहाना सफर
1: सुहाना सफर है हमारा और यहाँ पर रोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं. एंड रोहन थैंक यू सो मच. मशयूक साली जी आपका भी हम वेलकम करते हैं. वी हैव एश फ्रॉम साउथ अफ्रीका. मैंने कहा ना हमारी आवाज़ हर जगह पहुँचती है. और सुनीता उनके पति आनंद के लिए और ये गाना होगा मामा गीता सुरवा की तरफ से उनकी बेटी विदुषा सुरजन के लिए जिनका आज बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे आपको. ललित मोहन आपका स्वागत करते हैं. सब बढ़िया सब ठीक. आपके आने का इंतज़ार था. आप आ गए बहुत अच्छा लगा. अनिता परतोब आपको हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट फ्राइडे. फ्लिकॉम्फ्लैक्स से अनिता जी ने हमें याद किया है. और यहाँ पर जो अगला गाना होगा अभी मूड हम थोड़ा बदलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर जो अगला गाना होगा इसके साथ तो हर कोई डांस करेगा. अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला गाना क्यों, क्योंकि आपको भी पता है हमको भी पता है हम सभी माधुरी दीक्षित देने के बहुत बड़ी फैन हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी बॉलीवुड में फिल्म अबोध के साथ इन 1984. फिर उसके बाद तेजाब मूवी आई 1988 में और फिर दिल बेटा हम आपके हैं कौन दिल तो पागल है. कितने सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते. राम लखन त्रिदेव थानेदार किशन कन्हैया साजन खलनायक राजा इतने सारे फिल्मों में उन्होंने काम किया है. तो चलिए उनको याद करते हैं. आज उनका जन्मदिन है तो उनको हमारी सभी फैंस की तरफ से हैप्पी बर्थडे.

घड़ी इशारा करी है कि विदिता के जाने का टाइम हो गया है, तो एक माधुरी की तरफ से दूसरी माधुरी दीक्षित के लिए नेक्स्ट गाना भी होगा। तरुण ने कहा कि आज का सिलेक्शन तो वाव था और यहाँ पर आनस हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल्याणी जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पर थैंक यू, मैं अपना ख्याल रखूँगी, पैदही सी यू बाय, और सना उनका भी बर्थडे है। तो चलिए नेक्स्ट गाना जो होगा हमारे तमाम उन लिसनर्स के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे गाने एंजॉय कर रहे हैं। चलते चलते प्रीति, दुखित राम, देवराम, राम लगन, रितु, विमला, लक्ष्मण, रेणुका, सभी के लिए जो साथ दे रही हैं, थैंक यू। मिलते हैं मंडे को इसी समय 12 बजे आपके प्रोग्राम में, जो है सुहाना सफ़र।

0: दोपहर के ठीक दो बजे हैं। देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर हमारी सड़कों पर 11 ब्लैक स्पॉट्स पाए गए हैं। गाड़ी चालकों की आवाजाही को बेहतर करने और राहगीरों की हिफाजत के लिए इन ब्लैक स्पॉट्स पर काम किया जा रहा है। सबसे पहले देश के पूर्व स्थित ब्रह्मस्थान की B38 सड़क पर सिग्नल लाइट स्थापित किए जाएंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी यूनिट में 2.4 मिलियन रुपए निवेश किए गए हैं। ये कार्य 11 जून को खत्म होंगे। मुर्शिद में लाए जाने वाले पार्सलों पर काबू रखने के लिए नई टेक्नोलॉजियों को शामिल करना और खतरों का संचालन करने वाली प्रणालियों को मजबूत करना, इसी मकसद से मुर्शिद रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक के साथ कोरियन कस्टम सर्विस के एक डेलीगेशन ने आज जूनियर मंत्री से मुलाकात की। धनेश्वर दामगी ने कहा कि ड्रग तस्करी और गैर कानूनी पैदावारों के बढ़ते खतरों का संचालन करते हुए सरकारी सेवाओं को डिजिटलाइज करना सरकार का विजन है। आज फेडरेशन डी ट्रावायर्स यूनी प्रेस से मुखातिब हुआ टेक्सटाइल वर्ल्ड निट्स के 3 कारखानों के करीब 550 कर्मचारियों की हालत पर बात की गई, जो एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आत्मा शांतो ने उन्हें उनकी तनख्वाह चुकाने में देरी का उल्लेख किया। उन्होंने एक जुटाव का भी ऐलान किया। विदेश में चीन की यात्रा पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत का आखिरी राउंड खत्म कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये सत्र बहुत ही कामयाब और संतोषजनक रहा, जिसे भूला नहीं जा सकता। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बात को ऐतिहासिक और संघ मेल की हैसियत करार दी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।

0: गीत नृत्य और परंपरा के श्रोताओं को। रेडियो से तो जुड़े ही हैं पर फेसबुक लाइव भी हम जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज की टीम में अपर्णा आप तक पहुंचा रही हैं कार्यक्रम, दीपशिखा उनके साथ हैं और प्रोडक्शन सीट पर जैनेश जी हैं। श्रोताओं, पिछले दो सप्ताह हमने गीत नृत्य पर बातचीत की, आज एक मोड़ लेता है हमारा कार्यक्रम और हम संस्कृति और परंपराओं से जुड़कर आज बात करेंगे, क्योंकि आज के जो अतिथि हैं प्रोफेसर सत्यपाल सिंह जी, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: आप ICCR चेयर, जो कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन अर्थात भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ये जो संस्था है सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने का कार्य करती है, इसके द्वारा आप यहाँ तक महात्मा गांधी संस्थान में ICCR चेयर के पद पर हैं। संस्कृत और इंडियन फिलॉसफी अर्थात भारतीय दर्शन शास्त्र के अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर के साथ साथ संस्कृत से PhD के साथ एडवांस डिप्लोमा इन लिंग्विस्टिक्स और झाझर गुरुकुल से शास्त्री रहे हैं। 34 वर्ष का आपका लंबा अनुभव है अध्यापन क्षेत्र में। आप इससे पहले विजिटिंग फैकल्टी के अंतर्गत भी मॉरिशियस यात्रा कर चुके हैं, आप पधार चुके हैं मॉरिशियस और आपकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इग्नू जो ओपन यूनिवर्सिटी हम कहते हैं उसमें भी आपके 25 लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो श्रोताओं, मैं CV पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, क्योंकि पृष्ठ पलटते जाएंगे CV समाप्त नहीं होगा, बहुत लंबा परिचय है, आप उनको सुनेंगे तो आप स्वयं जान पाएंगे कि आप किस से क्या जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। तो हार्दिक स्वागत के साथ साथ मैं सीधा प्रश्न आता है मेरा कि हम जो सामाजिक व्यक्ति हैं हमारे लिए संस्कार क्यों आवश्यक हैं, क्योंकि संस्कार जब हम कहते हैं तो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार हम जानते हैं, सभी जो भी सुनता है 16 संस्कार की बात करता है, पर संस्कार हमारे लिए जीवन में क्यों आवश्यक हैं, ये सबसे पहला प्रश्न है मेरा।
1: आपके प्रश्न के उत्तर से पहले मैं मॉरिशस वासियों का, अंजो जी आपका और MBC का, इसमें जितने अपने लोग इस कार्यक्रम को संभाल रहे हैं पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं, और विशेष रूप से ICCR का जिन्होंने मुझे यहां भेज करके ये अवसर प्रदान किया। तो सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं सबको और आप सबका धन्यवाद करता हूं हृदय से। आपका प्रश्न है कि ये संस्कार क्यों आवश्यक हैं।
0: हम सब सामाजिक प्राणी हैं, तो हम क्यों हम संस्कारों से जुड़े, क्या लाभ है उससे?
1: बहुत सामयिक प्रश्न है और ऐसा ज्वलंत प्रश्न है जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। मैं देखता हूँ कि मॉरिशस में जो संस्कारों को अभी तक जीवित रखा हुआ है, बल्कि उसकी उसकी जो ग्रेविटी है, उसकी जो सघनता है, वो भी मुझे कहीं कहीं दिखाई देती है। मैं संस्कारों पर बात करने से पहले जो आपका पहला प्रश्न है कि क्यों आवश्यक है, इस पर बात करना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ, उचित समझता हूँ। वस्तुतः क्या है कि हम लोग संस्कारों को एक रिचुअल समझ करके, एक परंपरा समझ करके आगे बढ़ा रहे हैं, ये सत्य है।
0: पिताजी ने किया तो मुझे भी करना है।
1: मेरे घर की परंपरा हम करते हैं
0: जी,
1: बिना अग्नि के चारों तरफ फेरे लगाए शादी नहीं होगी, करना है।
0: हाँ।
1: डेथ हो गई, अंत्येष्टि करनी है, वो उतना सब ठीक है, लेकिन वस्तुतः ये है क्या
0: जी
1: संस्कार? देखिए, हम लोग आज एक समस्या से जूझ रहे हैं और वो समस्या हमारी नई पीढ़ी की है। आजकल हमारे बच्चे भी हमारी परंपराओं को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे करते जा रही है, भारत में भी ये है, यहाँ भी है, सब जगह। लेकिन ऐसा क्यों? उसका बड़ा कारण ये है कि हम उसकी जो वैज्ञानिकता है संस्कारों की, उनका जो महत्व है, उनकी जो उपयोगिता है, उसको अगली पीढ़ी तक पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं। हम स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं
0: तो कैसे पहुँचाएंगे?
1: मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हम स्वयं इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इसको निभा रहे हैं तो ये है क्या। ये एक बड़ा वो है। मैं इस बात को इस तरह से समझता हूँ कि जो हमारी हजारों वर्षों की पुरानी परंपरा है, हमारे ऋषि महर्षियों ने एक संस्था को खड़ा किया जिस संस्था का नाम है संस्कार, और उसमें मुख्य रूप से 16 संस्कारों को रखा गया, संख्या ऊपर नीचे हो

0: रहती है वो बहुत महत्व नहीं रखता। लेकिन संस्कार है क्या? देखिए, आज आप किसी विद्यालय में एक बच्चे को भेजते हैं तो क्या बनाते हैं? डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, आप CA बनाते हैं, आप साइंटिस्ट बनाते हैं, इकोनॉमिस्ट बनाते हैं, बहुत सारे फील्ड्स में आप बनाते हैं। डॉक्टर में भी आप उसकी वेरियस जो अलग अलग शाखाएं हैं उसमें स्पेशलिस्ट बनाते हैं
1: जी।
0: लेकिन आप बताइए, आपने कभी मानव बनाने की, मनुष्य को मनुष्य बनाने की कोई चेष्टा की?
1: बिल्कुल नहीं।
0: क्या हमारे पूरे पाठ्यक्रम में इस बात पर ध्यान दिया गया कि हम मनुष्य के, हमारे बच्चों में जो मनुष्यता के भाव हैं, जो मानवीय संवेदनाएं हैं, उनको कैसे जीवित रखा जाए, आगे बढ़ाया जाए? क्या हमने कोई प्रयास किया? शायद नहीं, शायद
1: बहुत कम परिवारों में है।
0: परिवारों में भी है वो बहुत सामान्य है,
1: बिल्कुल
0: बहुत डेलिब्रेट नहीं है
1: जी।
0: अनजाने में जो परंपराएं चलती आ रही हैं हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: वस्तुतः ये जो संस्कारों की जो विधा है ये कुछ नहीं है, ये मनुष्य के निर्माण की संपूर्ण विधि है जो जन्म से पहले प्रारंभ होती है और
1: गर्भाधान से,
0: जन्म से पहले गर्भाधान संस्कार
1: जी,
0: पुंसवन और सीमंतोन्नयन, तीन संस्कार जन्म से पहले हो जाते हैं
1: जी,
0: वहां से ये शुरू होती है। इसका मतलब है कि जब हम तैयारी अच्छी करते हैं तो जो उसका फल है वह भी अच्छा मिलता
1: है।
0: देखिए, आपने यदि निर्माण करने का कोई उपक्रम नहीं किया तो जो चीज पैदा होगी ना, देखिए आप अपने बगीचे में
1: फूल लगाते हैं,
0: फल के पौधे लगाते हैं, फूल लगाते हैं, वो एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, उसकी एक व्यवस्था होती है।
1: बिल्कुल।
0: और यदि जंगल में अपने आप उगता है तो टेढ़ा मेढ़ा, कहीं कुछ कहीं कुछ, उसकी प्रूनिंग नहीं होती, उसकी काट छांट नहीं होती, उसका उसके निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती
1: जी।
0: मैं कभी कभी एक शब्द प्रयोग करता हूँ, हमारे यहाँ दो शब्द प्रयोग में आते हैं अंग्रेजी में, एक शब्द है प्रोडक्शन, एक है क्रिएशन
1: जी।
0: हमारा माता पिता का परिवार का काम प्रोडक्शन है, ऐसा हमने समझ लिया
1: है।
0: ये क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो परंपरा थी, माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करती है, वो निर्माण कैसे करती है? वो गर्भ में जब बच्चा होता है उससे पहले से वो तैयारी करती है, और जब गर्भस्थ शिशु होता है तो उसका निर्माण करती है। वस्तुतः होता क्या है कि जो हमारे संस्कार हैं, जिसको हम गर्भाधान संस्कार कहते हैं, वो जीवन का प्रारंभ बिंदु है।
1: बिल्कुल।
0: एक किसान खेत में एक बीज बोता है, उससे पहले उस मिट्टी की पहचान करता है, उसकी उर्वरा शक्ति को पहचानता है, उसकी जुताई करता है, उसमें जो खरपतवार है उसको बाहर निकालता है, बीज को, अच्छे बीज का चयन करता है।
1: यही हम चूक जाते हैं,
0: तब वो
1: सही
0: सामान्य अनपढ़ किसान जो मेरे पूर्वज यहाँ आए, मेरे भारतवर्ष से आए, उन्होंने जो फसलों को बोना शुरू किया उससे पहले वो खेत की जुताई भी करते थे। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी को मैंने हल जोतते हुए देखा है, उनके साथ काम भी किया खेतों में, तो हम पहले उसको तैयार करते हैं। क्या हम कभी एक अपने घर में नवीन आगंतुक बच्चे के लिए क्या तैयारी करते हैं? बस माँ के गर्भ में जो आने जा रहा है, जो बीज है, वो जो शुक्र है, क्या उसके लिए हमने कोई तैयारी की?
1: जी नहीं,
0: कभी नहीं करते।
1: कभी
0: तो फिर जो होगा सो होगा, फिर आपको शिकायत करने का, हमें शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है कि हमारा बच्चा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बच्चा बात नहीं सुनता, बड़ों की बात को नहीं मानता, घर की परंपराओं को नहीं सुनता, कोई अधिकार नहीं रह जाता है। पहला काम जो सबसे है संस्कारों का, संस्कार का मतलब रिचुअल्स एक पक्ष है, लेकिन एक्चुअल वस्तुतः जो संस्कार का अर्थ है, मनुष्य के जो, जिसे हम कहें कि मानस विकास है, मानसिक विकास है, जो चिंतन की धारा है, उसको एक दिशा देना। आप वो करते हैं जो आप सोचते हैं, और सोचते क्या हैं? जो आपने अपने घर में देखा, आपने पास पड़ोस में देखा, आपने TV, आजकल तो मीडिया है, मीडिया पे देखा, प्रिंट मीडिया में देखा, विजुअल मीडिया में देखा, उसको आप अपने अंदर ले जाते हैं। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं ना, ये क्या करती हैं? ये ज्ञान को बाहर से लेती हैं, अंदर पहुंचाती हैं। अब बाहर क्या निकलेगा? जो अंदर गया,
1: जो गया है
0: वही है। और जब वो निकलेगा तो फिर जैसा गया वैसा निकल रहा है। ये हमारी जरूरत थी कि जब हम हमारी परंपरा में जब बच्चे का गर्भाधान के लिए हम तैयारी करते थे, तो उससे पहले हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य पालन की व्यवस्था थी, स्वाध्याय की व्यवस्था थी, हमारे यहाँ बालिकाएं जो थी वे भी पढ़ती थी, बालक भी पढ़ते थे, और एक निश्चित मैच्योर्ड एज के बाद विवाह होता था। जो बालिकाओं का शरीर है उसकी मैच्योरिटी जो है वो लगभग 16 वर्ष के आसपास
1: जी
0: मान ली जाती है, और उसका एक वैज्ञानिक कारण है। 3 वर्ष का जो काल है मासिक धर्म के

0: बात का, वो एक मैच्योरिटी लगभग आ जाती है। उससे पहले बच्चा हो तो सकता है, बच्चा पैदा तो किया था, लेकिन वो स्वस्थ नहीं होगा।
1: हाँ,
0: उसके स्वास्थ्य में विकृति होगी, मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं होगा, शारीरिक रूप से भी नहीं होगा। तो कम से कम इतनी एज होनी चाहिए, ऊपर हो तो वो उत्कृष्ट है, वो ज्यादा अच्छी है। 24 वर्ष तक की उम्र की हमारे यहाँ बात की जाती है, बालिका की अंतिम जो सीमा है। तो ये जो हम सारी तैयारी करते थे वो हमने छोड़ दी। तो संस्कार का मतलब था,
1: आज करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
0: बहुत अच्छी
1: महिलाओं के लिए।
0: नहीं, करियर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप संतान की प्रक्रिया में हैं तो जो आप सोचते हैं, जो आप खाते हैं, जो आप देखते हैं, वो बच्चे में जाता है। जानते हो कैसे? क्योंकि देखिए, बच्चा माँ के गर्भ में माँ के शरीर से शरीर लेता है,
1: हाँ,
0: उसके श्वास से श्वास ले रहा है,
1: तो उसकी जो भावनाएं हैं,
0: उसकी उसका जो चिंतन है, उसकी जो भावना है, वो भोजन कहाँ से आएगा? वहीं से आएगा। माँ यदि कुछ ऐसा देखती है जो देखने लायक नहीं है तो वही संस्कार जाएंगे। माँ यदि धार्मिकता के दृश्य देखती है तो वो संस्कार जाएंगे, देशभक्ति के देखती है तो वो जाएंगे। तो इस समय
1: सबसे बड़ा प्रमाण है अर्जुन,
0: हाँ, महाभारत में अभिमन्यु का प्रमाण। केवल अभिमन्यु ही नहीं, अनेक हमारे यहाँ बहुत भरे पड़े हैं, उपनिषदों में भरा हुआ है। मदालसा का बहुत बड़ा एक उल्लेख आता है कि जब वो गर्भवती होती थी, उनकी 8 संतानें जो हैं, उन्होंने निश्चय किया कि मुझे ऋषि बनाना है। तो वो अपने जब गर्भस्थ शिशु को गर्भ में ही लोरियां देती थी, वो कहते थे शुद्ध असी, बुद्ध असी, मुक्त असी, निरंजन असी, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, पवित्र हो, ज्ञानी हो, निरंजन हो, निर्लिप्त हो। बच्चा क्या पैदा हुए? सारे उसी तरह के सन्यासी हो गए।
1: सन्यासी
0: जी। तो उनके पति ने, विदुला के पति ने कहा कि देवी, एक तो बच्चा ऐसा पैदा करो जो राष्ट्र को संभाल सके, राजा थे वो
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा ठीक है, इस बार संतान वैसी होगी, और वही लोरियां दी, तुम चक्रवर्ती सम्राट बनो, वही भाव उनका। तो वो उन्होंने एक तैयारी की। तो हमारा जो संस्कार है, जिस जो आपकी इसका नाम है नृत्य गीत नृत्य परंपरा
1: जी,
0: परंपरा का मतलब यही होता, जो परे था वो और नजदीक आया और मेरे तक आया और आगे वाली पीढ़ी में चला जाए। समस्या ये हुई कि जो मेरा वर्ग है, जिसको मैं अध्यापक वर्ग कहता हूं, जिसको मैं पुरोहित वर्ग करता हूं, जो बौद्धिक कार्य करता है, उनका ये दायित्व था कि वो परिवारों में जाते, आउटरीच करते, उनसे मिलते, उन परिवारों को बताते। और हमारे यहाँ एक सन्यास की परंपरा थी, जिस आश्रम पर हम बाद में आएंगे
1: जी,
0: वो इसीलिए होता था कि वो घर से मुक्त हो गए, उन्होंने जीवन के जो अनुभव लिए वो सभी परिवारों में जा करके
1: समाज में बांटते थे।
0: ये उनका काम था। तो हमारे यहाँ संस्कार का मतलब था मनुष्य का निर्माण, और मनुष्य के निर्माण के 16 सोपान ये बताए गए, 16 पड़ाव है जीवन के निर्माण के, 3 जो जन्म से पहले और बाकी 13 जो है उसके बाद। ये हमारी परंपरा।
1: कुछ लोगों का मानना है कि 16 नहीं, इससे अधिक भी हैं, पर माननीय हम 16 संस्कार की जानते हैं।
0: ऐसा है, मनु जो है वो 12 संस्कार की बात करते हैं
1: जी।
0: दूसरे जो आचार्य हारित हैं और दूसरे आचार्य हैं, वो कोई 44 और 48 42 तक भी संस्कारों की बात करते हैं, लेकिन वो जो छोटी छोटी बीच की परंपराएं हैं उनको उन संस्कारों में गिन लेते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। जैसे हमारे यहाँ प्रमाण 8 माने जाते हैं, कुछ आचार्य कहते नहीं 4 प्रमाण है, तो 4 का अंतर्भाव उसमें कर दिया तो वो उसके हिस्से मान लिए गए, ये हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह से संख्या बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये ऐसे पड़ाव हैं जीवन के जो विजिबल हैं, दिखाई देते हैं, और उन पड़ावों पर हमें अपने जो नवागंतुक शिशु है उसके निर्माण को ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिएगा, जो पहले 3 संस्कार हैं उसका बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, वो तीनों संस्कार माँ के होते हैं, बच्चा तो गर्भ में है
1: जी,
0: तो माँ के संस्कार क्यों किए? और ये संस्कार माँ के इसलिए होते हैं, केवल माँ के ही नहीं है, बल्कि वो पूरा जो परिवार है और जो आसपास का समाज है उसको ये संकेत दिया जाता है, नहीं बल्कि ये कहा जाता है, संदेश दिया जाता है, संकेत नहीं, कि अब ये महिला, ये बालिका अब मातृत्व की प्रक्रिया में है, अब इसको ऐसा कुछ ना दिखना चाहिए, ना इसके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए जो इसके मन में कटुता हो, क्षोभ हो, क्योंकि नहीं तो वो संस्कार बच्चे पर जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो प्रसन्नता के संस्कार हो, इसलिए घर का वातावरण, तो क्यों जो सास है, जो ननंद है, जो पुरुष है, उसकी बहन है, उसकी दादी है, उन सबका ये दायित्व बनता है कि उस गर्भवती स्त्री के लिए जो सबसे सुखद बढ़िया वातावरण हो सकता है वो देना चाहिए। अपने बहू के लिए नहीं दे रहे हैं आप उस आने वाले पोते के लिए, दोहित्र के लिए, भांजे के लिए, जो भी आपका रिश्ता बनेगा,
1: बिल्कुल
0: आप उसके लिए वो कर रहे हैं, और उससे भी आगे आप राष्ट्र के निर्माण के लिए कर रहे हैं। एक इकाई, एक व्यक्ति यदि ठीक है तो एक एक

0: व्यक्ति से पूरा परिवार और परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र बनता है। तो ये आप राष्ट्र निर्माण का काम करेंगे यदि आप संस्कारों को इस तरह से जीने की बात करते हैं। इसलिए जो पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, उसमें सबसे पहली बात यह है कि आप अपने मन को संतुलित रखें, अच्छे ग्रंथ पढ़ें, देशभक्ति के ग्रंथ पढ़ें। आपका यदि मन ऐसा है कि आपका बच्चा वीर हो तो आप वीरतापूर्ण हमारा जो साहित्य है उसको पढ़ें। साइंटिफिक दृष्टिकोण रखते हैं तो साइंस के जो ग्रंथ है आप उनको पढ़ें, लेकिन उनके साथ में कर्तव्य का जो भाव है, जो हमारी परंपराएं हैं उनको न छोड़ें, वो साथ में रहें। धन जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म पूर्वक धन महत्वपूर्ण है।
1: संतुलन रहना है
0: बिल्कुल। और संस्कारों का यही महत्व है कि आप जो भी चाहिए बना दिए, अच्छे संस्कार दे दिए, आप जो चाहे आप बना सकते हैं। तो ये जो पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है, ये इसके बाद जो दूसरा संस्कार होता है, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, समय सीमित होता है।
1: समय सीमित है।
0: दूसरा जो है वो पुंसवन संस्कार है। लोग ऐसा समझते हैं कि ये संस्कार पुत्र प्राप्ति हो, पुंस पुत्र के लिए आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुंस का एक अर्थ होता है बल, तो हमारी जो संतान हो निर्बल ना हो,
1: बिल्कुल
0: वो बलिष्ठ हो,
1: स्वस्थ,
0: वो स्वस्थ हो। इसलिए माता को उस समय में कुछ औषधि युक्त भोजन दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो औषधियां हैं वो दूध में मिला करके भोजन के साथ में वो दी जाती हैं
1: जी।
0: तो ये संस्कार दूसरे और तीसरे महीने में किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा संस्कार है वो सीमंतोन्नयन संस्कार है। सीमंत बेसिकली बालों को कहते हैं हमारे यहाँ, केशों को। और उस समय जो गर्भवती स्त्री है उसके बालों को संवारा जाता है, सजाया जाता है। लेकिन ये एक प्रतीकात्मक व्यवस्था है। संस्कारों के दो हिस्से हैं, एक है प्रतीक, एक है संदेश। तो प्रतीकों के माध्यम से संदेश दिए जाते हैं। तो आप देखिए कि जो बाल हैं ये हमारे सिर के ऊपर होते हैं और इसके अंदर कौन है? मस्तिष्क। तो ये जो काल है ये बच्चे के मस्तिष्क के निर्माण का काल है। इस समय में जो माँ सोचेगी,
1: तीन से ऊपर जी,
0: चौथा छठा और आठवें महीने में ये संस्कार होता है, लेकिन तीन से लेकर के आठवें नौवें महीने तक ये विकास होता है मस्तिष्क का। उस समय जो सोचा आपने वो छप गया, ये प्रिंट है पूरा का पूरा अंदर, जैसे चिप होती है ना, उसमें चला गया, आपको दिखाई नहीं देता। जब वो कंप्यूटर में डलेगी तो आपके सामने पूरा दृश्य आ जाएगा। वही स्थिति हमारे इस मस्तिष्क की है कि उस समय माँ ने जो संस्कार दिए, यदि उसको उस तरह का एटमॉस्फेयर मिला, वातावरण मिला, तो वो उद्बुद्ध हो जाएंगे। अच्छे संस्कार दिए अच्छा हो जाएगा, बुरे संस्कार दिए बुरा हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। मैं इसके लिए एक आपको बहुत आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से एक विशेष बात बताना चाहता हूँ जो मैंने, क्योंकि मैं भी गृहस्थ हूँ और मैंने उसका एक्सपेरिमेंट किया
1: जी।
0: मेरा आयुर्वेद में थोड़ा थोड़ा रुझान रहा। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जब मेरी पत्नी गर्भवती थी, मेरा बेटा होने वाला था, दूसरी संतान मेरी। तो मैंने पढ़ा कि बच्चा बुद्धिमान कैसे हो। मेरा थ्रस्ट हमेशा बुद्धि पर रहा, मेरा वो रहा। तो उसमें एक बहुत सरल सा नुस्खा बताया है, अंजू जी आपको भी बता रहा हूँ, आपके घर में भी बहुएं होंगी, पोते होंगी, पोतियाँ होंगी, तो सबको काम आएगा। दूध में गाय का हो तो सबसे अच्छा है, गाय का ना मिले तो नॉर्मल दूध,
1: जो दूध जो मिल जाए
0: गाय का हो तो सबसे अच्छा हो। उसमें सौंठ आप डालते हैं, जिंजर जिसको, तो ड्राइड जिंजर उसको पीस करके उसका डस्ट पाउडर बना लीजिए और एक चुटकी भर, यानी कि छोटी चम्मच जो होती है वो आधी से भी कम वो डाल करके उस दूध को उबाल दीजिए। लोग कहेंगे बहुत गर्म होता है, बिल्कुल सही बात है, गर्म होता है, लेकिन दूध को फिर ठंडा कीजिए
1: जी
0: बिल्कुल। उसमें मिश्री या खांड मिला करके वो गर्भवती महिला को पिलाइए
1: जी,
0: हो सके तो दोनों समय, नहीं तो कम से कम एक समय। उसके बाद जो आपकी संतान होगी अद्भुत बुद्धिमान और बुद्धिमती होगी। मेरा बेटा है, मैं जानता हूं, अपने बेटे की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं प्रशंसा उस औषधि की कर रहा हूं
1: जी,
0: वो ऋषियों की परंपरा की कर रहा हूं। मेरा बेटा अत्यंत बुद्धिमान है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मेरे सामने।
1: और हमारे ऋषि मुनियों ने तो बहुत
0: औषधियां लिखी हैं,
1: लिखी
0: है, आयुर्वेदिक वो है। तो आप इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेड है हमारे ऋषियों ने जो लिखा है।
1: जो व्यक्ति, जो बच्चा कम बुद्धि है उसको भी देना हो तो दे सकते हैं।
0: नहीं, वो बच्चे को बाद में जो दी जाती है वो अलग औषधि
1: बन जाती है।
0: शंख पुष्पी इत्यादि अलग औषधियां हैं
1: जी,
0: वो दी जाती हैं
1: जी,
0: तो वो अलग प्रक्रिया है। ये माँ के गर्भ में माँ के रक्त के माध्यम से, माँ के संस्कार के माध्यम से, माँ के शरीर के माध्यम से जो निर्माण हो रहा है वो मस्तिष्क का निर्माण उसी तरह का होगा जो बहुत अधिक एकदम

0: बेसिकली इसका कारण क्या है? देखिए, आपने देखा होगा जब जुकाम हो जाता है हमें, श्लेष्मा बढ़ जाता है
1: जी,
0: तो हमारा सर भारी हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: क्या मतलब है ये? श्लेष्मा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है,
1: प्रभावित करता है।
0: और ये जो औषधि है जिसको हम सौंठ कहते हैं, जिसको हम जिंजर कहते हैं, अदरक कहते हैं, ये कफघ्न है
1: जी।
0: कफ को ये खत्म
1: करेगा,
0: कम करेगा, तो वो जितना कम करेगा वो विकास बढ़िया होगा।
1: बिल्कुल,
0: ये उसका एक वैज्ञानिक कारण है। तो तीसरा जो संस्कार है, हमारी संस्कार विधि में स्वामी दयानंद जी ने और हमारे सनातन परंपरा के जो आचार्य हैं उन सब ने इस संस्कार के साथ में औषधियों का विधान किया है कि ये औषधियां गर्भवती स्त्री को दी जानी चाहिए, वो माँ के माध्यम से बच्चे तक जाती,
1: बच्चे तक पहुंचती
0: पहुंचती हैं। इसका मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। आप लोगों ने ज्यादा इसका अनुभव किया होगा, लेकिन क्योंकि मैं भी गृहस्थ हूं तो मेरे भी बच्चे हुए, मैंने देखा। जब बेटा छोटा था, माँ का दूध पीता आपने का, तो एक दिन उन्होंने ज्यादा मिर्ची खा ली। बेटा रो रहा है, मैंने कहा भैया क्यों रो रहा है? अरे मैंने कल ज्यादा मिर्ची खा ली थी, बच्चे को ना वो मिर्ची का असर दूध के माध्यम से गया
1: जी,
0: और वो उसको पोटी में जलन पैदा कर रहा है। ये था क्या हुआ जी, जो अब माँ के स्तन से जो दूध जा रहा है उसमें भोजन का असर पहुंच रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो जो रक्त के माध्यम से जाएगा वो कितना प्रभावी होगा,
1: प्रभावी।
0: आप इसको देखिएगा
1: जी।
0: तो हमारे यहाँ संस्कार की परंपरा वह थी कि माँ जो सोचेगी, पिता जो सोचेगा, दादा दादी जो सोचेंगे, जो एटमोस्फेयर देंगे, जो वातावरण बनाएंगे घर का, वो आपके बढ़िया संतान का निर्माण करेंगे। हमारे यहाँ तीन कर्जों की बात है, हमारी संस्कृति की बात है, परंपरा की बात है
1: जी।
0: तो ये माना जाता है कि हम जब पैदा होते हैं और उस पैदा होने के बाद जब हम शिक्षा पूरी कर लेते हैं तो हमारे जीवन में तीन ऋण हमारे ऊपर होते हैं, माता पिता का,
1: बिल्कुल,
0: ऋषियों का और देवों
1: देव ऋण।
0: तो जो माता पिता का ऋण है उसको कैसे चुकाओगे? तो लोग कहते हैं कि भाई बुढ़ापे में सेवा कर देंगे। ना, ये तो कोई बात नहीं,
1: ऋण मुक्त नहीं हो सकते।
0: नहीं, वो तो आप वृद्धाश्रम में छोड़ दोगे, वो लोग भी सेवा कर देंगे। तुमने क्या किया? तुम्हारा कर्तव्य ये था, मैं यदि अपनी माँ की संतान और हूँ और उनको मैं उससे ऋण होना चाहता हूँ, तो मेरा कर्तव्य कि जैसा मेरी माँ ने मुझे संतान बनाया उनसे बेहतर संतान बना करके मैं समाज को दूँ। ये उनके ऋण से ऋण होना है, ये एक पक्ष है। माता पिता को उनको जो वृद्धावस्था में जो सहयोग चाहिए, भाई बचपन में मुझे उन्होंने संभाला, मेरे दांत नहीं थे, उनके दांत नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: तब मेरे से नहीं चला जाता था, उनसे नहीं चला जाता है,
1: बिल्कुल,
0: तब मेरी पोटियां माँ ने साफ की है, अब मैं करूं तो क्या दिक्कत है
1: जी।
0: तो ये तो चक्र है। तो ये जो संस्कार है ये तब होंगे जब आपने अपने, देखिए संस्कार दो तरह से, एक तो परंपरा से है ये, दूसरा संस्कार का एक प्रकार ये है कि यदि मैं अपने बच्चों के सामने मेरी माता पिता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, मैं उनको दुत्कारता हूँ, तो संस्कार जा रहे हैं। और यदि मैं उनकी सेवा करता हूँ तो मेरे बच्चे भी उन संस्कारों को लेकर के जीते हैं और मेरी एब्सेंस में मेरे घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करते हैं और इफेक्ट है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये हमारे यहाँ संस्कारों का, इसके बाद जो है वो जात कर्म संस्कार है
1: जी।
0: जात कर्म संस्कार का है जन्म के समय, और उस समय बच्चे कुछ बहुत सारी क्रियाएं होती है, मैं एक एक संकेत करूंगा। बच्चे की जिह्वा पर ओम लिखा जाता है,
1: लिखा जाता
0: और
1: है।
0: सोने की सलाका से और शहद से लिखा जाता है
1: जी।
0: दोनों में औषधीय तत्व हैं, जीवनीय तत्व हैं। जब आदमी की कोई बीमारी लाइलाज होती है तो कहते हैं इसको स्वर्ण भस्म युक्त औषधि देनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो स्वर्ण भस्म सोने को जला कर, देखिए जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो उसकी मारक क्षमता जो है, उसकी जो पोटेंशियल वो बढ़ जाती है। आप मिर्ची को अपने नाक के सामने रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आग में डालिए, आप कितना परेशान हो जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: आप किसी सुगंधित द्रव्य को सामने रखिए, थोड़ी सुगंध आएगी, अग्नि में डालते ही वो फैल जाएगी
1: जी।
0: तो उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो जो जात कर्म संस्कार है उस समय बच्चे की जिह्वा पर सोने की सलाका से ओम लिखा जाता है। तो इसके दो पर्पज हैं, बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा, उसको आस्तिक बनाना, ईश्वर विश्वासी बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये दोनों उसके उद्देश्य होते हैं। उसके बाद जो संस्कार है वो नामकरण संस्कार है
1: जी।
0: आजकल चिंकू रिंकू टिंकू पिंकू कुछ भी रख लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन
1: नाम का एक प्रभाव होता है।
0: बिल्कुल, नाम का प्रभाव होता है। मैं आपके नाम को देख रहा था, अंजू घर भरन, मैंने कहा जी घर भरन क्या है, आपका घर तो भरा रहेगा। मेरे मन में सीधा सीधा आया, क्यों? क्योंकि वो शब्द आप जो आपके साथ जुड़ा वो एक ऐसा अर्थ देता है कि आपका घर भरा रहे। मेरा नाम सत्यपाल है, एक स्वाभाविक सा एक गुण मेरे में होना चाहिए,
1: सत्य का पालन करते हैं।
0: तो ये भाव यदि मुझ में नहीं है तो मेरे नाम को बार बार सुन करके ये भाव कहीं ना कहीं जब मैं उसके अर्थ को समझूंगा तो आएगा। तो नाम सार्थक होना चाहिए और बच्चे को क्या बनाना है उस लक्ष्य से प्रेरित होना चाहिए। ये हमारी

0: परंपरा थी। तो ये नामकरण का उद्देश्य होता है। ये नामकरण जनरली जन्म के 11वें दिन या 21वें दिन, 101वें दिन, जैसे बच्चे का स्वास्थ्य होता है उसके अनुसार, और कभी कभी एक साल के बाद भी हम इस तरह से कर लेते हैं। उसके बाद एक संस्कार है निष्क्रमण संस्कार।
1: जी,
0: निष्क्रमण संस्कार होता है बच्चे का तीसरे या चौथे महीने में जन्म के बाद। उसका उद्देश्य भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है कि बच्चा जो माँ के गर्भ से बाहर आया उसको बाहरी वातावरण में एकाएक नहीं लेकर के आएंगे, उसको पहले जिसे हम कहें कि वातावरण से थोड़ा थोड़ा संबद्ध करना पड़ता है, घर में रखते हैं, फिर धीरे धीरे उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारी प्रकृति है, जो खुली हवा है, जो वर्षा है, जो धूप है, उससे डायरेक्ट एकदम पैदा होते ही उसके सामने नहीं लाते हैं, धीरे धीरे उसको लेकर के आते हैं ताकि उसका शरीर जो अभी बहुत कच्चा शरीर है, परिपक्व होने लगे तो उसको सहन करने का सामर्थ्य हो। तो ये भी एक संस्कार होता है।
1: मुझे याद है माँ बच्चे को धूप में रखती थी, कपड़ा सूती कपड़ा डाल करके कपड़ छान धूप लगनी चाहिए।
0: बिल्कुल। और उसका एक विशेष और मैं कारण बताता हूँ। बच्चा जब पैदा होता है तो जनरली एक बीमारी हो जाती है बच्चों को, पीलिया,
1: जी,
0: जॉन्डिस हो जाता है। आप जानते हो उसकी औषधि क्या है? केवल और केवल धूप,
1: धूप,
0: कोई औषधि नहीं है। ये उसके लिए होता था। तो हमारे यहाँ जो हमारी परंपरा है प्राकृतिक चिकित्सा की, उसमें कहा जाता है मिट्टी, पानी और हवा सब मर्जों की एक दवा, सब बीमारी इसे ठीक हो सकती है। तो ये हमारी परंपरा है, जिस आप परंपरा को लेके चल रहे हैं, ये हमें परंपरा बताती है हमें कैसे करना चाहिए। उसके बाद जो संस्कार है वो बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है, वो है अन्नप्राशन।
1: जी,
0: बच्चे को भोजन कब देना, कब लिक्विड से सेमी लिक्विड पर लाना है, ये देखने वाली बात है। उसके दो कारण है। माँ के स्तनों में दूध एक निश्चित समयावधि तक पर्याप्त मात्रा में आता है, लेकिन जब बच्चे का शरीर बढ़ता है तो उसकी आवश्यकता भी बढ़ती है।
1: बिल्कुल।
0: तो फिर उसको क्या देना चाहिए, वो हमारे यहाँ विधान है कि बच्चे को दाल का पानी देना चाहिए, बच्चे को दूध देना चाहिए, गाय का दूध जो कि हल्का होता है, ये ध्यान रखने की बात है। और आजकल तो सेरेलक वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, औषधीय पदार्थ भी आ गए हैं, बच्चे को जो अनुकूल नहीं पड़ता है तो लैक्टोज फ्री मिल्क भी आप लोग देते हैं। तो जो बच्चे की शरीर की आवश्यकता है उसके हिसाब से भोजन दिया जा सकता है, लेकिन वो लगभग छठे महीने के आसपास ये हमें संस्कार करना
1: चाहिए। 6 महीने तक उसको माँ का
0: दूध तो मिनिमम पीना चाहिए, उससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल।
0: जो ये कहते हैं अमृत होता
1: रोगों से दूर रहता है।
0: वही उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो माँ के स्तन के दूध में जो है वो कहीं नहीं मिलती है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये सबसे आवश्यक है। आजकल तो ये हो गया कि भाई शुरू से ही अब स्तनपान नहीं करा रहे, क्यों? फिगर खराब हो जाएगा।
1: जी,
0: ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है।
1: बिल्कुल।
0: माँ के
1: स्वयं को भी स्वस्थ रखने के लिए
0: बिल्कुल
1: ये होना चाहिए।
0: मैं आपको बताता हूँ, जो अविवाहित महिलाएं होती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम ज्यादा है, एक सर्वे हुआ था।
1: जी,
0: क्यों? क्योंकि स्तनपान नहीं हुआ, उन मसल्स को मूवमेंट नहीं मिला, वो ग्रोथ कर गई।
1: जी,
0: तो यदि आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो प्राकृतिक जो परिवर्तन है उनसे गुजरना ही चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: ये है, तो ये हमारा एक आगे वाला संस्कार था अन्नप्राशन। ये बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके किया जाता है। और इसके बाद जो संस्कार है वो चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार कहते हैं, टोनसोर, जिसको सिर के बाल मुंडवाते हैं।
1: जी,
0: बड़ा सामान्य सा संस्कार है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार। उसका कारण क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखेंगे ये जो हमारे मस्तिष्क का पूरा हिस्सा है इसमें ये सर्वोच्च स्थान है, इसको तालू कहते हैं जनरली गाँव में। आप उस पर ऐसे हाथ लेके जाओगे तो वो इस तरह से वाइब्रेट करता है।
1: जी,
0: उसमें पल्पिटेशन होता है, लेकिन आज हम रखते हैं तो कुछ नहीं होता।
1: बिल्कुल।
0: ऐसा नहीं कि अब नहीं होता, अब भी हो रहा है, लेकिन अब जो हमारी ये ऊपर की हड्डी है, स्कल है, खोपड़ी है, ये मजबूत हो गई।
1: जी,
0: अब उसकी सुरक्षा हम कर सकते हैं, लेकिन
1: उस समय
0: बालक के उस पोर्शन की सुरक्षा के लिए परमात्मा ने गर्भ में ही बाल पैदा कर दिए थे और वो उसकी सुरक्षा के लिए थे। तो ये बच्चे के उस स्थिति पर निर्भर करेगा कि कब हमें उसका मुंडन कराना चाहिए, 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद या 3 वर्ष के बाद, कि उसके जो खोपड़ी है, जो सिर है, उसकी हड्डी कितनी मजबूत हो पाती है या नहीं हो पाती है। एक तो ये कारण है। दूसरा, जो जन्म के समय बाल आते हैं वो अपवित्र माने जाते हैं, बाल तो वैसे ही अपवित्र माने जाते हैं, लेकिन उनको रखना ये अच्छा नहीं माना जाता।
1: अच्छा नहीं माना
0: उनको
1: जाता।
0: उनको जब तक काटेंगे नहीं तो और सघन बाल नहीं आएंगे।
1: जी,
0: तो बालों की सघनता के लिए भी उसको किया जाता है, और इसका सबसे बड़ा है मस्तिष्क की रक्षा। और जब बाल भी काटे जाते हैं तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मैं गुरुकुल में रहा हूँ, पहले तो हमने छोटी छोटी रखी थी गाँव में,

0: लेकिन गुरुकुल में इतनी बड़ी चोटी होती है कि जैसे गाय का छोटे नवजात बछड़े का खुर होता है, पैर होता है
1: जी,
0: उतनी बड़ी और उसी शेप में यहाँ पर होती है।
1: बिल्कुल।
0: तो वो केवल उसी स्थान पर होती है जहाँ हमारी तीन नाड़ियाँ इड़ा पिंगला और सुषुम्ना जहाँ मिलती हैं, जो हमारा छोटा मस्तिष्क कहते हैं ना
1: जी,
0: दो दो भाग हैं ये, लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर और ये बाद वाला पीछे वाला, तो उनका जो ज्वाइंट वाला पोर्शन है उस जगह पर वो रखी जाती थी उसकी सुरक्षा के लिए। कितना साइंटिफिक था ये, केवल हम मानसिक विकास की बात नहीं करते,
1: हमारे जितने भी संस्कार हैं, हमारी जितनी भी परंपराएं हैं, कितनी वैज्ञानिक हैं,
0: अद्भुत वैज्ञानिकता में कोई संदेह नहीं।
1: बिल्कुल।
0: बस कमी ये रह गई कि हमने उसको अपनी आगे वाली पीढ़ी तक कम पहुंचाया, जितना पहुंचाना चाहिए था, जैसा प्रयास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया,
1: नहीं है,
0: रीजन जो भी रहे हों,
1: बिल्कुल
0: बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये एक ऐसा संस्कार। इसके बाद एक और संस्कार है, कर्णवेद संस्कार
1: जी,
0: मेरा नहीं हुआ होना चाहिए,
1: होना चाहिए था।
0: इसके दो कारण है। सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि एक कॉमन बीमारी है, बहुत होती है, जिसको हर्निया कहते हैं, आंतों का बढ़ जाना
1: जी।
0: उस बीमारी का कोई इलाज उस समय में नहीं था और आज भी उस तरह का इलाज नहीं है, लेकिन एक ऐसा इलाज है जिसके करने पर वो बीमारी होती ही नहीं। देखिए, किसी भी बीमारी का दो प्रकार से इलाज होता है, एक होता है वैक्सीनेशन, एक होता है बीमारी होने के बाद दवा देना।
1: दवा देना,
0: एक दबा देना, एक दवा देना
1: जी।
0: तो भैया, जो जो दवा देते हैं वो दबा देता है, उसको ठीक नहीं कर पाता, इसलिए पहले ही प्रिकॉशनरी जो मेजर्स होते हैं उसके लिए हम ऐसा करते हैं। तो ये जो हमारे कान का ऊपर का हिस्सा होता है, इसको सीवन बोला जाता है, इस जगह पर छेद करके लोहे का, तांबे का, चांदी का या सोने का छल्ला डाला जाता है
1: जी।
0: वो एक नस को छेदते हैं वो, और वो सामान्य पंडित या कोई नाई नहीं करता, वो वैद्य से कराया जाता था। संस्कार के समय में वैद्य भी उस संस्कार का हिस्सा होता था, ये मैंने आयुर्वेद के ग्रंथों में पढ़ा। तो ये जो जगह होती है जो हमारे कान की
1: जी,
0: इस जगह पर वो छेद करते हैं, और जिसको ये हर्निया हो जाता है यहाँ छेद करने के बाद ठीक हो जाता है, ये हमने देखा है अपने यहाँ भारत में बहुत जगह, बहुत लोगों के साथ में। तो ये इसका भी एक वैज्ञानिक कारण था। तो देखिए, हमारे संस्कार केवल मानसिक विकास की बात नहीं करते,
1: इसीलिए मैंने कहा शारीरिक
0: विकास, शारीरिक विकास भी चाहिए, मानसिक भी चाहिए, शारीरिक भी चाहिए, आध्यात्मिक भी चाहिए, ये हमारे यहाँ फिर था। इसके बाद जो आगे वाला जो संस्कार है, वो संस्कार सारे ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको एक अपनी भारतीय परंपरा की एक बात मैं कहूँ कि ये कहा जाता है, गीता में कहा गया है कि जन्म से हम सब शूद्र होते हैं। मैं भी जब पैदा हुआ तो शूद्र था, आप भी और जो भी पैदा होता है, और संस्कार से हम द्विज हो जाते हैं, संस्कार हमें द्विज बना देता है। द्विज का मतलब ब्राह्मण नहीं होता, द्विज का मतलब होता है जिसका दो बार जन्म हुआ है। जब मैं भी मेरा संस्कार नहीं हुआ था तो मैं भी शूद्र था
1: जी,
0: तो फिर द्विज कैसे हुआ? जब मैंने अध्ययन किया तो दूसरा जन्म कहाँ से होता है? एक जन्म माँ के गर्भ से होता है, वो तो सबका होता है, पशुओं का भी होता है,
1: बिल्कुल
0: पक्षियों का भी होता है, अंडे के रूप में होता है, कहीं चूजे के रूप में होता है,
1: बिल्कुल।
0: तो क्या नयापन है? कुछ भी तो नहीं,
1: शिक्षा,
0: शिक्षा एग्जैक्टली। वो जो जो विद्या रूपी जो आचार्य का गर्भ है, और आचार्य का गर्भ माँ के गर्भ की तरह नहीं है, वो विद्या का गर्भ है। उस विद्या में जब वो पढ़ता है, उस गुरुकुल में जब जाता है, तो आचार्य के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, आचार्य और शिष्य के लिए, अंतेवासी
1: जी।
0: शिष्य के लिए अंतेवासी का मतलब है जो अंदर रहता है, कहाँ रहता है? गर्भ में रहता है। आचार्य का जो कुल है, जिसको हम गुरुकुल कहते हैं, वो उसका गर्भ है, उसमें रहता है। वो क्या खाएगा, कब सोएगा, कब उठेगा, कैसे बात करेगा, कब भिक्षा के लिए जाएगा, कब संध्या करेगा, कब उपासना करेगा, कब स्वाध्याय करेगा, कब वो व्यायाम करेगा, पूरा का पूरा जो नियंत्रण है वो आचार्य के हाथ में
1: जी, बिल्कुल।
0: तो निर्माण कर रहा है
1: वो,
0: बिल्कुल वो गुरु जो है, जो गुरुकुल में है, वो उसका निर्माण करता है, उसका उसको जब वो निकालता है उस संस्था से, तो उसको समावर्तन कहते हैं, वो एक और संस्कार है,
1: दूसरा जन्म,
0: दूसरा जन्म, वो दूसरा जन्म है। और वो दूसरा जन्म है तो द्विज हो गए, जो नहीं पढ़ पाया वो रह गया बाहर, नहीं तो सब द्विज हो गए,
1: बिल्कुल।
0: तो उनकी अलग अलग कैटेगरी बना दी, जो बौद्धिक काम करेगा वो ब्राह्मण हो गया, जो व्यवस्था संभालेगा, जो जो राष्ट्र को संभालेगा, जो रक्षा करेगा वो क्षत्रिय हो गया, जो वाणिज्य कृषि खेती ये सब करेगा वो वैश्य हो गया, और जो इन सब को सहयोग करेगा वो शूद्र हो गया। तो मेरे ही घर में मेरे यदि चार बेटे पैदा हो जाएं और एक ना पढ़े और तीन पढ़ते हैं, तो तीन द्विज की कैटेगरी में, एक शूद्र होगा,
1: शूद्र हो गया।
0: मैं यदि मान लो अनपढ़ व्यक्ति हूँ और मेरे घर में मेरा बेटा पढ़ करके बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है, तो

0: शूद्र नहीं होगा, वो ब्राह्मण होगा, मैं शूद्र होऊंगा
1: जी।
0: ये भारतीय परंपरा है। बीच में लोगों ने हमें बदनाम करने के लिए, हमारी संस्कृति को विकृत करने के लिए ये चीजें डाली कि शूद्र जन्म से होता है। नहीं, हमारे यहाँ जातियां भी नहीं थी, हमारे यहाँ केवल वर्ण थे, और वो कार्य पर आधारित थे, और वो आचार्य देता था एक समय में।
1: बिल्कुल,
0: ये हमारी भारतीय परंपरा थी, ये वैदिक
1: परंपरा। तो कर्म प्रधान,
0: बिल्कुल, इसीलिए कर्म प्रधान
1: विश्व सिखाती है,
0: कर्म प्रधान विश्व रचि राखा।
1: बिल्कुल,
0: तुलसीदास जी कहते हैं
1: जी।

0: हो गया, ये गुरु के पास चला गया। मैं एक छोटी सी उसमें एक रिचुअल की तरफ ध्यान दिलाता हूँ
1: जी।
0: जब आचार्य के पास में बच्चा जाता है, पिता उनको लेके जाते हैं, तो उसको जानते हो क्या देते हैं? फीस नहीं देते, पैसा नहीं देते। तो आचार्य कहते, सुनो, तीन लकड़ी लेकर के आओ, संविधा लेकर के आओ, आठ आठ उंगल की, अंगूठे जितनी मोटी, और वो तीन लकड़ियां लेकर के जाता है, बस आचार्य जी को दे देता है। ये क्या है? ये प्रतीक था। यज्ञ में जब हम तीन संविधाएं डालते हैं तो वो पहले काली रंग की होती है, सूखी होती है उसमें कुछ, लेकिन जब उसमें पड़ती है तो अग्नि जैसी हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: वहां वे प्रतीक है कि जैसे मैं योग्य हूं, मैं विद्वान हूं, मेरा आचरण श्रेष्ठ है, मैं राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा हूं, तुम भी ऐसे ही बन के निकलोगे, बन जाओ मेरे जैसे, इस आग में पड़ोगे तो यही हो जाओगे। तो जब कहते ना, पड़ा भट्टी में जब सोना, पथिक वह बन गया कुंदन, तो उस आचार्य की भट्टी में पड़ करके वो निखर जाता है। ये उस यज्ञोपवीत का भाव था। उसमें तीन धागे, तीन ऋण के प्रतीक हैं, ज्ञान कर्म उपासना के प्रतीक, एक बहुत विस्तृत व्याख्यान है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो संस्कार हैं उनका महत्व ये है कि निर्माण की प्रक्रिया देखे कैसे कैसे आगे बढ़ रही है।
1: बिल्कुल,
0: पहले मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, अब आते हैं, ये जब सारा विकास हो गया तो भाई अब तुम जाओ, अब समाज में तुम समाज के हिस्सा बनने के लायक हो,
1: बनने के लायक हो,
0: लायक हो। और लेकिन फिर भी आचार्य कहता है स्वाध्याय से प्रमाद मत करना, समावर्तन के समय शिक्षा देता है धर्म से, और स्वाध्याय से आलस्य मत करना, और एक शिक्षा और देता है, बिना संतान के नहीं रहना, विवाह करना है, प्रजातंतु मां व्यवच्छेद सी, आपके घर में संतान पैदा करके आपको अपने माता पिता के ऋण से और समाज के ऋण से ऋण होना है। ये शिक्षा आचार्य देता था। ये हमारी संस्थाएं हैं, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी परंपराएं हैं जिनको हम लेकर के जीते हैं, जिनका यहाँ परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं
1: जी।
0: तो यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार, उसके बाद वेदारंभ। वेदारंभ का मतलब है अब आपका फॉर्मल एजुकेशन, प्रारंभिक जो शिक्षा है, अक्षर ज्ञान हो गया, अब आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे, उसके लिए होता है। उसके बाद जो समावर्तन, जिसकी हमने चर्चा कर ली कि आपका विद्या अध्ययन पूरा हो गया, लगभग 24 वर्ष का जब बालक होता है उस समय तक विद्या उनकी पूरी हो जाती है।
1: पूरी हो जाती है।
0: तो उसके बाद जो है वो विवाह संस्कार है, तो आप जानते ही हैं उसके बारे में, क्या बताएं, हमारा सबका हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा बात इसी पर करनी चाहिए। देखिए, विवाह संस्कार जो है आज एक समस्या है, मॉरिशस में भी है। मैं जब 2008 में आया तो मेरी यहाँ एक व्यक्ति से चर्चा हुई, मुझे नाम भी थोड़ा ध्यान है, बड़े चिंतित थे वो व्यक्ति, शायद सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे होंगे, मैं उनकी बैकग्राउंड बहुत नहीं जानता, शायद गति करके थे, राजनारायण गति साहब
1: जी।
0: वो एक बार आकर के मुझसे मिले यहाँ MGI में, मैं 4.5 महीने रहा था उस समय। उन्होंने कहा कि एक समस्या है डॉक्टर साहब, आप इस पर कुछ बता सको तो। मैंने कहा क्या समस्या है? कहते कि दो समस्याएं उन्होंने कही कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया है।
1: बिल्कुल।
0: और दूसरी समस्या जो है वो है डिवोर्स की, लगभग
1: संख्या बढ़ती जा रही है,
0: 20-25% लोग जो हैं, परिवार जो हैं, वो विच्छेद की स्थिति में। क्यों ऐसा हो रहा है, इसका साधन क्या है? मैंने कहा जी कोई साधन, इसका साधन तो एक ही है, भारतीयता के संस्कार। वो क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जो विवाह कराया जाता है उसमें कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ मंत्रों का विनियोग होता है, उन मंत्रों में कुछ संदेश होता है, ठीक है ना, कुछ क्रियाएं होती हैं। तो मैं आपको दो या तीन क्रियाओं के बारे में बात करूँगा। आचमन होता है, आप आने पर उनका वर का स्वागत करते हैं, वो सब अपनी जगह है। लेकिन एक बात जो विशेष होती है वो होता है हृदयालंबन, वर वधू का और वधू वर के हृदय को स्पर्श करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और उसके साथ एक मंत्र बोला जाता है, वो मंत्र है मम व्रते ते हृदयम दधामी, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। इसका भाव ये है कि हम प्रजापति परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और उसको साक्षी करके एक दूसरे से ये हम प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हारी बात को ध्यान से सुनूंगा, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना, दोनों एक दूसरे से बोलते हैं, बात हो गई। फिर कहा मम व्रते ते हृदयम दधामी, मेरे जो संकल्प हैं मैं तुम्हारे हृदय में धारण कर रहा हूँ, मेरे संकल्प मेरे नहीं है, मैंने जो निश्चय किया है उसको पूरा तुम भी करोगे, ऐसे ही वधू भी कहती है।
1: बिल्कुल।
0: और मेरे चित्त के अनुरूप तुम्हारा चित्त, तो दोनों के चित्त एक दूसरे के अनुरूप हों, और तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना, मम वाचम एक मना जुषस्व, ये नहीं है कि TV देख रहे, मोबाइल पर लगे, हाँ हाँ बताओ और सुना भी नहीं, ये नहीं। जब बात कहती है गृहिणी तो उसको पूरे ध्यान से सुनना चाहिए, वैसे वर्षा भी है अकेले का नहीं, दोनों को
1: दोनों को एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए ध्यान से
0: ध्यान से
1: ध्यान पूर्वक, ये आवश्यक सबसे है कि ध्यान पूर्वक सुना जाए।
0: समस्या

0: कहाँ है? मैंने देखा है बहुत लोगों की समस्याओं से हम रूबरू होते हैं, समाज में रहते हैं, कहते मेरी बात सुनता ही नहीं है,
1: बिल्कुल
0: झगड़ा ये है। अच्छा, दूसरा झगड़ा क्या होता है? अरे मैं कुछ और कह रहा हूँ भाई, तुम गलत समझ रहे हो। क्यों समझा गलत? आपने ध्यान से नहीं सुना इसलिए
1: ध्यान से नहीं सुना इसलिए आपने गलत समझा।
0: तीसरी बात, मेरे परिवार को मेरी पत्नी अपना परिवार ना समझे और मैं उसके परिवार को अपना ना समझूं, क्यों? तो झगड़े होंगे, ये मेरा ये तेरा।
1: बिल्कुल
0: भाई, जब हम कहते
1: आपने
0: हैं
1: एक माना ही नहीं।
0: मेरा मेरे जो संकल्प हैं वो तुम्हारे हो जाएं, तो आज से मेरी जिम्मेदारी, मेरे माता पिता, मेरे बहन भाई तो तुम्हारे हो गए, तुम देखो, और तुम्हारे वाले मेरे हैं, मैं देखूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जब दोनों एक दूसरे के प्रति ये भाव रखेंगे तो हमारे यहाँ झगड़े के लिए कोई गुंजाइश नहीं
1: होगी ही नहीं।
0: जब मेरा पैसा मेरा ना रहेगा तेरा हो जाएगा, और तेरा पैसा मेरा नहीं रहेगा,
1: बिल्कुल
0: ये जब भाव आएगा हमारा तुम्हारा का जो भाव है वो खत्म हो जाएगा, हम दो मिलकर के एक हो जाएंगे। जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, वो दोनों पहिए साथ साथ चलेंगे तो चलेंगे, एक भी नहीं चलेगा तो रुक जाएगी
1: तो गाड़ी।
0: ये जो गृहस्थ है ये हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ एक और प्रक्रिया होती सप्तपदी
1: जी,
0: सात कदम साथ साथ चलते हैं और उसके अलग अलग उद्देश्य हैं, धन के लिए, संतान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अलग अलग उद्देश्य हैं। उस सप्तपदी का भी महत्व ये शिक्षा दी जाती थी। देखो भाई, आज हम आपको बता रहे हैं, इनको जीवन भर अपने साथ बांध करके रखना। प्रतिज्ञाएं हैं, प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं जाती,
1: बिल्कुल
0: आप सबसे पहले वही टूटती हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन आज तो आपने
1: हमने ध्यान ही नहीं दिया।
0: नहीं,
1: आजकल तो विवाह होता है तो फोटोशूट पे ज्यादा ध्यान रहता है।
0: हाँ, वही रहता है।
1: पंडित जी जल्दी से कर दीजिए,
0: जल्दी से करो, जल्दी से करो।
1: हमने संस्कारों पर और मंत्रों पर ध्यान ही नहीं दिया।
0: मंत्रों में क्या लिखा है पंडित जी से पूछते भी नहीं ना पंडित जी बता पाएंगे,
1: बिल्कुल, क्योंकि समय नहीं है, जल्दी में करना है।
0: बिल्कुल, पंडित जी के पास कहाँ समय है? पंडित जी को भी दो शादियां करानी है और आपके पास भी समय नहीं, क्योंकि आपको तो डांस में ज्यादा समय लगाना है।
1: बिल्कुल,
0: भारत में तो ये है कि बाजा बजता रहेगा 1 बजे तक, जब तिथि बदल गई तब जाकर के शादी के लिए आते हैं।
1: हाँ।
0: अब मुझे नहीं मालूम यहाँ का क्या वो है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये तो जब आपने अपनी परंपराओं से अपने आप को अलग कर लिया तो उसके संदेश भी आप तक पहुंचने बंद हो जाएंगे। जो पहुंचाने वाला व्यक्ति है वो पहुंचाने के लिए तैयार बैठा है,
1: पर आप स्वीकार तो करें।
0: स्वीकार तो करें, एग्जैक्टली। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार, ये घर की भी नींव है, ये समाज की भी नींव है।
1: बिल्कुल,
0: आज आपको परिवार में जो वातावरण होगा वो बच्चों पर असर करेगा।
1: बिल्कुल,
0: बच्चे वो बनेंगे जो आपके परिवार में देखेंगे। यदि मैं सिगरेट पीता हूं तो मेरे बेटे के लिए सिगरेट पीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, वो एकदम उठा करके पी लेगा, मेरे पिताजी पीते, मेरे घर में नहीं पी जाती तो मेरे घर में कोई मांसाहार नहीं करता, कोई अंडा नहीं खाता। क्यों? घर में कभी आया ही नहीं तो उन्होंने देखा नहीं, उनका टेस्ट डेवलप नहीं हुआ।
1: बिल्कुल,
0: मैं सिगरेट नहीं पीता, मेरे घर में कोई नहीं पीता, तो बस आज वही स्थिति है कि बच्चा भी नहीं पीता। बच्चे की दादी पीती थी, कभी आई वो घर में, उन्होंने पीते देखा तो बच्चा भी वैसा अनुकरण करने लगेगा।
1: बिल्कुल,
0: तो घर में जो कुछ होगा उसका प्रभाव, वो संस्कार जो है वो हमारे मस्तिष्क में जो जाकर के छपते हैं ना, वो संस्कार हैं, असली संस्कार वो है। ये तो सारी क्रियाएं हैं उन अंदर बच्चे के मानसिक विकास के लिए, उसकी प्रवृत्ति बनाने के लिए। तो ये जो संस्कार हैं जिसको हम विवाह संस्कार कहते हैं, ये हमारा 13वां संस्कार है। इसके बाद संस्कार है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम घर के जो कार्य हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनसे अपने आप को धीरे धीरे मुक्त करने का प्रयास
1: करने का प्रयास करते हैं।
0: ये है, और होता क्या है कि भाई जब बेटा इतना बड़ा हो जाए, कभी विवाह हो जाए और उसके घर में बेटा हो जाए, तो फिर हमें अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए। भाई जिम्मेदारियां अब तुम्हारी, हमने बहुत निभा लिया।
1: बिल्कुल,
0: अब हम ध्यान करेंगे, संध्या करेंगे, पूजा करेंगे, समाज का उपकार करेंगे। ये जो है ये उनका उद्देश्य होता है।
1: स्वाध्याय का समय बढ़ जाएगा,
0: बिल्कुल सब कुछ मिलेगा। और दूसरी बात, वो जब उस प्रक्रिया में होंगे तो जो नया बच्चा उस घर में आ रहा है उसको वो टाइम देंगे।
1: बिल्कुल,
0: आप तो खेत में जाएंगे, आप तो नौकरी पे जाएंगे, आप तो विद्यालय जाएंगे, आप तो समाज के 10 काम करेंगे, कौन संभालेगा पूरा दिन?
1: पर आज समस्या ये भी है कि संयुक्त परिवार नहीं है,
0: वो
1: एकल परिवार हो चुके हैं।
0: वो इसीलिए कि हमारी परंपरा छूट गई।
1: बिल्कुल,
0: परंपरा छूट गई।
1: और आज बच्चा जो है माता पिता से अधिक समय क्रच में बिता रहा है, अधिक समय स्कूल में बिता रहा है।
0: देखिए, मैंने यहाँ आकर के एक कल ही एक गोष्ठी थी, मैंने बैठका की बात सुनी
1: जी।
0: क्या थी बैठका? ये समाज के वो बड़े लोग थे जो एक जगह बैठ करके अपनी कहानियां सुनाते थे, चिंतन करते थे, परंपराओं से परिचित कराते थे, त्योहारों से परिचित कराते थे, उसका महत्व तो बताते थे, अपने साहित्य से जो बिना पढ़ा साहित्य हम तक पहुंचा

0: कंठस्थ था, वो जो श्रुति परंपरा थी उससे पहुंचा, उसने आज हमारी संस्थाओं को जीवित रखा।
1: बिल्कुल,
0: वो खत्म हो गया, कुछ को टीवी खा गया, बचा तो मोबाइल खा गया, और बाकी तो आप देख ही रहे समाज का ढर्रा। तो ये हमारे संस्कार जीवित रखने के लिए जो वानप्रस्थ आश्रम था, ये अत्यंत महत्वपूर्ण आश्रम था जिसको हमने उपेक्षित किया, और उसके बाद आता है संन्यास। तो संन्यास आश्रम भी एक ऐसा आश्रम है, इसमें पूरी तरह से व्यक्ति किसी का नहीं रहता, घर को पूरे को छोड़ देता है, और वो फिर उसको परिव्राजक कहा जाता है संस्कार के लिए। परिव्राजक का मतलब होता है कि जो घूमता रहता है। हमारे यहाँ 5 महायज्ञ हैं, मैं इस प्रसंग में एक बात बताना चाहता हूँ। पहला महायज्ञ 10 मिनट का है, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, बैठ करके आंख बंद करो, परमात्मा का ध्यान करो, जिसको हम संध्या कहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये पहला महायज्ञ है। दूसरा अग्निहोत्र, जिसको हवन कहते हैं, कुछ नहीं, 15-16 आहुतियाँ देते हैं, वो दूसरा महायज्ञ है। इसमें दो कारण हैं, हमारे शरीर से गंदगी निकलती है, हमारी जिम्मेदारी भी तो है ना वातावरण को शुद्ध करने की। आजकल एनवायरमेंट पर बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, करते क्या है, कुछ भी तो नहीं। हर आदमी अपने शरीर से निकलने वाली दुर्गंध और गंदगी की सफाई का जिम्मा ले ले, उसके बाद इसकी समस्या रहेगी?
1: बिल्कुल नहीं।
0: किसको कितना करना पड़ रहा है? इतना सा, बस बहुत थोड़ा सा।
1: हर व्यक्ति अपना कार्य अच्छे से कर ले तो
0: समस्या ही नहीं होगी। यही बात है। तो जो करने की बात, हमारे संस्कार ये सिखाते थे, हमारे संस्कार ये कहते थे, देखिए जब विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ता था तो उसको कुछ शिक्षाएं दी जाती थी, उसको कहा जाता था जल में मलमूत्र का त्याग नहीं करना। अब आजकल तो सीवेज सारा नाल उसमें जाता है, नदियों में बह रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्या कर रहे हो आप, सारा का सारा जो फैक्ट्री से निकलने वाला गंध है वो हमारी नदियों में जा रहा है। हमें तो शिक्षा ये दी गई थी कि पेशाब तक नहीं करना उसमें,
1: हम और नदी को साफ सुथरा रखना है।
0: साफ सुथरा रखना है, तो ये जो हमारी परंपराएं थी वो छूटती चली गई
1: जी।
0: ये बहुत बड़ी ताकत थी हमारे भारतवर्ष की,
1: वृक्षों की पूजा करना, नदियों की पूजा करना, ये हमारी परंपराओं में था।
0: पीपल हमारे यहाँ पूज्य है।
1: बिल्कुल,
0: वृंदा हमारे यहाँ पूज्य है, जिसको हम ये कहते हैं तुलसी कहते हैं, हमारे यहाँ पूज्य है।
1: बिल्कुल,
0: नीम हमारे यहाँ पूज्य, इनके औषधीय गुण होते थे।
1: बिल्कुल,
0: पीपल के बारे में आपको एक खास बात बताता हूँ, मैंने बहुत लगभग 30 वर्ष में उसको कर रहा हूँ। मेरे घर में यदि किसी को कोई फीवर हो जाता है, जैसे हम कहें कि वायरल फीवर,
1: वायरल है,
0: तो मैं उसका एक छोटा सा कार्य करता हूँ, 10 पत्ते लेता हूँ पीपल के, उनको धोया अच्छी तरह, बहुत अच्छे 3-4 बार साफ किया, उसको कट किया छोटे छोटे पीसेज में, और 3 गिलास पानी में उसको उबाल लिया। उसका जब 1 गिलास रह जाता है पानी, उसको दिन में 3 बार पिला दिया, 2 दिन के बाद तीसरे दिन आपको बुखार आना बंद हो जाएगा, और जब पिएंगे तो उसी दिन से आपका जो शरीर टूटता है, जो कमजोरी आती है, वो समाप्त हो जाएगी। ये उसका औषधीय गुण है, इसीलिए हमारे उसको यहाँ उसको बहुत महत्व दिया जाता है, पूज्य माना जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो हमारे औषधीय गुण है। तो ये जो संन्यास की जो परंपरा है,
1: पीपल के सामने दिया जला जाता है तुलसी के साथ, तो हमने हमेशा ही देखा है कि माँ पूजा करती थी तुलसी की।
0: बिल्कुल, तो ये जो हमारे यहाँ संन्यास की परंपरा है
1: जी,
0: ये भी इसी तरह से, और अंत्येष्टि वो अंतिम है, जब ये शरीर जिससे हमने कार्य लिया है उसको हम ऐसे ही फेंक दें वो भी उचित नहीं, वो दो कारण करेगा, गंदगी भी फैलाएगा, दुर्गंध भी होगी। तो इसलिए हम जब संस्कार करते हैं, इसको भी संस्कार कहा जाता है शरीर का, उसको अग्नि में दाह करते हैं, और अग्नि दाह के समय में उसमें घृत, गूगल, चंदन इत्यादि की औषधियों की भी उसमें आहुति दी जाती है, और उसके साथ में कुछ मंत्रों का पाठ किया जाता है। और हमारे यहाँ 13 दिन तक एक अनुष्ठान होता है, प्रतिदिन यज्ञ होता है, आचार्य प्रवचन करते हैं, उसका साइकोलॉजिकल प्रभाव भी होता है।
1: बिल्कुल,
0: और वैदिक मंत्रों में ये बात बताई गई है कि जीवात्मा जब इस शरीर से निकलता है तो एकाएक माँ के गर्भ में दूसरा शरीर नहीं मिलता उसको, उसको प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, बहुत सारे संस्कारों को लेकर के जा रहा है, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ स्मृतियां भी हैं, तो उसको अलग अलग स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ता है। यजुर्वेद के, आइए मैं भूल नहीं करता हूँ, तो 39वें अध्याय में एक मंत्र है, सविता प्रथमे अन्नि अग्निर्द्वितीय वायुस्तृतीय आदित्यश्च चतुर्थे चंद्रमा पंचमे ऋतुषष्ठे मरुत्सप्तमे बृहस्पति अष्टमे मित्रो नवमे वरुणो दशमे इंद्रो एकादशे विश्वे देवा द्वादशे। ये 10 स्टेजेस बताई हैं, इनसे होकर के आदित्य से होकर के वायु में जाता है, चंद्रमा में जाता है, जल में जाता है, और फिर विश्वे देवा अंतिम है, जो सभी देवों का देव है उनकी शरण में जाता है, तब उसको जाकर के अगला शरीर मिलता है। ये हमारे, इसीलिए हमारे यहाँ 13वीं की एक परंपरा है। इसका मतलब है 12 दिन तक हमने, वो क्षण है या दिन है हम उसको बहुत ज़्यादा नहीं कह पाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि डिफरेंट स्टेजेस से होकर के जीवात्मा गुजरता है, ये भी एक वैज्ञानिक पद्धति, इसको हमने जाना ही नहीं, अब वो छूट गई है, अब चौथा की और बात खत्म,
1: किसी के पास समय नहीं।

0: नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं
1: तेरहवीं करने का।
0: बिल्कुल, वो हमारे यहाँ परिवार को उस दुख से उभारने का साधन था। हम वहाँ बैठते थे, उसके बाद रस्म पगड़ी होती थी। उसका प्रयोजन ये था कि अब तक जिस भार को, सामाजिकता को ये निभा रहा था, अब बेटा तुम्हें निभाना,
1: बेटा तुम्हें निभानी है।
0: तो ये हमारी परंपराएं
1: थी, वो परंपरागत होता आ रहा था,
0: तो ये
1: जिसे हमने रोक दिया।
0: बिल्कुल,
1: आज के अपाधापी जीवन जो जी रहे हैं उसके चलते हमने इसको रोक दिया है।
0: देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो लक्ष्य है ना, वो बदल गया। हमारे यहाँ चार जीवन के लक्ष्य थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म गायब है, मोक्ष गायब है, अब दो ही रह गए, अर्थ और काम। जीवन की इच्छाएं पूरा करना और उसके लिए पैसा कमाना, बस यही दो।
1: बच्चों को ATM बनाना,
0: वो बन गए,
1: वो अपने आप ATM बन गए।
0: आप
1: हम उनके लिए शिक्षा भी ऐसी चाहते हैं जिससे कि उनकी अच्छी कमाई हो सके।
0: कमाई, मैं भी कहता हूँ कमाई होनी चाहिए, लेकिन साथ में संस्कार तो दे दो।
1: बिल्कुल, सही नागरिक तो बनाए।
0: मैं आपको कुछ घटनाएं बताता हूँ, न्यूज़पेपर में भी आई हैं। वैसे भी डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, एक व्यक्ति डायलिसिस पे है, उसकी डेथ हो गई, उसको आपने वेंटिलेटर पर रखा हुआ था, दो दिन तक उसको वेंटिलेटर पर रखा, उसके बाद बताते हैं कि इसकी डेथ हो गई। इस पर मूवी भी बनी।
1: बिल्कुल,
0: हाँ। तो क्यों? केवल इसलिए कि वो संवेदनहीन हो गए हैं, वो व्यक्ति
1: जी
0: जिसको जीवन बचाना था। ठीक है, बचाने के प्रयास करते हैं, वो नहीं बच पाया।
1: सभी के लिए नहीं है,
0: कुछ
1: पर कुछ,
0: मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसा हो गया है।
1: बिल्कुल,
0: कुछ, सब तो होते ही नहीं है, सब बुरे हो जाएंगे तो संसार नहीं चलेगा।
1: बिल्कुल,
0: एक दो होते हैं, उससे एक तो से ही इस तरह का एक इंप्रेशन जाता है और उनसे दूसरों को गलत वाली प्रेरणा भी मिलती है। तो हम इतने संवेदनहीन हो जाते हैं, हमारी संवेदनाएं मर जाती हैं। ये नहीं होना चाहिए,
1: ये नहीं होना
0: आप
1: चाहिए।
0: मैं भारतवर्ष का जानता हूँ, यहाँ का नहीं जानता हूँ। आप किसी ऑफिस में जाइए, बहुत सारी ऑफिस में आपकी फाइल नहीं चलेगी तब तक जब तक कि आप उनको कुछ पुष्पम पत्रम नहीं चढ़ाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अब जो है भारतवर्ष बदल रहा है। हाँ, बहुत बदल गया,
1: भारत सामने आया।
0: बिल्कुल, नया भारत सामने आया है जब से मोदी जी की सरकार आई है। भारतीयता के संस्कार बढ़े हैं, भारतीय संस्कृति का उन्नयन हो रहा है, लोगों में भावनाएं पॉजिटिव हो रही हैं और हम उसको अब जीने की चेष्टा कर रहे हैं, अपनी पीढ़ियों में आगे संक्रांत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारा छोटा भारत है, इसमें भी ये चीज़ें अच्छे से आगे बढ़ें और जीवन में लोगों के उत्कर्ष हो और हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएं, तो हमारे संस्कारों की परंपरा और आपका ये कार्यक्रम सफल होगा।
1: 16 संस्कारों पर तो चर्चा की आज हमने
0: जी,
1: महत्वपूर्ण ये है कि हम युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे आज के कार्यक्रम के लिए आपकी ओर से, और कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएंगे।
0: बिल्कुल, मैं युवा पीढ़ी को संदेश देने से पहले मैं बुजुर्ग पीढ़ी को संदेश देना चाहूंगा।
1: अवश्य,
0: वो ये कि हमारे वेद में, वैदिक साहित्य में कहा गया है कि संतान अपने पिता का अनुकरण करती है। मुझे अपने बच्चे को चरित्रवान बनाना है, संवेदनशील बनाना है, तो मुझे चरित्रवान और संवेदनशील होना
1: बनना चाहिए।
0: फिर आपको बनाने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो देख करके अनुकरण करके ही बन जाएंगे। और नई पीढ़ी से ये मेरा कहना है कि माता पिता में कमियां हो सकती हैं, उसके अनेक कारण है, शिक्षा नहीं है, उनके पास साधन नहीं थे, आज आप साधनों में हम जी रहे हैं। मेरे पिताजी जो थे 4 क्लास पढ़े हुए थे, उन्होंने मुझे BA MA और PhD तक कराया। तो मेरा ये नहीं बनता कि मैं इतना बड़ा विद्वान हो गया तो अब मैं उनको
1: सम्मान देना
0: छोड़ दूं। नहीं, पिता का वही स्थान है और हम अपने संस्कारों को आगे तब बढ़ा सकते हैं जब अपने कुल की परंपरा, परिवार की परंपरा, अपनी सांस्कृतिक धरोहर, अपने पर्व, हमारे पर्व भी इसी तरह से बहुत विशेष हैं, कभी उन पर चर्चा करेंगे जब ईश्वर समय देगा
1: अवश्य।
0: तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बारे में जानना चाहिए और अपनी परंपराओं से जुड़ करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी परंपराओं में कुछ अच्छा है उसको ग्रहण करो, अच्छा नहीं है बिल्कुल उसके पास मत जाओ, छोड़ दो। हमारी परंपराओं में भी कुछ विकृतियां आ गई हैं, कुछ कमियां आ गई हैं, उन कमियों को साइड करो, जो हमारी अच्छाइयां, जो मूल अच्छाइयां हमारी, उनको रख लो। ये मेरा संदेश एक तरह से होगा कि हम अपनी नई पीढ़ी को कहना चाहेंगे कि अपनी परंपराओं से जुड़े रहें। देखिए, यदि आपका
1: अपने संस्कारों से जुड़े रहें,
0: मूल एक शब्द है
1: जी,
0: और जिसका मूल नहीं होता ना, हम उस कहते हैं मामूली।
1: बिल्कुल,
0: इसका कोई मूल ही नहीं है।
1: हाँ।
0: और जो जड़, जिस वृक्ष की जड़ नहीं होती, वो न हवा के थपेड़े में टिक सकता है, न तूफानों में खड़ा रह सकता है।
1: बिल्कुल,
0: और जिसकी जड़ गहरी होती है, कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, वो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो हमारी संस्कृति जो है वो जड़ है, जो हमें सर्वाइव करने के लिए एक सामर्थ्य देती है। हमें अपनी संस्कृति को संजो करके रखना चाहिए, अगली पीढ़ी को देने के

0: लिए तैयार होना चाहिए, हम तब दे पाएंगे जब हम लेंगे। मेरे पिता के पास यदि मान लो संस्कार नहीं थे और मुझे अवसर मिल रहा है तो मुझे उसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अगली पीढ़ी को देना चाहिए।
1: मेरा बहुत अच्छी बात आपने हमारे युवाओं के लिए और वृद्धों के लिए भी बताई। आज आपने समय निकालकर हमारे साथ ऐसा सुंदर कार्यक्रम सजाया। सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद देंगे, आपने आतिथ्य स्वीकार किया, आपको बहुत बहुत आभार। पूरी टीम की ओर से आज गीत नृत्य और परंपरा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुभ संध्या।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें सुमैरा अकबर अली से। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। कैम्ब्रिज के नियमों के खिलाफ अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, पाकिस्तान और दक्षिण एशिया में ए लेवल मैथमेटिक्स पेपर 12709 के लीक होने के नतीजे में कैम्ब्रिज ने गए 29 अप्रैल को दिए गए इम्तिहान के नतीजों को खारिज कर दिया और इसकी जगह 9 जून 2026 को इस पर्चे की परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है। मुर्शस और रोड्रिग्स में इस निसाब यानी पाठ्यक्रम के 448 छात्र हैं जो ये इम्तिहान देने वाले हैं। मुर्शस में लाए जाने वाले पार्सलों पर काबू रखने के लिए नई टेक्नोलॉजियों को शामिल करना और खतरों का संचालन करने वाली प्रणालियों को मजबूत करना मुर्शस रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक के साथ कोरियन कस्टम सर्विस के एक डेलीगेशन ने आज जूनियर मंत्री से सिलसिले में मुलाकात की। दानिश्वर दामरी ने कहा कि ड्रग तस्करी और गैर कानूनी पैदावारों के बढ़ते खतरों का संचालन करते हुए सरकारी सेवाओं को डिजिटलाइज करना सरकार का विजन है। आज फेडरेशन डी ट्रावायर्स यूनी प्रेस से मुखातिब हुआ टेक्सटाइल वर्ल्ड नेट से के 3 कारखानों के करीब 550 कर्मचारियों की हालत पर बात की गई जो एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आत्मा शांतु ने उन्हें उनकी तनख्वाह चुकाने में देरी और क्लाइन टेक्सटाइल तथा यूनिवर्सल फैब्रिक के कर्मचारियों की बेरोजगारी का भी उल्लेख किया। उन्होंने एक जुटाव के आयोजन का भी ऐलान किया है। विदेश में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एबोला के नए मामले सामने आए हैं। पूर्वी उत्तरी राज्य में करीब 246 संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई और 65 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Center 94, North, South 95.6, East, West 98.2. You are listening to RM3 Radio.
4: You're listening to RM3 Radio. Mana.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस आज की चर्चा।
1: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। जी हाँ, आज शुक्रवार और आपको पता है कि आज हम ज़्यादातर कानूनी तौर पे जितने भी बातें होती हैं वही करते हैं, और आज भी हम एक ऐसे विषय के साथ आए हैं जहाँ पर आज हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो ज़्यादातर उन पर डिटेल्स देंगे। तो चलिए देर ना करते हुए मिलते हैं हम बैरिस्टर लॉ कपिल देव रघुनंदन जी से। कपिल देव जी नमस्ते।
2: नमस्ते जी।
1: कार्यक्रम में अहिला बहुत बहुत धन्यवाद।
2: शुक्रिया। हमने के सब भाई बहन के प्रणाम।
1: सबको यातान करेला कब बात। हमने के जो कार्यक्रम बा यहाँ हमने शुरू करे जाते ही जा, और आज के जो विषय बा हम उगर पर बोले से आगे हमने के जितना भी दर्शक लोग हमन जाओ लोग के बता दिला कि कार्यक्रम आप लोग रेडियो मॉरिशस पर सुनत हुआ जा, और

0: अभी दर्शक लोग हवन जाओ लो के बता दिला कि कार्यक्रम आप लोग रेडियो मॉरिशस पर सुनत हवजा और कुछ कर बा यहाँ तक कि अपन घर से निकल कर तुहरा यहाँ एम बी सी तक आए के भी पैसा चाहला।
1: जरूर
0: हमने आज बात करे थे जा पैसा की, लेकिन जब इतना सब कुछ बोल देनी जा तब पैसा कहीं ना कहीं चाहला मिले के, चला काम करत हुआ पैसा मिलल आवत हुआ काम करत हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान जो बा कैसे बोल जाए को लिमिट में रह जाला कि इतना से इतना भी मिलता, महीना के आखिर में तो बस 10,000 बचता, 10,000 में हम कैसे घर बनाब, 10,000 में हम कैसे कुछ करब, तो एकर खातिर हमने ले लोन।
1: हाँ जी,
0: अब लोन जो बा कैसे मिलेला, लोन के पीछे के कौन काम बा, के सकी लोन ले, के सकी बड़ा पैसा ले, के सकी थोड़ा कौन पैसा जो बा ऊ ले, और कानूनी तौर पर कौन काम होवेला, इस सब के बारे में आज हम बताब जा।
1: हाँ जी।
0: तो शुरू कर जा सबसे पहले है जो शीर्षक बा आज के।
1: हाँ जी।
0: ऐसे बोले के देखो छोटा कौन बा लोन, लेकिन बहुत भारी बा।
1: हाँ अच्छा वेदिका जी, जैसे बोल रहा है पहला शुरू हमने आज बात करब जा लोन के। लोन जो जोड़ल बा कानून से बन के हमने तक गमोए कानून के है। लोन एगो एकरे नाम हमने फांसी मरसा अंप्रेंट प्रेते मांगत हुआ एगो लोन। अच्छा एगो फिनांसे करे के एगो बड़का पोज है। एक बार तक एक एग्जाम्पल दे दिल भैया हमने दूसरा भी रहते हैं सर, एगो फोजे फिनांसे करे के तो चाहेला कुमा जी पैसा। एगो एग्जाम्पल कैसे हमने देखेला सर, कंस्ट्रक्ट करब बनेब एगो घर, अभी के लिए तो सब माँ भाई बहन सब कोई जानेला घर बनाई के जमीन खरीदे के या एगो रेनोवेशन करे के या एगो गाड़ी खरीदे
0: एगो बिजनेस करे के।
1: हाँ अभी ये आवत है एगो बिजनेस करे के, अभी तो गाड़ी खरीदे के पहले तो 200,000 में एगो गाड़ी मिली, अब तो मिलियों की बात करे ला सर,
0: अब तो 200,000 तो खाली डिफॉन्स हो
1: जाएगा। हाँ लासीगांव से नहीं होले, अरे वाचे एक बहन आदमी शादी करेला, तो शादी करेला तो करते यहाँ पैसा नहीं बा, शादी के तो जाने लगो हॉल कब दे कही करब सब ओकर खाई पियाई के तो 2 रुपया नहीं लगेला। एक बान भाई बहन लोग के नहीं बा पोजिशन वहाँ में, अभी देखेला सर कि हाँ शादी करे के मकर एगो पोजे बा में पैसा नहीं बा। इस छोड़ द कितना आदमी हमने के आवेला हमने के लिचित में देखे, बोले हम श्री रघुनंदन तोराल हई देखे, बोले कौन सी इजाफे, हम बोले बोलता है वो जीवोश मांगत हई। देखो आदमी कितना मजे लोन भी मांगेला है जीवोश के, तो जीवोश तो काल तक 10,000 लगे आबू या वो का, अभी तो जन्मे करेला एगो बड़का पैसा लगेला आबू या वो का के जीवोश के एक मजे हई करे के एगो का। ओ वो आदमियों के कबूकल बोल फिसवा, बोले बाप रे बाप हमारे यहाँ तो पैसा नहीं बा। से बुजुर्ग बोली कि 50,000 आबू या वो का के लगी, बोली 50,000 हमार संगे नहीं बा। तो अब ऊ जीवोसवा करे के तो ऊ अब जाई लाभ के भी मांगे 5 मिनट अब देखब सब। ये तो कुछ नॉर्मल है कि इतना माँ बाप के सपना कि ओकर लड़का HSC कर देलक, कुछ ना कुछ चाहेला ओके करे के
0: पढ़ाई।
1: हाँ पढ़ाई के, और पढ़ाई के वो सोचेला हर माँ बाप कि यहाँ कहाँ, बोले भेजब हमर लड़का दूसर देश में, तो बोले देश दूसर देश से आवेला तो स्वाजी जहाँ बड़का है कुमार जी वहाँ ओकर लिखित कुमार जी करे के
0: मिलियो लग चला।
1: हाँ तब यहाँ से निकाल के अच्छा की कर माँ बाप कि कुमार जी मिलियो है, पहले के तह में हमने पैसा का करते सर है कि चदर के तरह एक मजे मतला के तरह हमने रखत ले सर, अब वो कहाँ से मजबूरी के ऊपर
0: रखत लंचा जी कर रखे कोफ रहल, या तो फिर जे लगे पैसा नहीं बताऊ, या तो फिर ऊपर पोटली बांध के कहीं ना कहीं छुपा के रखत लंचा
1: जी का, तो कहाँ वो करिया बाप बाप मिलियों के कि हुआ अपन लड़कवा के 3 बरिस के तो मिनिमम चाहला एगो कु करे के, भूल जाओ कर स्पेशलिस्ट उस करे के नहीं 3 बरिसवा के चाहेला एगो देख गई को मजे एगो बी ए करे के सी बा ओकर मजे पढ़े के कोनो शीशे में, तो यहाँ देख लो कर लिचित खातिन माँ बाप के चाहेला पैसा। अरे माँ बाप के बाद जमीन, हाँ तो नहीं बाप बोला था कैसे हम जमीन वहाँ बेच के कुमा जी अभी देश हुई, हाँ कोई के सांस हो जाला कि हो जा अभी लड़कवा पास हो बा अभी HSC देश हुई हो बा, अब कब उ जाए जमीन वहाँ बेचे कब दे पास करी, तब ले तो 2-3 बरिस यहाँ चल जाला। तो सोचेला कि एक गो चीज करे के ओके
0: उधारी
1: उधार करके एगो पॉइंट लेके एगो लोन लेके आर ई आज के दिन ओब्लिगेटरी हो गल बा। हमनी के कंसोमाते तो जैसे हमनी भी एगो कंसोमाते हैं, सब सब कोई जानेला कितना चीज महंगा इस देश में बा, नहीं दूसरा देश में चारों बगल ये एगो कुमार जे एगो ट्रेन

0: समझ लेना
1: एगो नॉर्मल
0: एगो नॉर्मल चीज है आ एगो चीज जे युवक में जे हमनी नहीं कर लिया ऐसा कौन सो माता के बात में बोले के कौन सी मंगा वासी बाका मैं एगो आदमी के दू बुझ ज्वाइन करे के अभी के लिए बहुत बहुत मुश्किल बा तब ले को करेगो भोजे होई ओके एगो चीज करेगी आले एगो तो तू तो सकला एगो घर बनाए एगो जमीन खरीदे अब काल के लड़का एगो लेकिन आप हमी ले बताई हमी तो अपन कुमार जो सकली कुमार जो काम करके जमीन खरीद के घर उर बनाई हम नहीं देखते हैं हमर लड़का के बा पोजिशन हुआ कि उस सकी अभी के लिए एगो जमीन खरीद के एगो घर बनाई के जो ओके मन हो ई करे के हाँ। तब तक जाए के चाहेला मांगे के पैसा कहूँ और एगो पैंत ले के चाहेला तो हमने देखी ला सहिया ओके जाए के चाहेला लाबंक लाबंक से एगो लोन मांगी अच्छा आइए के लोन के कहानियाँ शुरू करब सर हाँ। हमने देखब सर लाबंक के जाए के गाड़े जाने ला एक नाम है प्रेते सुगाज ये एगो कुमाजकार है पहले एगो जमाना रहल लाबंक तो पैसा नहीं देवे लाबंक ऐसे नहीं रख आज जैसे एडवर्टाइज करे लन सन की देवत हो सन पैसा सैंक पूछ लेते सब नहीं तो का रहल पहले आदमी एंजविजी जैसे हमने बोले सर परिवार रहल या एगो आदमी रहल उ पैते करे पैसा उ पैते करे पैसा कैसे यहाँ मॉरिशस में देखिए का कर ली हो
1: मुनीम जी
0: हाँ तो हमनी मुनीम जी मॉरिशस में बहुत रहल तो हमें सिल्मा यहाँ रहल हमनी मोनी लैंडर्स आक मोनी लैंडर्स आक शुरुआत में हमने के देश में ये शुरू होल जहाँ इंडिविजुअल आदमी लाबंक नहीं वो रहल कुमार जी पैते करत रहल पैसा इंडिविजुअल के ओकरे नाम पितार बोलन सन कासे
1: अच्छा
0: ओकर नाम हो गरल कासे
1: यानी कि हमर हमर लागे मान ल ढेर पैसा बा
0: हाँ
1: अब तोरा एगो पैसा के काम बा
0: हाँ
1: हमर लागे एबा पैसा मांगे
0: हाँ जी
1: तो हम तोरा पैसा देव ओकर बदली में कुछ नहीं लेब
0: नहीं अही बोलत है सही बोल ओकरे न मक्का से देखो भी का करी हुए तो ऊ कब शुरुआत में कब होल उ पैसा लगल पैते करे तो ओके चाहत एगो लिसेंस एगो लाइसेंस एगो लाइसेंस मनी लैंडर्स एक्ट में एगो बोलल चाहेला ओके एगो लिसेंस चाहेला उ लिसेंस वा नहीं रहत त नहीं है सकत पैसा दे हाँ भीतरे भीतरे दिखब आदमी देवे दूसर के पैसा पैते करे मैं हिया इलेगल रहल उ बकतवा
1: अच्छा
0: मैं एगो लेपोक आल
1: ई सब लालवावा रहल आगे
0: हाँ हाँ लगल
1: कौन कौन कब कब के बात करत है
0: 1968 के विषय में कुमार जी भी बोला था गाड़ी क्यों करा गाड़ी है और एक बार तो पहले है आदमी रहे नहीं बोले कुमार जी ए चाचा हम जानते हैं लड़का जाता कुमार जी दूसर जगह है देश में हम कितने पैसा बा तू तो जाने ला पैसा प्रेते करे ले वही का प्रेते करेला वो आदमिया ओके मनी लैंडर्स है आँख में ओकर एगो लिसेंस चाहिए और जो पैसा प्रेते करी लिसेंस नहीं बा तो वो एगो ऑफेंस रखल कानून में
1: अच्छा लाले स्वासंत की बोलत
0: हो हाँ, कितना आदमी कुमार जी जोन पैसा कुमार जी रहल प्रेते करी वक्त में पैसा कब गैतू नहीं सकल करे जोन ले ले रहल आदमिया सेजी कर दी ओकर ओकर धन दौलत से तू जमीन बोली ना अच्छा तोर घरवा सिपा तोर है जमीन हुआ ये बोली पोतेक में डाल दे हम तब हम तो दे पैसा न तो इसने तो नहीं दे ना खाली ओकर कॉन्फियंस हुआ में नहीं दे मैं का होल ई मनी लैंडर्स एक्ट अब लीगल नहीं है उ बखतवा रहल बस कि ई है मनी लैंडर्स एक्ट वा आ बोझे हो गल मतलब अब कानून नहीं है समझ लो ना अब ई नहीं रिकोनेट हुएला मिसलमा मेम की नई बा पाफे न ये बाना परिवार बाना फैमिली
1: हम हवे पूछे कर रहनी कि मान ल हमरा तोहर से पैसा काम बा
0: हाँ।
1: आप हमर परिवार हव तोहर लागे पैसा बा हमरा लागे पैसा नहीं बा
0: हाँ।
1: हमके 5 लाख के काम बा न तो हम तोहर संगे 5 लाख मांगब तो उ पापिये में कैसे हम नहीं बोल रहे हैं सर दैनिया पिछला वाला हाँ। प्रोग्राम पढ़ लीजिए सर तो ये सब होवेला
0: होवेला और एगो जाफे कुआं है अपन बगल से कैसे तू हव तू पैसा प्रीति सकब करे बस की हमके जान पहचान बा परिवार है स या संगतिया है स या जान पहचान बा तो माँ के तोरा बोलब जाने लो हमके पैसा कुमार जे है बा नेसेसर बा सकते हमके हाँ काम बा हम बड़ी खुशी रहती हमके सकबा पैते करे

0: छोक केतनो सिफवा हुई का एगो बोली के एक मिलियो हुई तो वो बुगवा तो सोची अरे एक मिलियो मांगत हुए तनी जिसील हुई तो के पे ये करके गई तूने करे के मैं एगो जिस मांग कि हम सकब तो के पैते
1: एक लाख दो लाख मांग बा सकब देवे
0: हाँ ये कानून में लीगल हो
1: अच्छा
0: नहीं चाहे गो लाइसेंस रहे के तब सकबे जी से ला बैंक एगो लाइसेंस ना उल अप्रेंटे करे ला पैसा एगो पहले मनी लेंडर्स एक्ट में एगो लाइसेंस रे एगो लाइसेंस रखल तो उ लाइसेंस वहां से सकत उ आदमीया पैते करे मैं नहीं ई जुन बाप संगतिया संगतिया परिवार परिवार में ई लाइसेंस सब कुछ नहीं है मैं सेलमा बुल्ला हतरे लुआ या बतियाले लिसा वाला चाहे ला एगो पापिये करे के एकरे नाम हम बुल्या चाहे ला एगो कोंत्रा रिकोनेसेंस दे डेट आले एगो आदमी का करी एगो पापिये ले एगो आप ये आकात वो पापिये आकातवा में बस सब चीज जो लिखे के बाद वो लिखी वो में कि ऐते लेते लोग के पैसवा देवा था और सब मजे ऐते लिपोक में गई तूने करी सब ओकर कुमा जब राखों दे भी देखो सब का करी मैं सिलमा एगो सिर्फ दे बैगो बड़का पैसा पैते कर बा वो आदमिया के तो अपने से नहीं लिखा
1: अब वही
0: हाँ एगो नाम दे लो अब वही हो या वो का हो कुछ बेगो अब वही कैसे है तू जाके ओके कुमा जे ड्राफ्टे करी वो जो लिखी लीगल रही तोहरो बगल के नैकर बगल के ऊ कोनो के फावीर नहीं बा वो लिखी जोन कितना लोता तो वो का करी एगो पापिये बनाई एगो जैसे हमने बोली ला उ में लिखी उ में जैसे आर कानून में है बन एजिफोम मतलब कानून बगल से रही ओके बोली कितना पैसा लेवता सिबोजों आदमिया से हजार गो रुपया ले ला से पास सौ हजार तो उ में लिखी सौ हजार एगो देले डाली कब रंबूसे करब रंबूसे मोटा कितना पैते करता और एक बान आदमी बोले ला ये पैसा में देवता उठो के दुआ नहीं बोला तेरे में दे के नहीं सकी लें तेरे में दे मेम के गो जिमुन इंडिविजुअल है
1: अच्छा
0: हाँ
1: यानी कि सबको ये अधिकार है
0: हाँ?
1: कि मान ला कोई भाई को बहन से एगो बहन एगो भाई से पैसा ले होता कि देख हमके एक लाख के जरूरत बा तो हम तो कह तूने कब तक सौ मिल रुपये जस्ती दे वो
0: हाँ?
1: पापियों में द्राफ्ते कर दे लिख दे डाल दे कि सौ मिल रुपये के चाहना जस्ती दे क्यों
0: हाँ? एक बान कोनो तो एक बान करे वो मालूनेत की काम है कोनो तो तोहरा लिख दे से बुझो सौ मिल कुमा जब पपियवा में करता हिया मैं कब देवा था तो सैकंत मिल हुए देवा था नहीं लोग करते
1: हाँ, भाई पापियवा जे लाखों में जाए आ हुए सब अगर सामने सब पापिये होए हाँ, एगो एगो एगो एगो
0: लीगल हो जाए
1: हाँ लीगल रही एगो सबूत बा
0: हाँ,
1: कि देखा
0: हाँ,
1: भाई बोले रला तोहरा चाहला एक लाख चाहला दे के ता एक लाख भी चाहला दी
0: हाँ, आर हमनी के कानून बोलेला ओ ने पे पा आले आउट ए कॉन्ट्र एन डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंटवा में जो लिखल बा ओ ही होई जे लिख होल सौ हजार दो रुपया या लेते रे होई ता लेते कोई कब कोई तूने करबा ते से बोली सा जब बनेबे गो पापी आकात में गो पहेल एगो आवे कब करी तो सब मजे सब मजे जुन जुन जाने ला नहीं तू करता ऊ में तो के बोली नहीं ई कब कर वैसा कब डालो समझे तोरा एगो मजे को पापी ले गालो है हा? मैं सिर में सब कुवे कर दे जोन चीज नहीं तू करता अपने बगल से तो ये रिकमेंडे करल जला जब एगो बड़का सोम ले बा एगो आदमी से प्रेते हाँ का भाई हो बहन हो या परिवार हो जब एगो पापी देख के एगो आवो के देख ला एगो ये बड़का पैसा नहीं लगेला एगो आवो के दफ्ते करके ऐसे एगो लित है एगो है ऐसा लित नहीं एगो कोथरा बनाई के तो हिया देख ला रिकोनेसेंस दे दे एग्जिस्टे मतलब वो आदमिया आक्षेपते बा रिकोनेट बा कि ये पैसवा ऐतिल दिले बा और सब लिख दिले बा और दूसरा चीज चाहे ला हमेशा वैसा ने गो पापी बने वैसा ने गो कोथरा बने बा तो चाहे ला ओके पोजिया करे के दे ओरिजिनो मतलब दू गो कैसे गो कॉपी भी आर कैसे हम आर तू एगो पापी कर लें सा एगो तोहर यहाँ रही एगो चुप्लीकेट जिसे हमने बोल सा एगो तोहर यहाँ रही एगो हमर यहाँ रही मतलब ओके कुमा जे आर लिखल जला मेड इन चुप्लीकेट कुमा जे लिख दई कुमा जे फिनिश हुआ में बॉटम ऑफ सो आकत हुआ में कि ऐसे लोगो पापी कर ले हवा ये दू गो मई तो अच्छे रहल बस ये जहाँ तोहर बा देखब तू कौन सी लिखल बा में आर हमेशा रही एगो लिमंस काम एगो चीज है देखला पहले के जमाना में लाभांक तो पे ये करते रल वही लोन देते रल मनी लेंडर्स आँख में हमने जैसे बोल सा कासे देते रहल और हमने देखी रहा आज भी भाई बहन या परिवार या कोई सकी दे तब मैं

0: सिल्मा कर फॉर्मालिटी अब कासे है कि बुतवा बोल जैसे तनी एक बार भाई लोग तो जानो तो कौन विक्चिम बने कासे है का करे जहाँ एगो आदमी के कुमा इसे कुमा जे है हाँ। आभोजे हो गए कुमा जे है फिनी हो गए
1: चोरी कर ले बता लेता
0: हाँ लिख दे हियाँ सिबुस पचास हजार देवता उन पपीवा में मैं तोरा देवा था 25 मिल में
1: यानी कि तोरा 50,000 के पाप के बने बताई कर मैं अंगूठा पर इसकी आगे तो धीर कोई पढ़ा लिखल नहीं रहा
0: नहीं मेम की लिखल बा मेम की नहीं कुमा जब पढ़ल रहा हाँ ये गो खुईते हाँ, हाँ, मिसलमा आदमी करी से बोले देख हम अली काल नहीं पे कर बे तुम के नहीं देखे चल अब वो का के आने के लाखूर में अब तू खुशी हो बे तो देख हम तो के हई में 25 में दे मिसलमा 50 पापी में लिखत हैं हम अब वो आदमी यहाँ के वो बकतवा चाहत पैसवा
1: अगर अगर यहाँ और कुछ नई बार रास्ता चलाओ के वो पैसवा चाहे ही ला
0: हर गोड़ में गिरी बाप बोले देख चचो कुछ लिख दे पापे नहीं है पूरी हमके पैसवा दे ये हुए ला जी के चाहे ला वो बकतवा वो पैसवा तो हियाँ तब 50-25 वेंसेंट मिल रूपी का कर दिल बा हियाँ मत एगो थियोंगे कर दिल बा इसी को नाम दिलन सन कासे अब कब ऊ पपी हुआ कब कर दिल बा सब लिख दिल बा बाप ऊ आतान करेला दिनवा हाँ। कैसे आदमिया लेते हुआ नहीं दिलक पैसवा नहीं दिलक या इंस्टॉलमेंट हो या दापे पपी हुआ नहीं होल वक्त हो गल तदमिया तो जाए हुआ उकर से तारे देख लाभंग से देव तो हो गल तो सब रिजिस जुल करे तो हर इंस्टॉलमेंट हुआ मैं हिया का कर लग अब ओके बोले चाचा हम नहीं सकली तो के पे ये करे बोले कोरे गुआ कहाँ करी हिया लेता पेता कुछ नहीं दे ओके जीरे जाके आ वो का वो के हई ठोंक ठोकाई बीरो में ओकर जा बोले हई खाई आदमी हमके पैसवा नहीं दे ले बा तो बोले नहीं दे ले बा पापी वो सब बा ना बोले सब बा आज तक नहीं दे ले बा बोले नहीं दे ले बा तो का करी एगो केस डाली ला बार में ऊ चीज हुआ जमीन जे हो जो दे ले कोई आदमिया उपमा जे ओकर ही में लेता नहीं मिले ना मैं हम लाबक पे कब आप सब ते भी देख सके छे लेता देवे ला लेवा
1: यानी कि आज ऊ एगो उनके पास जमीन बा त ऊ पैसा ले लक जमीन ऊ गिरवी नहीं रख ले बा खाली बोलक पैसा दे के इस अकाउंट मिल डाल दे लक अब पैसा नहीं से कर दे तो कुछ करी अब बोली पैसा नहीं दे ले बा अब ओकर जमीन हड़प
0: ई अब ओकर ध्यान बा जमीनवा में सब का से पहले के हमने एकदम कब बतिया थी कितना के समलिए नहीं सलाकुर में तब दुनिया के नमो याद करते हैं सांझी के मैं समझना नमुआ नहीं बोला सा अरे तो देख बो ऊ का करता जाने ला कि ई पैसवा नहीं सकलक दे पपीवा हो गल कहाँ बुसे करे के ऐतिल दात हो गल नहीं सकता कहाँ बुसे करे ऊ तक जैसे बोली गल आबू या वो का के देखे सेजी करे के ऊ जमीन हुआ तब बेचे के अब का करी उस जमीन हुआ के जाके अब एगो कुमा जे ओके लबार में ले जाई ओके बेचे के एक बान का करे अपने लबार में बस जा एक दिन हमने आके देखब सर लिसिताशियों ही कैसे लाब में कैसे वो चीज बेचल जला है अब हुआ कब हुआ आल है में है लबार में पति आई ब एक बान आदमी पूछे कर रहा था उस जमीन हुआ में बस की गिरवी तो रख दे रहा लिपोतेक में तो रख दे रहा बेचारी या बेचारा तब तो नहीं सकता पे ये करे तो वही आदमी यहाँ जो प्रेते कर ले रहा पैसवा तो हुआ मौसे कोत के आगे बोली हाँ हम ऊ पूछे करी जमीन हुआ के और वही किन ले
1: अच्छा
0: हाँ अरे यहाँ किन ले तो का करी ऊ पैसवा जो ओके मजा नहीं है लगल तो यहाँ तो सीसी हो गल
1: जमीन भी
0: चल गल पैसो चल गल नहीं सकल हो अब तो ओकर हो गल इसे देख बहुत बहुत उ लोग जैसे हम नहीं बोल सब मिलियनेर हो गए लंसन जब उ लोग के मैंने तब एगो लेपो काल का देखा था गुवेन में कि एगो आबी करे लंसन मोनी लैंडर्स लोग तो उ लिसेंस वही
1: खास तौर पे जब देखा तो बच्चा कि धोखा दे के जमीन हड़पत वन सा तो कहीं ना कहीं एगो एगो ऐसन एगो लिदे आल हुई कहीं ना कहीं कि नेप चाहना बस करे के
0: हाँ।
1: और फिर उकर बाद में शायद ही सब
0: हाँ तब ई आ रहे थे हो गल मनी लैंडर्स ई तो देख ले लिस भाई बहन या परिवार कैसे सकेला तुम्हारा पैसा दे देख ले लिस हियाँ लाबंक में अब आप सक कैसे लाबंक कुमा जी प्रेते करे
1: हमने के तनिक बताओ ना आगे की लाबंक कैसन रहल
0: हाँ हमने के पहले के लाबंक एगो दूसर काल थे पर हमने के एगो एगो एग्जाम्पल ले लस नाम बोले कि नहीं मैं जो एग्जिस्ट बारोडा बैंक कैसे लैंड में बा आर हिया नहीं एगो एगो चीज सच कैसे एगो मोबाइल बैंक रखल यही खातिर बोले के चाहना ओकर नमुआ नमुआ तो नहीं बोलती सर मैं ये कानून खोरी लीगल है कोई के नहीं कॉन्ट्रैक्ट मैं फंक्शने कैसे करे ऊ लबंकवा लबंक रहल मोबाइल मतलब तोर यहाँ पैसा बा

0: तलबों को आवे ओकर वान में तोहर घरुआ में। अब हिया लेके पैसवा जोन देवा तोहर एगो अकाउंट करे एगो कने रहल समय कने वा मिली दे कितना पैसा लेव था जो ओके देवत हो तो अनमन ऐसे अभी नियर तो ऊ पैसवा घर घर आवे कलेक्ट करे। वही बकतवा तोहर मन होई मांगे के पैसा ओकर से लुए तो हू भी मजा भी है सब बक मजा
1: यानी कि है जन मोबाइल बैंकवा बा ई गांव गांव जाए घरे घरे जाए।
0: हां जी
1: तब मान ल तोहरा एगो पैसा लेके रही
0: हाँ।
1: तो तलाबों से जब पैसा ले लेला तो तोहर घरे आके पैसा लेके जाए।
0: हां ई एही काहे ओकर नमुआ बोली ई एही खाली एके गो लाबों को रहल ई मॉरीशसवा में लैंड में तजाला फुबू में जहाँ विलेज में कहाँ हो जहाँ मजे गाँव गाँव में
1: बस कहे गाँव के लोग पैसा लेके कहाँ दूर दूर जे अंसा थोंसपो उन्हें रहत हल बैलगाड़ी चलावत लन जा
0: भाई बहन लोग जात रहल आबुका आबू देखे शहर में तब है तांत में पैसा ले जात रहल अनसन कुमा जे है पेय करे के हुआ कितना विक्चिम हो गल अनसन कितना चोर होने शहर में तो जन्मे कर रहा चारों बगल वो चोर है बस आतान करे कि कहाँ आई कैसे देखी ये आदमी आ जाता वो जान जाए उ तंतुआ में पैसा बा तो देख बा कितना विक्चिम हो जालन सन कितना चोरी करत लन सन तो ये भी एगो चीज है तो ये लाभक तब कुल शुरू कर लग तो यही पहला शुरुआत में लाभक रहल लाभक में तब अभी तो नियर नहीं बा न चेक बुक बा सिपा जूस बा कौन सी सकब करे हुआ तब लाभक में खाली एगो कहने रहल जैसे हम नहीं बोले सर डिपोजिट अकाउंट एगो कोंत हो तोहरा मन हो लाभक में जाके एगो पैसा डिपोजिट करब हुआ लाभक में डिपोजिट करब अभी तो देखब
1: थोड़ा थोड़ा याद आता है दादा के तनी कुन कतलामक तनी याद आवता
0: है का अली दादा दादी के कब्र रहे अरे अभी के देख लो अभी के तो माँ बाप का करेला अपन कम एगो लाज हो जाला एगो जॉइंट अकाउंट खुलेला अपन लड़का से लड़का के बोलिए जाने ले हमर पैसा कब हम मलाद हो जाब तू ही जाके कुमा जैन निकलिए या ओकर पैसा पहुँचो वहाँ वैसे होवेला उ अकाउंटवा में बस कितना भाई बहन लोग रहेला कितना झगड़ा होला बोले मार रहल ना यार तू एगो का अकाउंट छोड़ कर दल्ले रहेला बैंकवा में सब पैसवा दे कत निकाल दिले होए इधर मर माँ बाप के पैसा रहल एगो दूसरा कहानी है मिसिल में एगो जॉइंट अकाउंट विशगत खोलत रहन सन जहाँ दूगो आदमी कुमा जे एक गो है में रहल कोंत में ओकर नाम रहल कि सकियन सन निकाले या डिपोजिट सकियन सन पैसवा हुआ डाले इमें एगो कहानी शुरू होल कैसे लाभों के
1: हाँ, तो अब जब लोन की बात करत है जा
0: हाँ, तो अब आई सा उमे हाँ, अब बस ये पूछ लाम के कैसे उपेरे हुए
1: हाँ,
0: ना
1: हाँ,
0: पहले
1: चेहरा जाने के ना
0: हाँ, अली अब हम नहीं देखब सा इंस्टीट्यूशन जो हम से बोली लंसन क्रेंसियर कैसे जो है एगो इंस्टीट्यूशन अं प्रेते करेला है पैसा उल्ला बैंक
1: हाँ
0: अब एगो आदमी के मन होई पैसा अंप्रिंटे करे के एगो लोन मांगे के तो उके जाए के चाहेला लाबंक जाए के चाहेला उके हु एगो एगो इंस्टीट्यूशन है जोन रेकोने करेला जोन अंप्रिंटे करेला और इंस्टीट्यूशन वा लाबंक वा उ प्रोटेजे होवेला कानून बगल से
1: एगो एगो एगो कॉल वा सकब से ले
0: सुनी जा
1: एगो एगो श्रोता हुआ हमें के फोन करत हुआ जा हेलो
2: हेलो बहन जी नमस्ते
1: नमस्ते नमस्ते बहन जी नाम बतावा
0: नमस्ते बहन जी
2: हाँ देखा बहुत अच्छा विचार देवत जा ये हमने के परिवार में बीतल बा आगे के आदमी पैसा फेंटे करे तो कर में कैसन एगो मालूनेत रहल
0: हाँ जी
2: देवे हाँ लेकिन जब दिन होत रहल तो घर छोड़ के भाग जाता जा हाँ घर अपन अथी करे के घर मट्टी बंदी करके अपन लेखा के शादी कर लग और लेते के देले जात हवन फिर बाद में जब ओकर समय आल ओकर दात ओकर सब पैसा घुमाई के जब जात हवन हर कुत ओकर घरे तो ओकर परिवार बोला था नहीं नहीं बा घरे नहीं बा घरे ऐसे करके जहाँ दो दिन पासे होल तब भेटाल तब बोले जे तोर मट्टी डूब गल अब तोर मट्टी डूब गल अब तोर दिन दे पासे हो गल अब ऐसे करके वो बेचारा पगला हो गल देखा था ना
0: हाँ
2: हर मट्टी सब डूब गल पगला हो गल अंत में बेचारा पागल से बहुत दुख सलक।

0: लेकिन एक न्याय करे होला ऊपर होला बा सलमा जोन दमिया ऐसा मालूनेत करलक कब्बो सुफल नहीं हुई।
1: धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बहन जी। हमने के तो विषय आज के लोन है, हमने लोन पर बताया था, लेकिन अच्छा बाकी। हाँ,
2: अच्छा बोलन माता जी।
1: हाँ,
2: ये बोले एक्सपीरियंस ऑन प्राचिक, जैसे हमने बोले सा हुए पहले, इसे शुरुआत में बोले से ना कैसे प्रीते गए मुनि लंडे साक में, ये सच है। जब वो जन का सेवा जो कर नाम बोतली सजे प्रीते करे वो कपपिवा कर दिले बा, ये आदमी या जात रहल ये हमर को निशांस में बा
1: ज्यादा पैसा दे।
2: हाँ, सिनेमा जैसे बोले सा करता ओकर संगे तो यहाँ का करता दिन दिन तो जाता। अब वक्त वह हो गल जो कुमा जे उप पिवा में रह लिखले भी हो या पैते कर लो तो कुमा जे दिनवा तो वक्त हो गल, अब नहीं सकलक दे रहे तो वो का करे। अब तब केसवा डाली ना बोली हाँ दिन रहल ऐते लिपोक में तो के चाह तो कहाँ भूसे करे के तो हाँ नाम के नहीं कहाँ भूसे कर ले तो खोज तरल सन मौका ऐसने सेजी करे के जिसे तरह लो बोतली ताकि सेजी कर ले तो वो जमीन हुआ अपने जाके हुआ कि नहीं हई मस्ते कोतवा में कब लाभ में जाई मटिया बेचाता सेजी में देख ल। जैसे माता जी खूब बोलक एगो मालोने चीज रखल मिक्स कमेसी जैसे हमने बोलिया सा दिन दिन ये सब बदलक देवतम न गुवेन में आल देखा था कि ऐसा नगो चीज कोरेक नहीं चलेला बस बहुत सा शिकायत बा बस ओके ओकरे के कुमा जे हई कर देलक एगो कुमा जे आरते कर अब ओजे जैसे मतलब नहीं होता है भोजपुरी में कि आरते कर देलक उमे तब कुमा जे हमने तब हमने देख ली सक कि भाई बहन लोग तो सकी पैते करे मैम हमने अब इंस्टीट्यूशन ही में होते हैं सब जहाँ लाभांक ही पैसा पे करता। लाभांक एगो इंस्टीट्यूशन कोनी है कि जोन पैसा है देवेला कुमाजे आदमी के जोन पोते से है लालुआ से। अब हमने देखेला सब एगो लाभांक एगो पैसा सकी पैते करे। अब लाभांक कब जाइबा भी देख सब कौन कौन ओकर खरीते है पैते करे के लाभांक में कब गई ल तो लाभांक सकेला तोरा एगो फिनांस में आला ओते दे 100% दे 100% तोर मन पास 1,000,000 ले के तो 1,000,000 तोरा दे ला बैंकवा ओकर खरीते देखब सर सिपा सकब कि नहीं तो ओकर खरीते कुमाजे ओके मिली कि नहीं मिली तो के 100% सकेला मिले ओके कुमाजे ई में। अब ओकर हंबूसमा सकेला एगो पेयो दे कैसे एगो लेपो एगो पेयो दे 30 तो ये गो है दे बोलिए 10-30 बरिस में जिस 10 बरिस में 5 बरिस में वो लोग माने जो हुआ जो से नेगोशिए करत हुआ वो बकत हुआ वो दे सीधे करे ऊपर पोषे जे लाभों को भी है कि ऐते लेपोक तक सकी कुमा जे ओके रंबूसे करे वो पैसवा तब ऊकर देखी कि नहीं चाहेला 100% ही तोरा मांगे के पैसा कोनो तो आदमी का करेला जैसे बोझो जाके 25,000 मांगी 30,000 मांगी जैसे हाँ। देख ली सा जीवोसुआ के कहवा ना हाँ। ओके तो 50,000 हुए चाहिए हाँ। जाइ तो मिलबे करियो कि 50,000 मांगा था हाँ। तो देखा था कि मैंने जो हुआ एगो पैसा रेजुना बस सकी वहाँ मिले ओके 50,000 मांगलक 50,000 लोगों को देलक तो यहाँ देख लो एगो कुमार जी एगो काम चलल एगो रंबूसमा होल एगो पेयो दिलक आरो के फिनांसमा के कुमाजे दिलक कि ओके पैसवा ऐतेल ऐतेल मिले के।
1: अब जब हमने बात कर रही थी सा लोन के
2: हाँ जी
1: तो कानूनी तौर पे ढेर कुछ रह रहा है कर में
2: हाँ
1: एगो लेन लोन ले बा हाँ। अच्छा तोहर लापे इतना बा कितना लोन सकी मिले अब एकर बारे में अब हमने तनी कुछ बतिया ला
2: एकरे नाम में हमने देखब सा क्रिते एम्प्रेंट के कौन क्रिते चाहे ला कि तोहरा लाभों को पैसा दे प्रीते करी हाली एगो एम्प्रेंट मिले के लाभों एग्जीजे करेला सेटेन क्रिटेर एक बार कुमार जी कंडीशन मांगेला एगो आदमी के एगो एग्जाम्पल दे ला सब अच्छा एगो आदमी गल लाभों से तो उ सकी लाभों को के बोले जाने लम के गुप्त सी थोड़ा बोला एगो बिजनेस करे खोजता
1: हाँ
2: अली याक मजे एगो घर है खरीदता एगो जमीन खजे खोजता या कौन ची करे खोज

0: नहीं बोलबा हम शादी कर ले हई हमार लड़का बा वो अभी नहीं खोजी पहला चीज का ख्याल हो तब बोली ना कि हम जाने लगो बिजनेस खोज हई करे ओपेरे करे को जाता है हम के मन बा ई गई मजे है पैसा तोहर से मांगे के तो वो पूछी कौन कालिते के बिजनेस पोजे करत हो कौन कालिते जाफिर तो सुनी ना इसकी वोला पेन बा जो चीज वो करता पैसा प्रेते करे के ओके या नहीं प्रेते करे के तो एक सब हो जाए तो देखा था आदमिया जो चीज करे को जाता हाँ मजे वो लापेन बा सकल जाइए के पेते करे काहे सब रेतु देखे लनसन ऐसके वो आदमिया सके कहाँ बूसे करे जो चीज पैसवा के जाता या कुछ हो तो सेजी करी वो भी सेजी करे ला है न तो कुमार अलग वो चीज करी तो वही मजे डूबते जाता तो कहाँ पैसवा दे तो देखे ला सिपाही पोजे हुआ को रेक बा या नहीं बा आले कब ये हो गल कोनो लोड में सकी ले अब पहला शुरू आप से ओकर फैमिली बैकग्राउंड में मने जो बात ही अब अज मियां ताल बाव कर ला तब वो में बैठल बा सेजुआ में अब ओके तो मन बा पैसा मांगे के तब पूछी ना ओकर से ओकर फैमिली बैकग्राउंड अब ला बंकवा आसीरे करी कि ये एम्प्रेंटर ये जो नदमिया आलवा पैसा मांगे वो एगो काम करता बोली ना हम ऐतेल ऐतेल के मजे काम कर ले है ऐतेल तो बोली कितना तुके मिले ला तो सखी बोले सिवा हजारन रुपया मिला था बोली के तो के बोली तो बोली तुर पे स्लिप कहाँ बा बोला हा तू कहा कर पे स्लिप बा तब ना पे स्लिप में कॉन्फियम करेला कि आदमिया ऐतिल
1: ऐसा काम करता इतना पैसा मिलेला
0: इतना और ऊ तब ओके देख एगो पे स्लिप उहू मांगेला नहीं कि आज काम में कर ले एक महीनवा में मिला लेगो पे स्लिप ले लेला तो ओके है कि मजे ओकर पे स्लिप हुआ ओके मिलल मिनिमम चाहेला एगो छ महीना के पे स्लिप
1: हाँ.
0: समझा ना एक महीना दो महीना छ महीना के तब यहाँ देखेला काहे वो देखेला छ महीना तो देखेला
1: हर महीना पैसा आवता कि नहीं आवता
0: आ एक एक अरे गो ये आदमी स्टेडी है एगो जो कुरे खो गल बा प्रितारु कॉन्फिया में हुई आठ महीना से किसी बा कई बार एक बड़ी से
1: में हर महीना इतना आवता
0: हाई का ओकर ओकर कितना ओकर तो ताल पैसा जो मिला था
1: 20,000 30,000 40,000 50,000 जितना भी बा
0: हाँ तो इसे जाने जाए कि ऐतेल पैसा ऐतेल तो ताल के लिए भैव बा कि काम करेला आर देखी कि कुमकुआ इकर लाज का पहला चीज देखी नौकर लजुआ आरो कर विनिया तो देख ले लग अब मजे एगो बूढ़ा गलबा हुआ मिलियों के मांगता था और यहाँ मजे अब आज के रिटायरमेंट में हुई हो मजे करता
1: लेकिन फिर भी पैसा तो आवाता ना
0: हाँ मैं ना कभी ना तो रिटायरमेंट हुआ था
1: हाँ.
0: तो के बोली ना बे चाचा हम तो दिक्कत है खाली एक बड़ी सार सकबे काम करे तू
1: हाँ.
0: तो सुसंसैकों में तोरा चला रिटायर हो के
1: हाँ.
0: तो कैसे करबे तब पे ये करे के एगो खरीते इम्पोर्टेंट
1: अब रिटायर्ड में चाचा के 100 मिल दे 100 मिल मिलता था
0: हाँ नहीं नहीं वो पूछे ना अरे वो मिली तो बोलियो के कैसे तो के मिली
1: हाँ.
0: कितना मिली हाँ. कौन तुम तो देपोंस बाबी देपोंस वो सब देखे
1: अच्छा चाचा बिजनेस करे लंत
0: हाँ हाँ तो के देखी कि उकर हुक मजे उकर लाज बा उकर रेवेन्यू है उकर रेवेन्यू से ताजिया कितना बा और शादी है के बाद कितना ओके मिली अब का करी ऊ पहला चीज बोली हाँ हमने की प्रॉब्लम नहीं बा हमने पैसा तो के कहते सबने तो ला बैंक लबो के कम
1: गाओ जी कौन जी बा की पैसा दे
0: हाँ अभी आप सो तो का करी ओके बोली सैफ
1: हाँ
0: तू तो बोला तो एगो पे स्लिप बता दे ले हवे कि कम को हर है महीना में 100,000 मिला था तुके एगो बोली के हमने फेते कर अब सब पैसा जोन मांगत हुए मैं एगो कोंजिशियो बा तो बोली कौन कोंजिशियो
1: हाँ जी
0: नहीं अभी गांचुआ में आप सभी ओकर पे स्लिपो ने बतावा था बोले हमने जानत है सा तो के 100,000 मिला था हमने चाहता है सा इस 100,000 जो पैसवा मिले ला तो के पे स्लिपो जो में लिखल बा मिला
1: तो लाभ में वैसे
0: आंखे उमर लाभ में वैसे करिए तू यहां है ये लबंकुआ में वैसे करिए ऊ पैसवा अब ये लबंकुआ काहे उसे करेला तो देखे ला मोशेलमो सकी ई आदमिया पिए करे
1: जैसे पैसा आवता वैसे होता लाबों को पैसा निकाल ले
0: काट दे हाँ। अब जोन रही हूँ मैं दे तो देख ला हिया लाबों प्लीज जैसे हमने बोले सब माले बा बस का देखा था कि पैसा हाँ। नहीं कि बतैलो

0: कि इतना मिला था दूसर दे तू ढालत हो यहाँ पैसा नहीं आके वैसे कर लही यहाँ फॉर्म सीए कराए कैसे महीना में वैसे होल पैसवा तो ऊ का करी जोन पैसवा ले ले ले हुआ हर महीना के इंस्टॉलमेंट में पे करे के ऊ ला पेवा में से तुहर तो मजे पैसवा हुआ देखब काट दे अब मजे का पैसवा हुआ कब काटता तो एगो चीज है ना ऊ गांची बा ओके पैसवा मिला था और पैसा हुआ और तू पे कर ले जाता हुआ पर नहीं सकबा बोले नहीं नहीं नहीं बने खटी है कि तो बोले हम तो हम ही देते कि पैसवा जो पैसवा नहीं वैसे हो कोतवा में हमने के लिए बंकवा में और हमने काटब से हर महीना में अब तू नहीं मानत हुआ तो हमने नहीं सकब स तुहरा कुमा जे देखे ना तब हिया देखा था कि कुमा जे ला बंकवा कि वो पैसवा गांची आदमिया पे करी और हुआ तो पैसवा मिला था एगो चीज है अब देखिला से हमने देखा था दूसरा चीज ओकर से पूछी और एक बा इतना चीज तो दिले ए लाभंग डिस्पोजे बातों के दे के पैसा मैं खोई के धारे ले तू और दूसरा के धारे ले बस कि एक बार आदमी जाए हुआ लाभंग के धारे ला, धारे ला दूसरा जगह है पैसा के चाहे दूसर भी है तो नहीं बतावे ला लाभंकवा के ना नहीं जाके बोली हम धारे ला दूसर के नहीं सकते पे करे तो क्या नहीं देखे तो रही पैसों में तो कहाँ दे अब देखा था वो आदमिया सिपा वो देते बा पैसा अब तो कितना बोले कि अरे फॉर्म भी देख अब सके कॉपी करी इनिशियल करी सीए करी सब तो हिया लिख दे ओकर है फॉर्म में धारे कैसे सुनी कि धारे ला दूसर जगह के और सखी बोले बे तो धारे दूसर के तो सेम नहीं पे ये कर लो हुई बे लगता नहीं देवे तो हिया क्वालिफाई नहीं हुई लाभों के कोजिशों के तो ओके पैसा दे तो हिया देख ला एगो चीज है इम्पोर्टेंट है और एगो प्रेसिडेंट रंबूसे के रही जे जनियन सन और गलो ला बंकवा से हुए मांगे तो हिया तो पे नहीं कर ले बाला बंकवा तो जान जाए ना हाँ। नमुए कैसे है करी तो बोली हम नहीं देव सर आली अब का
1: एगो लाभों के दुआ हो बोले कि नहीं सकब तो के पैसा दे हाँ, बस कि तू हाँ, दुआ हुए हाँ, जब ले है नहीं पे कर देबे दूसर लोन तो के नहीं सकब सके
0: आले अब ये तो हो गल हमने दूसरा में सुते हो क्या ऐसा अब लाभों दे के गाड़ी अभी देख अब सब घर वा के जैसे बोलक ली पोते को आगे जमीन वा के तो गाड़ी दूसरा चीज देखी बोली हमने एक्सेप्टे है सतु के दे के पैसा प्रॉब्लम नहीं है हमने लाभों के कामे है अपने करे के लोन दे के सिलमा तो के चाहे ला एगो आश्योरेंस दे भी मतलब एगो लावी के लाशीरेंस ले के एगो लाशीरेंस लिए तू लाभों के मांग है कि एक फैते करेला पैसा तो तू के चाहे ला एगो कुमा जे आशीरेंस देवी एगो लाशीरेंस तो के निकाले के चाहे कैसे लुतो के कब एगो दिखाए
1: हर महीना एगो पैसा पे कर
0: हाँ वो लाशीरेंस वा सिर्फ पे काहे ला बैंक मांगे ला एगो लाशीरेंस जब अप्रेंटे हुआ जे पैसा मांगले बा ला बैंकवा से वो गुजर गल देखिए पे ये कीजिए कर पैसवा मैं एगो लाशीरेंस देवी रही तो लाशीरेंस देवी ओके छाला पे करे ला बैंकवा के कौन कौन पैसवा है धारत रल या कोर बैलेंस पस की तो लाशीरेंस देवी ले ले ले बा और एगो पैसा मिले ला तो ये देख ला एगो दूसरा क्रिटेरिया ला बैंक मांगे ला कि एगो आशीरेंस देवी आने के चाहला अब तो हर किस्मा में आई ला जहाँ एगो बियां और गारंटी मांगता
1: हाँ
0: लाभंक बोली हमके प्रॉब्लम नहीं बा पैसा मांगब सा तो जमीन बा अपने तो बोले ना तेरे लॉ पूछ ली था तो के मजे बा जमीन बोले हाँ ते गो क्रेंसिये क्रेंसिये वही लाभंक वा उसकी मांगे अप्रेंटे वा के जो नालबा पैसा मांगे बोले एगो जमीन तुरबा उ जमीन वा हमने संगे गारंटी रखे गिरवी जैसे हमने एक बार हमने बोलिया सा हमने आपसे गो प्रोग्राम में लिपोटेक बोले गो लिपोटेक मजे हमने यही करब सर वो है पैसा के तैसे कर लिपोटेक सकल जाए ले एगो जमीन में सकी एगो कार व्हीकल में
1: हाँ।
0: सकी एगो बिजनेस में
1: हाँ।
0: कुछ में सकी कुमा जे वो एगो ले एगो गांची
1: गांची के हम जाना थे जब ढेर कोई बोले एगो ले लो थे भाई सब गांची खड़ा होई
0: हाँ अब आईला से वो आदमिया के गारंटिया में आले एगो बोले के एक नाम हो पोतं गारं जोन भाई का बोला वो का पोते करी गारं कैसे लाभंक से तू गई ला पैसा मांगे लाभंक बोलिए चाहे नाम के एगो गारंटी एगो कोई आदमी दूसरा खड़ा होई के
1: कि
0: तू नहीं सगवा पे ये करे तो तुर गांव छुआ पे।

0: करी आली अब ये हमने देखब सा एकर कोंजिशों कारण सब चीज खड़ा हुई है गारंटी नहीं खड़ा हुई
1: है
0: नहीं एगो कंसेई जनरल पर सिर्फ के एक्सपीरियंस पर एक बंची देखला इसे कैसे रूले हुए ला आली जब एगो आदमी ओके मन बा खड़ा हुई के गारंटी कैसे तू तो बोल बना कि भैया हम के वन सर्विस कर दहु हमर का एगो चाह ला बैंक से मांगते हैं पैसा ला बैंक बोले हाँ दे हमके मैं एगो आदमी चाह ला गारंटी करे के तो वो बोले तो ऊ तो गारंटी वा आदमी खड़ा रही मैं एगो गारंटी के आदमी कब खड़ा के चला ओके चाहेला ओकर कॉन्शियंस जाने के ओके जाने के चला कि का खड़ा हुआ था ओकर ओकर रिपरक्यूशन ओकर कौन चीज सकेला हुई बस ही कब खड़ा हुई बा अपने बोला आर एस ने चलेला कब तू नहीं सकला पे करे उगावा चिया हो पे के पे करे की चाहला तो यहाँ एगो प्रॉब्लम एगो रिस्क बा
1: बहुत बड़ा रिस्क
0: बड़ा रिस्क बार सी है तू कब पैसा बड़ा रही तो निकाले क्या ने आर ए आर सोचे के चाहला बहुत जब जाके एगो गारंटी खड़ा हुई बा एगो गारंटी कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब पापिये में कुमा जे लिखल हो कि कुम का एतिल के गारंटी है हो और गारंटिया का बोलेला कि तू नहीं पे ये करब तो ऊ पे ये करी अब खड़ा हुई के चाहला ओके गारंटी अब एगो आदमी कब गारंटी खड़ा हुई तो ये देख ल चाहेला सब ओकर रिपरक्यूशन सब ओकर टेम सब ओकर चीज जाने के कौन सी अभी अब देखी वाला बंकवा के मैनेजर हुआ तुहर से गारंटी कब खड़ा हुई बा कौन सी मांग करी ऊ कौन सी तुहरा एक्सेप्टे के चाहेला अरे जब गारंटी या से बोझो एक्सेप्टे हो गल खड़ा हुई के ऊ आदमिया के जोन पैसवा मांगता तो ऊ पर्सनलमा रिस्पॉन्सिबल टोटालिटी पैसवा के जे एक्स नहीं दे सब ओ आदमिया के चाहेला जोन खड़ा होल बा गावांची ओके पे कर
1: यानी क्या जे हम एगो एक मिलियन के गाड़ी खरीदनी तो हमार गावांची खड़ा होइला
0: हां
1: हम नहीं सकते पे करे हम लोग तो गुले करत हैं लेकिन हमार लोग तो के तू ही पे करत हुआ यानी कि मजा खाए कोई पैसा भरे कोई
0: तो यही बोल चला तेरे लोग
1: सोच समझ के चला
0: सोच समझ के
1: गांव ची खड़ा हुई के
0: गांव ची खड़ा हुई के अब का हुई ला एगो क्रेयोंसिये जो लाभों को आबा उस सके पुष्विव करे ओकर डिसीजन हो अभी के लिए देबी तेवा के जोन पैसवा मंगले बाव कर से या गांचिया के पुष्विव करे के
1: गांचिवो के सब पुष्विव करे
0: हाँ तो उधर खड़ा कब खड़ा होला वा गांची तो नहीं बोल जा कब नहीं तू पे ये कर बा तो ऊ पे ये करी
1: हाँ एक दिन बोला सब कुछ करिया गांची ने खड़ा हुई
0: है का बात यही है आ जो भाई के अप मजा नहीं ये हम मर नहीं देखा
1: हाँ, देख ले वा देर का देख ले
0: वा हाँ तो यही खातिन बोले से ये गुजारे फासिल नहीं है ना तो को थोड़ा अब थोड़ा तराका लग जाए कि देख ले वो के खड़ा हो गई नहीं अब हम नहीं सकता पे करे अब हम के चाहे ना पे करे के
1: तो इंसानियत भी एगो कुछ हो
0: ना ये वो चीज हाँ मिसिल मत बहुत चीज सोचे के चला अरे इंसानियत चीज है मैं नई चीज ऐसा कर कि ऊ नहीं सकल पे करे तो तू अपन परिवार के दे दिल ऐसा तरक्का अपने दे दिल तरक्का ये सोचे कि चला अब आदमी बोले ना अपन परिवार आगे आवे ना तो अब देखब सकब खड़ा हुई तो खड़ा हुई नहीं सकब खड़ा हुई तो नहीं चाहेला आलो तला बंकुआ देसी दे करेला के पुष्विव करे तो काहे ला बंकुआ गाँव है के देवी तेवा के नहीं पुष्विव करी वो तो देसा नहीं सकक पे ये करे पैसवा तो जाना था जोन कहाँ चाहिए बा खड़ा बा ओकर जमीन हो या कुछ भी हो या पैसा हो तो ओ ना ओकर पैसवा में न हथुआ डाली बस ये तो नहीं बा एक तो कुछ नहीं बा
1: तो ये तो बहुत बहुत बुरा हो गल
0: हाँ तो अब तो ही खातिन बोले ला नहीं तो बोली नहीं कहाँ से खड़ा हुई न तो तू हो तो हरा पे ये करे के चाहे जब एगो आदमी कहाँ से खड़ा हुए ला तो वो आदमी यहाँ पे ये करेला जब हाउ दे बीते हुआ नहीं सकेला पे ये करे तब
1: ये खातिन देर कोई बोले ला जे तो हर कोनो जमीन बा या तो मेरे को जमीन खरीदत हुआ तो लाभों कुछ करेला उकरे अंगाजी कर देवे ला
0: हाँ
1: यानी कि काल नहीं सकबत पे ये करे तो जमीनवा जोन बा वो लाभों के हो जाए
0: हाँ आलो जब नहीं सकल पे करे ऊ गाँव

0: चिवा के का करी देवितेवा के तो पुष्प करे के नहीं बा कुछ है भैया तो कर जमीन में नहीं रह आर पे यही नहीं कर ले बा कुछ तो नहीं बा मैं गांची से खाते नहीं मांगे लन सन ना तो वो का करी देखा था कि अब ये नहीं पे ये करी तो अभी देखा सा कैसे ओके जनाई के चेहरा गांची आज जो खड़ा बा ले तू भेजे के चेहरा रहे तो वो बोली कि नहीं शोध कर दे बताई सर कि गांची हुआ के अब हुआ एगो पापी भेजी कि देख तू पैसा धारे ले लाबों के खड़ा रह ले ऐतेल के जिसो वो आदमिया नहीं सकड़क पे ये करे अब हमने थोर से मांगते हैं सब पैसा पाँच मिनट के वो बोली हमारे यहाँ पैसा होटना नहीं बा तो बोले कुरेक बा पैसा नहीं बा तो हमने के तो प्रॉब्लम नहीं बा तो कबार रह ले लाबों को क्या गाड़े हमारे से बतिया ले रहे मैनेजवा से तो बोल रहे ना पर हई जमीन वहाँ जोन बा गांची खड़ा रह ले
1: अब अजय मान लो कर यहाँ जमीन नहीं बा बिचागल बा जमीन नहीं बा कुछ नहीं बा और काम भी छोड़ देला कुछ नहीं बा कर लगे मान लो अभी गांची सीए कर लग सब कुछ हो गल सब ठीक हो गल अब काल होल अपन उतर गाँव हा तो अपन जमीन बेचे खो जाता अपन जमीन बेच दिलक और नौकरी नहीं बा तब ऐसन में लाभ कुछ
0: पहला तब बेच ही नहीं सकी हो जमीन हुआ
1: यानी क्या जी गांवची कोई के खड़ा हुआ तो अपन जमीन भी नहीं सक बेचे
0: नहीं सक बेचे काहे लाभों को आते गो लिपोते के ले ले बाहू में ओकर नाम में लिख दे बा कहाँ जाए आदमी यहाँ एगो नोते रही मेरे को बोली के गल एगो आदमी को मजे बेचे वो जमीन हुआ यहाँ लाभों को नहीं जानता है गल बेचे इसी बोझ कोई एगो दूसरा आदमी तो पहला चीज लाभों का कुमाजे है नहीं जानत हुई कि कुमाजे बिजात बेचे तो गल हुई ना नुतेरुआ हिया जो नदमिया जन खड़ा रहल गांची हुआ नुतेरुआ तो कब ओकर पापिए करी जो नदमिया से बेचा था ओकर नामे नुतेरुआ तो नहीं जानी सी पा गांची खड़ा रहल का तो जालन सन बीहो मोर्गेजस में बीहो के हुआ देखे लिपोतिक के बीरो में चेके करे गाड़ी तोहरो जमीन हुई नहीं काली कब गाँव हुआ ऐसने भी काबे को आदमी कल हमार जमीन हम बेचे कर जाते कोई से तुझे बुझो त्योहर से तो एगो नुतेर के देख ले हुआ नुतेर हुआ तो चाहे चेके करे ये हमार जमीन हुआ बाली पोते में कि नहीं अरे कैसे वो जाके चेके करे भी हो रजिस्ट्रीमा में देखा था तो कि बारे ये आदमी तब देसा भाई लाभ के खड़ा बा उ जमीन हुआ में सब जे गोली पोते कर ले बा तो हिया नुतेर हुआ पपी हुआ नहीं करी कोतर हुआ के हो आदमिया से नहीं सकी बेचे तो देख ल हिया ओके कब चेके कर लग तो हिया ओकर है ओकर एगो देखा था एगो है बा एगो लिए बा एगो है ओकर है एगो लिपोते बा उ समय तो नहीं सकी बेचे तब वो तब आदमिया नहीं है अब का कर लग लिपोते कुआ जो ऊ दल रखल ला बंकुआ में दूसरा कोई तो नहीं सकी कुआ जो ऊ जमीन वा में ढूके या बेचे या कुछ करे तो हिया आके ऊ मजे सेजी करी सेजी करी ऊ जमीन वा के अब देखब सब पितार एगो दूसर दिन कबाब सब कब सेजी करी सर तो कैसे प्रोसीडे करे लंसन एगो सेजी में
1: बिल्कुल हमने जो कार्यक्रम बा यहाँ पर समाप्त हुआ था और कपिल देव जी बहुत बहुत धन्यवाद हमने कार्यक्रम में अला अभी हमने जो बाकी रगल बा वो एगो और कार्यक्रम में
0: के फुल रगल बा
1: हाँ बिल्कुल तो आज की चर्चा कार्यक्रम प्रिय श्रोताओं यहाँ पे समाप्त होता है आपने बड़ी प्यार से सुना हमें बहुत बहुत धन्यवाद एक और कार्यक्रम के साथ फिर अगले शुक्रवार को हम उपस्थित होंगे अभी के लिए शुभ दिन

0: your kind of music all day, all night, right here on your one and only station.
1: घड़ी मिला लीजिए, समय ठीक 4 बजे हैं।
2: आदाब। आज 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी, जिसका मकसद समाज में खानदान के अहम किरदार पर रोशनी डालना है, वो भी उन चुनौतियों का उल्लेख करते हुए जिनका सामना परिवार द्वारा रोज रोज किया जाता है। मॉरिशस में बहुत से परिवारों को गरीबी, बीमारी या फिर किसी विकलांगता या दूसरी समस्या का सामना करना पड़ता है। जिंदगी के इन मसलों के बावजूद कुछ लोगों को दूसरों की सॉलिडारिटी और सहारे की बदौलत ताकत मिल जाती है। गैब्रिएला बाटू ने बुबासन रोजिर की मेयर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। 1 साल पहले उन्होंने मेयर की हैसियत से शपथ ली थी। गए अप्रैल महीने में उन्हें एमएमएम से खारिज कर दिया गया। कैम्ब्रिज के नियमों के खिलाफ अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, पाकिस्तान और दक्षिण एशिया में ए लेवल मैथमेटिक्स पेपर 12 के लीक होने के नतीजे में कैम्ब्रिज ने गए 29 अप्रैल को दिए गए इम्तिहान के नतीजों को खारिज कर दिया और इसकी जगह 9 जून 2026 को इस पर्चे की परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया। मॉरिशस और रोड्रिग्स में 448 छात्र इससे संबंध रखते हैं। कैलोजीन में एक ज़मीन पर कुछ काम किए जा रहे हैं, जिनकी वजह से गाँव वासियों और अधिकारियों ने मालिक के खिलाफ आवाज़ उठाई। कार्यों को रोक दिया गया क्योंकि पर्यावरण के लिए ये नुकसानदेह हैं। साथ में पत्थरों को गैरकानूनी तरीके से बेचा जा रहा था। मालिक का कहना है कि वो अपने हक से काम कर रहा है। विदेश में भारत और मुत्तहिदा अरब अमीरात यूएई ने एक रणनीतिक प्रतिरक्षा साझेदारी ढांचे पर मंजूरी जताई है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अरब देशों की यात्रा पर हैं। अबू धाबी में उन्होंने ईरान की जंग के बीच भारत और यूएई के दरमियान रिश्तों को और मजबूत करने का अनुरोध किया। इसके अलावा रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति के लिए समझौते भी तय हुए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। अलीब्रियन कास्टेल में 48 साल के 48 years old श्री विनय जगनारायण, श्री विनय जगनारायण जो विनय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थ है कल 11 बजे इनकी पत्नी कृष्णी जगनारायण के घर अलीब्रियन कास्टेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीब्रियन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
3: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
4: Up center, 95.5. North, south, 95.6. East, west, 98.2.
5: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
0: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: RM3 Radio.
1: चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है।
2: आपकी चिट्ठी मिली, आपकी चिट्ठी मिली। शुक्रवार की शाम है और इस समय स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं बिल्कुल शाम के 4:10। मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं रेडियो मनोरंजन के लहरों पर आप सभी का साथ देने के लिए, आप ही की चिट्ठियों के साथ, आप ही के भेजे हुए मैसेजेस के साथ। तो आशा करते हैं कि जहां कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, बस प्यार से साथ देंगे ज़रूर। और आज की ये प्यारी सी सफ़र में हम रहेंगे बिल्कुल एक घंटे के लिए आपके साथ। वैसे इस समय रश आवर है, यानी इस समय लोग घर जाने की जल्दी में होते हैं और कई बार जब हम ट्रैफिक में फंसते हैं, आय हाय मूड कितना ख़राब हो जाता है। तो रिलैक्स करिए, आज के सफ़र में हम हैं आपके साथ देने के लिए। और कुछ ऐसी बढ़िया बढ़िया चिट्ठियां जो हम तक पहुंचाई गई हैं, और इन प्यारी चिट्ठियों के लिए हम कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच हमारे जितने भी दोस्त, जितने भी श्रोता इस वक्त हमारा साथ

देते हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि दिल के जज्बात को बयां करना, दिल के जज्बात को किसी के साथ शेयर करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये वो सेंसिटिव फीलिंग होती है जो हम सभी के सामने नहीं रख सकते. बट आप कोशिश करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में आप अपनी प्यार भरी फीलिंग्स को हमारे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए बस मंजूर होते हैं, और आप अपने लेटर्स के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं. इसीलिए तहे दिल से मैं आप सभी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. और इसी के साथ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आज के इस कार्यक्रम में आप भी अपने दिल की किसी बात को शेयर करना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप मैसेज नहीं टाइप कर पाते या नहीं पता कैसे मैसेज भेजना है, या फिर आप लेटर्स नहीं लिख कर भेजना चाहते, तब भी बस आप हमें कॉल कर सकते हैं 402-8070 पर. जी हाँ, 402-8070 नंबर है रेडियो मनोरंजन का. और 5250-6200 पर हमारे साथ व्हाट्सएप के द्वारा भी आप कनेक्टेड रह सकते हैं. जी हाँ, 5250-6200. और इसी के साथ चलिए, यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प चिट्ठी आई है. वैसे इसमें आपने पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है, पर आप जो कहना चाह रहे हैं मैं आपकी बात का मैसेज पूरी तरह से समझ पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपने एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है जो आज के समाज का एक बहुत ही अहम पहलू है. आप लिखते हैं कि हमने शुक्रवार को आपके प्रोग्राम को सुना, बहुत ही दिलचस्प लगा, और हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी आपके इस कार्यक्रम में शामिल हों, हमारी दिल की बात भी हम रख पाएं. हम क्षमा चाहते हैं कि हम अपना नाम नहीं लिखना चाहेंगे. आप लिखते हैं कि रिश्तों में जबरदस्ती नहीं की जाती, जिंदगी में हम कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, कभी जबरदस्ती का प्यार नहीं किया जा सकता. किसी का ख्याल रखना, किसी की केयरिंग करना, किसी की देखभाल करना, ये सारी बहुत ही नेचुरल फीलिंग्स होती है. जैसे जैसे समय निकलता जाता है, टाइम बीतता है, फीलिंग्स भी बढ़ती जाती हैं. और यहाँ आप लिखते हैं कि रिश्ते जो हैं वो समय के साथ मजबूत होते हैं, इसके लिए कोई टाइम डिसाइडेड नहीं होता. बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई इसमें कोई डेडलाइन नहीं होती, कोई निर्धारित समय नहीं होता. एक दूसरे को समझना, उनकी केयर करना, उनको संभालना, ये हर रिश्ते को मजबूत करता है. बिल्कुल ठीक कहा आपने. कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं, रोज़ मिलते हैं, बातें करते हैं, समय बिताते हैं, पर फीलिंग्स नहीं होती. और अगर एक दूसरे को जानना और उनके साथ ज़िंदगी बिताना, ये दो अलग बातें हैं. अब अगर ऐसे रिश्ते जुड़ेंगे तो आगे चलकर सवाल तो उठेंगे. हो सकता है कि हम ऐसे रिश्तों में बंध तो जाते हैं, पर अपना सारा पोटेंशियल देने के बावजूद अगर सामने वाले के मन में फीलिंग्स नहीं होती तो उनसे हम केयर की उम्मीद भी नहीं कर सकते. केयर की उम्मीद नहीं कर सकते. बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों में एक बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा निभाता है और दूसरे को भनक भी नहीं पड़ती. एक ही बात कहनी थी कि रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं जोड़े जा सकते, और जो रिश्ते प्यार से, प्यार के मजबूत बंधन से जुड़ते हैं, वो रिश्ते ज़बरदस्त होते हैं. भाई वाह, आपने तो तुक्का मार दिया. वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया, पर कोई बात नहीं. अब आप ही है या शी है ये मैं बस डिसाइड नहीं कर पा रही. बट एनीवेज, आपके इस लेटर के लिए हम कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को अभी सुन रहे हैं, देन थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने जो भी लिखा है, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि रिश्ते कई बार हम

कहते हैं ना कि आज के समय में जब हम किसी के लिए रिश्ता आता है तो ये नहीं देखा जाता कि बैंक बैलेंस कितना है. ये बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसे ज़रूरी नहीं है, काम ज़रूरी नहीं है, पर साथ ही साथ ये देखना भी ज़रूरी होना चाहिए कि ये रिश्तों में कंपैटिबिलिटी कितनी है, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को सूझबूझ से उनका साथ देने की, उनके अंदर में वो फीलिंग्स होनी चाहिए, वो भावना होनी चाहिए. और आजकल की जो जनरेशन है वो बिल्कुल इस बात को बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं कि किसी से बस एक बार में मिल लिया तो कोई फीलिंग्स नहीं होती. भाई इसके लिए तो हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा समझती हैं इन सारी चीज़ों को. पर हाँ, कई बार ऐसा होता है कि किस्मत साथ नहीं दे पाती, या फिर रिश्ते जुड़ने के बाद कई बार ऐसा होता है कि ओए होए ये तो गलती हो गई, अब इस रिश्ते के साथ पूरी ज़िंदगी से ढोना ये तो बहुत ही मुश्किल काम है. इसीलिए भाई टाइम ले, क्योंकि रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं होते. रिश्ते जो होते हैं वो प्यार की बुनियाद पर खड़े होते हैं. रिश्ते जो होते हैं वो विश्वास की बुनियाद पर खड़े होते हैं. एक दूसरे के लिए वो भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए वो फीलिंग्स होनी बहुत ज़रूरी है. अगर वो फीलिंग्स ही ना हो तो रिश्ते शुरू नहीं हो सकते. सो गाइज, आज का ये जो पहला खत आया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ, थैंक यू सो मच अगेन. और इसी पर हमने सोचा कि क्यों ना हो ये प्यारा सा गीत हम चला दे इसी चिट्ठी के बाद. एंड नॉट टू मिस, बिल्कुल आप हमारे इस शो के साथ जुड़ सकते हैं. 4028070 नंबर है एंड 5250620 फॉर योर टेक्स्ट मैसेजेस.

रेडियो मनोरंजन पर आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम में हम आपके साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जी हाँ, रेडियो मनोरंजन का ये प्रसारण है और इस समय स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हुए हैं। तो आज के इस अगले मैसेज को लेते हैं, अगला जो शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज आया है, और ये मैसेज है एक कॉलेज जाती हुई लड़की का। हालांकि आज की ये जो हम कह सकते हैं सिनारियो जो है सोसाइटी का, बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है। और इन्होंने हमें लिखा है कि मैं हमेशा पढ़ाई में अपना मन लगाती हूँ, फोकस लगाती हूँ, एंड एट द सेम टाइम मैं स्पोर्टिव हूँ, मैं स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रखती हूँ, बट पिछले कुछ दिनों से मैंने एक चीज़ नोट की है। आप लिखती हैं कि मुझे कुछ समय लग रहा है क्योंकि उनका जो मैसेज आया है उनको ट्रांसलेट करना पड़ रहा है मुझे। यस, आप लिखती हैं दैट जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ मेरी तरह ही, हो सकता है ऐसी ही सिचुएशन को का सामना करती होंगी। मैं स्पोर्ट्स में बहुत ही दिलचस्पी रखती हूँ और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हम जब जाते हैं तो वहाँ पर लड़के लड़कियाँ सब साथ होते हैं, और जैसे हम यंगस्टर्स हैं तो आजकल ये भी क्रेज़ है कि जहाँ पर लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को मिलते हैं, दोस्ती होती है, सोशलाइजिंग होती है। वहाँ पर कुछ दिनों से मुझे एक लड़का दिखा जो बस मुझे देखकर स्माइल करता था, बट एट द सेम टाइम आप उन्हें कोई ज्यादा लिफ्ट नहीं देती थी। और ऐसे में उस लड़के के दोस्त आपको बहुत ज्यादा छेड़ते थे। पहले पहले आप माइंड नहीं करती थी, पर धीरे धीरे करते हुए ये जो सिलसिला है ये बहुत ज्यादा आपको टॉर्चर करने लगा। उनके जो दोस्त है वो आप पर कमेंट्स पास करते थे, आपको देखकर ज़ोर ज़ोर से लड़के की ओर इशारा किया जाता था, और इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगे। और ऐसे में कुछ दिन हुए ये आपको ज़्यादा ही टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि एक तरह से आपको लग रहा था कि आप पर ये इशारा किया जा रहा है। पिछले सप्ताह तो ऐसा भी हुआ कि उसके दोस्तों ने आपको लड़के का फोन नंबर भी दिया, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इस फोन नंबर पर मैसेज करके उस लड़के को धमकाया, ये कहा कि अपने दोस्तों से कहो कि ऐसी हरकतें ना किया करे क्योंकि ये किसी ना किसी तरह से आपको बुली कर रहा है। उस टाइम पर मुझे लगा यही सही है और मैंने ऐसा ही किया, उस लड़के को एक लंबा चौड़ा सा मैसेज देकर एक मुंह तोड़ जवाब दिया। और रिटर्न में उस लड़के का एक ऐसा मैसेज आया जिसमें उन्होंने बहुत ही गंदी तरीके से उस तुम्हें एड्रेस किया, बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही बदतमीज़ी से भरे हुए शब्द थे उसमें जिसका बयां करना आप उचित नहीं समझती। और ऐसे में आपने इस मैसेज को, मैसेज से ये तो पता लगा ही लिया कि ये लड़का जो है वो बहुत ही बदतमीज़ किस्म का लड़का, जिसे ना ही कोई तमीज़ है बात करने की, ना ही कोई तमीज़ है कि किस तरह से एक लड़की के साथ पेश आना चाहिए।

थैंक यू मैम, अगर आप मेरी इस मैसेज को अपने प्रोग्राम में शामिल करती हैं, क्योंकि मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी आपके प्रोग्राम के माध्यम से, अगर इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं काफ़ी दोस्त काफ़ी श्रोता, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी लड़के जब लड़की से बात करते हैं तो वे समझते हैं कि लड़कियां उनकी जागीर होती हैं, ये बहुत ही बदतमीजी का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। अगर लड़कियां आपसे दोस्ती करती हैं, आपसे हंसती हैं मुस्कुराती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लड़की को उस नज़रिए से देखें। We too deserve respect. Thank you so much, ma'am, for आपकी चिट्ठी मिली प्रोग्राम। Thank you so much, because आपने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत ही बड़ा करेज दिखाया। ऐसी बात एक नेशनल रेडियो पर आपने मैसेज के द्वारा इस मैसेज को हम तक पहुंचाया है, बिकॉज ये मैं समझती हूँ बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि कई बार ये केवल यंग लड़कियों की बात नहीं, पर मैं समझती हूँ ये हर वर्ग की हर उम्र की महिलाओं के लिए एक सम्मान का एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि जब हम किसी के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं या फिर अगर उनके कह सकते हैं कि उनकी प्राइवेसी में अगर हम इन्वेड करते हैं या उनको हद से ज़्यादा परेशान करते हैं और जब हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो उन पर बहुत ही बुरी तरीके से सलूक किया जाता है, बहुत ही गंदी गालियों का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही बदतमीज़ी भरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऐसा करने का हक नहीं रखते, और अगर वो महिला चाहें तो आप पे एक्शन भी ले सकती हैं। एनीवेज, हैट्स ऑफ आपको कहेंगे, क्योंकि आपने बहुत हिम्मत दिखाई आज के इस प्रोग्राम में एक ऐसी बात को रखने के लिए, बिकॉज बहुत हिम्मत चाहिए डेफिनेटली। और आपके स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, आपकी स्ट्रॉन्ग बातें सुनकर सच में जितने भी लोग इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं समझती हूँ सोचेगा ज़रूर, क्योंकि ऐसी घटनाएं आज हमारे समाज में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कुछ लड़कियां हिम्मत दिखा पाती हैं और कुछ उसका शिकार हो जाती हैं। चलिए, इसी के साथ आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे एक प्यारे से गीत के साथ।

0: continuous music. RM3.
1: जी हाँ, आज कल कहते हैं ना कि रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है, और आज बिल्कुल हम मना रहे हैं फैमिली डे। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, और यहाँ पर हमारे साथ एक प्यारी सी आवाज़ जुड़ी है। आइए इनका स्वागत करते हैं आज के हमारे इस शो में, जानते हैं वे कौन है। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते
1: आशा। नमस्ते आशा जी, हमेशा की तरह आपकी प्यारी सी आवाज़, और आज के इस प्रोग्राम में आपने हमें कॉल किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार आपको। और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में हम एक फैमिली की तरह है, तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस शो को लेकर।
2: जी हाँ, तो मैंने इसलिए फ़ोन किया है रचना जी कि आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने पूरे जानवर परिवार की ओर से पूरे एम्बेसी फैमिली और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उन सब सभी के परिवार को, सभी के फैमिलीज को परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और बस ये एक शब्द जोड़ना चाहती हूँ रचना जी कि एक इंसान सुबह से निकलता है थके मांदे, अपने घर शाम को घर आता है, तो वो बस ये इंतजार करता है कि वो अपने घर को हंसता खिलता भरा परिवार दिखे। और घर में जब बच्चे या पत्नी इंतजार करती है कि कब वो घर आए, तो वो भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो बाहर के जितने भी परेशानियां हैं उनको बाहर ही रख के आप घर पर हमें एक मुस्कुराहट के साथ घर में आए। तो यही एक बात है ना रचना जी, मुश्किल हो, दुख हो, परेशानियों हो, यदि अपनों का साथ हो ना, तो हम कितने भी

0: जटिल समस्या क्यों न हो, हम हर समस्या से, हर गम से हम पार हो सकते हैं। बस परिवार में क्या जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग।
1: आप
0: जो भी बड़े हो, बच्चे हो, माता पिता हो या बड़े बुजुर्ग हो, अगर हम एक दूसरे को फुल सपोर्ट दें, एक दूसरे के बातों को समझें, एक दूसरे के सुख दुख को आपस में बात कर, अपना गम अपना सुख एक होकर हम सुलझाएं, तो हर परिवार सुखी होगा, कोई भी परिवार में क्लेश का कलह नहीं होगा। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, आपकी शिक्षकों द्वारा तो किसी की कहानियों सुनती हूँ, बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके दुख भगवान दूर कर दे और परिवार में सुख हो, खुशहाली हो, बस यही मैं प्रार्थना करती हूँ।
1: थैंक यू सो मच आशा जी, क्योंकि सच में देखा जाए तो हर कोई चाहता है, हर कोई मेहनत कर रहा है आज के समय में, हर कोई पैसे कमा रहा है आगे बढ़ने के लिए, बहुत बहुत लगन से काम में लगता है, लेकिन अल्टीमेटली जब हम घर आते हैं तो देखते हैं कि वो तो परिवार जिसके लिए हम अपनी मेहनत दे रहे हैं वो परिवार बिखरता जा रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है अपना समय देना, अपना प्यार देना, और उसी प्यार और विश्वास के साथ एक परिवार जुड़ता है।
0: क्योंकि पैसे खर्च हो जाएंगे तो आप बिल्कुल कमा लोगे,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगर आप अपने अपने अपनों को वो जो समय
1: अपने खो गए ना, वो अपने जो दूर चले गए ना, वो वापस नहीं आते। बिल्कुल सही कहा, थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच आज के इस प्रोग्राम में अपनी इन शब्दों को रखने के लिए, थैंक यू अगेन दिल से। बिल्कुल बिल्कुल, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पर एक और हमारे पास फोन कॉल के माध्यम से एक और कहानी, बिल्कुल चार भाई और पांच बहनों का ये परिवार, बहुत ही प्यारा सा परिवार, और मेहनत करके घर बनाना, शादी से पहले मेहनत करके घर बनाना, घर को तैयार करना, और साथ ही साथ एक टाइम ऐसा आया जहां माँ ने घर में दीवार खड़ी करना शुरू कर दिया, बहनों के कान भर के भाइयों और बहनों के बीच में वो दीवार बना दी। बहुत ही मुश्किल से इन्होंने अब लोन लेकर घर कंप्लीट किया और साथ ही साथ बेटे की शादी की। कहते हैं ना कि मुश्किलों का जो दौर होता है ना, वो समाप्त ही नहीं होता, एक के बाद एक मुश्किलें आना, और बेटे के लिए घर तैयार करना, और घर में चलने वाली समस्याओं के साथ एक और तैयारी करना। पर शायद किस्मत को भी कुछ और ही मंजूर था, बेटे की शादी होने के बाद बेटे के यहाँ पोता जन्मा। पर अफसोस की बात ये कि बेटे की शादी टिक नहीं पाई और बहू भी अपने मायके चली गई पोते को लेकर, जो कि एक घर के लिए बहुत ही असहनीय बात होती है, जहाँ पर घर बिखरता है। क्योंकि हर कोई चाहता है, जहाँ पर हम लाखों खर्च करते हैं एक धूमधाम शादी के पीछे, और जब वो शादी नहीं टिक पाती तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि एक एक बनता हुआ रिश्ता बस यूं ही बिखर जाता है। इसके बावजूद इन्होंने अपनी माँ की सेवा की, जहाँ पर उनके पिता की मृत्यु के बाद माँ अकेली पड़ गई, और चाहे उन्होंने कई कह सकते हैं ना कि भाई और बहनों के बीच में दीवार खड़ी करने वाली माँ भी है तो आखिर माँ ही, और आपने पूरी निष्ठा के साथ उनकी सेवा की। एक समय ऐसा आया कि वो बेड रिडन हो गई, बिस्तर पर बीमार सी। उन्होंने बहुत अपने समय में जो भी उन्होंने किया, पर आज आपका फर्ज था उनको ध्यान देना, तो आपने श्रवण बनकर आपने अपनी माँ की सेवा की, और पूरी निष्ठा के साथ, पूरी भावना के साथ उसे किया, और उसमें साथ दिया आपकी पत्नी ने, और आपकी पत्नी ने उनका पूरी तरह से ख्याल रखा, जहाँ पर उनको बहुत सारी नफ़रत भरे शब्द सुनने मिले थे, या हो सकता है कि घर में कई बार लोगों ने आपसे नाता तोड़ा, पर आपने बेटे होने का, बहू होने का पूरा फ़र्ज अदा किया। यहाँ पर ऐसा भी हुआ कि आपके भाइयों ने, आपकी बहनों ने मिलकर कुछ ऐसा षड्यंत्र भी रचा, जहाँ पर आपके बेटे को जैसे बहुत बहुत कठिन

समय का सामना भी करना पड़ा क्योंकि आप अपनी माँ की देखभाल करते थे और आपने वो पेंशन जो आपकी माँ को मिलता था उसकी रिक्वेस्ट आपने करी क्योंकि आपको उनकी देखभाल करनी थी, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी दवाइयाँ हैं, उनकी देखभाल करने के लिए बेशक आपको भी आर्थिक तौर से आपको वो पेंशन का जो पैसा था उससे आपको मदद मिल रही थी, पर पेंशन का पैसा आपको मिल रहा था, इसी बात को लेकर घर में बहुत बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ा जिसमें से आपका और आपका परिवार बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए आगे गुजरा, आगे बढ़ा। और आज 2 साल हो चुके हैं आपकी माताजी को गुजरे हुए, हालांकि अभी भी वो कह सकते हैं कि आपके भाइयों और बहनों में अभी भी वो जो रिश्ता है वो पूरी तरह से नहीं जुड़ा, पर फिर भी आप आज भी अपनी माँ का चेहरा फोटो में देखकर आपकी आंखों से आंसू गुजरते हैं, आंसू निकलते हैं। भाई सामने नहीं आते, बहनों के बीच में आज भी वो तनाव है, पर फिर भी आप दिल से उनको माफ करते हैं। हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि आपने जो किया बहुत सही किया, बस बाकी आप ईश्वर पर छोड़ दें। और बिल्कुल ईश्वर आपको बहुत हिम्मत दे, बहुत साहस दे। आसान नहीं होता कि ऐसे माहौल से गुजरना जहां पर अपनों ने ही साथ छोड़ दिया, अपनों ने ही लांछन डाला। हालांकि आज हम मना रहे हैं विश्व परिवार दिवस और एक परिवार होना ये बहुत ही ज़रूरी है। परिवार जो है वो हमें हर मुश्किलों में साथ देता है, परिवार का साथ होना ही हमें हर मुश्किल का सामना करना सिखाता है। और परिवार जब हमारे साथ खड़ा होता है, चाहे आर्थिक तौर पे आप सशक्त ना हो, पर परिवार का कोई भी व्यक्ति आपके कंधे पर हाथ रख के बस ये कह दे कि फिक्र मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, बस मैं समझती हूँ ऐसा कह देना ही हमें ज़िंदगी की हर लड़ाई के लिए तैयार कर देता है, हमें ज़िंदगी के हर मुश्किलों को झेलने के लिए हिम्मत दे देता है। तो बस दिल से हम यही कहेंगे कि परिवार ये एक ऐसी कड़ी है जो हमें ज़िंदगी जीना सिखाती है। और कहते हैं ना कि वार तो साथ है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सभी के पास ये है, पर 8वां वार है परिवार। और जिनके पास ये वार है वो बेहद खुशनसीब है। तो आज के इस कार्यक्रम को हम इस आखिरी गीत के साथ समाप्त करेंगे। आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में आपको भी इन चिट्ठियों के साथ कुछ अनुभव प्राप्त हुआ होगा या कुछ ऐसी बातें प्राप्त हुई होंगी जो हमें जीवन को दोबारा से सोचने का मौका देती हैं। हर परिस्थिति में हमें बस अपने आप को तैयार करना है, किस तरह से तैयार करना है कई बार लोगों के अनुभव हमें समझाते हैं। तो आज की ये कार्यक्रम, आज की ये चिट्ठियाँ, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी श्रोताओं ने हमें साथ दिया और जितने भी दोस्तों ने इन चिट्ठियों को हम तक भेजा। बहुत बहुत प्यार आप सभी को। और फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को एक और नए कार्यक्रम के साथ, जहां पर कुछ ऐसी नई कहानियां, कुछ ऐसी नई बातें। तो इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति, बस थोड़ी ही देर में ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हो जाएगा और 5 बजे आप मिल पाएंगे कलाकार के बाद कार्यक्रम में रोशन जी के साथ। और आज के हमारे मेहमान होंगे विशाल मंगरू जी, सुप्रसिद्ध गायक और बहुत ही ज्यादा मजेदार गुरु जी जो संगीत सिखाते हैं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में। तो चलिए उनसे आप रूबरू होइए अभी थोड़ी ही देर में रेडियो मनोरंजन पर। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं फुल स्टॉप लगाते हैं। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: FM3 Radio. Radio.
1: ऐसा न रोचक कार्यक्रम सुनला आपके चिट्ठी मिली प्रस्तुत कर लन रत्ना तुहर अपन सहेली चला घड़ी मिला ल शाम के 5:02 हो गल बा और ई प्रोग्राम वा के समय आ गल
2: कलाकार के बाद
1: प्यारे श्रोताओं लोगन हमार सुना सुना संगतियागन आशा करत हैं कि तू सही सलामत हुआ जा और ही अच्छा समय बितावत हुआ बहुते धन्यवाद और एम फ्री रेडियो मनोरंजन से जुड़े के शुक्रवार के सांझ के है जा हवेला चौचक गीतवन के बाहर और विराजमान हवेला एगो जबरदस्त कलाकार ई कार्यक्रम के नाम ही तह कलाकार के बात जहां पर उनकर से बातचीत करब सा और उनके कला के बारे में हमनी जानब सा चला सबसे पहले तह उनकर स्वागत हमनी करी लजा परंतु एगो बहुत ही विभिन्न तरीका से उकर स्वागत हो आज त चला गौर से उकर आवाज सुन जा

0: के रखूं, तू चलूं तू चलूं, तू चलूं तू चलूं, तो चलूं ऐ जाते हुए लम्हो, जरा ठहरो जरा ठहरो।
1: क्या बात बा। और जितने तालियों की गूंज हमने बजा जाओ उतना ही कम हो। बहुत ही सुंदर सी आवाज़ में अभी सुन ला जाए एक बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार के। हम तो सोचे तेरे कि रूप कुमार राठौर आगल भाई जा, परंतु रूप कुमार राठौर तो भारत में बा और है जा एगो ऐसा रूप कुमार राठौर होवन जेकर नाम सुन बजा तब बहुत ही प्रसन्न हो बा। तो चलो भाई जी तुहरी अपन परिचय दे दा हमने के श्रोतागन के। भाई जी
0: वैसे हमार नाम है सुतीक्ष्ण शर्मा मंगरू, लेकिन मोरिस में सब लोग हम के विशाल मंगरू के नाम से जाने जाते हैं।
1: विशाल मंगरू जी जो न बहुत ही बड़ा संगीतज्ञ होन के ओके नहीं जाने रन, हमेशा तो टीवी में छाल रहे लन जब कंपटीशन वो सब होला, जब बॉलीवुड कलाकारों के बारे में होला तो श्री विशाल मंगरू जी पधार जावेलन।

0: और आज हमने के स्टूडियो में रेडियो मनोरंजन में त सगरो ज्योतिर्मय हो गलबाओ कर आवाज है और हमने स्वागत कर लिया जा हमने के अपन भाई विशाल मंगरू जी के बहुत दिल के गहराइयों से। विशाल जी नमस्ते।
1: नमस्ते भाई रोशन।
0: कहाँ रहे लजा?
1: हम मौदालबिया गांव से।
0: मौदालबिया गांव से? दक्षिणी क्षेत्र। बिल्कुल मौदालबिया जहाँ न्यू ग्रोव बा हो जे
1: एयरपोर्ट के
0: हाँ एयरपोर्ट के सटले तो हर भोजपुरी बहुत अच्छा लगे हमके सुने के।
1: मैं वैसे हम बोलब चाहिला कि हम छोटे से हम हिंदी सीख ले आई।
0: हाँ
1: बोले सको कि जब से लिकुल प्रीमियर गईली फर्स्ट से हम हिंदी सीखा था तो हम के भोजपुरी
0: हाँ इतना ज्यादा एक्सपोजर है मिला
1: बहुत तकलीफ हुईला।
0: हाँ परंतु बोला तो अच्छा से देखा था
1: हम सोच के बोली ला।
0: हाँ कोई बात नहीं सोच सोच के बोला था लेकिन
1: सरिया
0: के देखा आई सरिया के बोल रहा है तो ये तो भोजपुरी में बहुत माहिर हो गल हुआ। तब भाई विशाल जी तो हर बहुत स्वागत बा कलाकार के बात है ये प्रोग्राम एमबीसी चलावेला कलाकार लोगों के शान बढ़ाए खातिर और तनी भोजपुरी के मान भी बढ़ाए खातिर काहे कि जोन कलाकार है जावेलन भोजपुरी में बात करेलन और ऐसन तू है गो कलाकार हुआ तो चला परिचय हमने जाने ली सर।
1: हम कोशिश कर
0: कोई बात नहीं
1: ज्यादा से ज्यादा हम भोजपुरी में
0: हम भी तो इसने रली भोजपुरी में जब हमके नर्मदा जी बोलन के चला है प्रोग्राम वा कर तो हम बोली भोजपुरी में तो बोलन तो का है भोजपुरी में बात नहीं करेला का तो हमें कोई चुनौती लेके है प्रोग्राम वा करत है तो जाते जाते तनी अच्छा से बोले लगली अब पता नहीं अब श्रोता लोग बोलियन
1: ये बात पे हम जोर देव की ये सराहनीय काम करत हुआ
0: बहुत धन्यवाद
1: नर्मदा को भी बहुत बधाई बा
0: बहुत धन्यवाद। हाँ वही हमने के हेड ऑफ प्रोडक्शन तो वही हुआ और हमके बहुत अच्छा लगल भाई विशाल जी कहे कि जहे जो गाना बॉर्डर के गए अंतरा से गए बहुत लोग स्थाई से शुरू करे लंजा तो अंतरा से गए और ओकर अंतरा में हमर नाम बा रोशन ई हम जाने ला जानबूझ के चयन कर लाई गाना। तोहर बॉलीवुड गाना के तब भंडार बा तोहर आगे तो चला तोहर से गो सवाल हमने करी ला जा कि जब विशाल मंगरू जैसन प्रसिद्ध नाम सुनी ला जा तो तुरंत दिमाग में बात आवेला गीत और संगीत। आपके लिए भाई विशाल जी गीत और संगीत के कौन महत्व बाती हमने की बतावत नहीं
1: गीत और संगीत ये तो जीवन के एगो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: हाँ
1: कुछ अभी कुछ लोगन गीत से जुड़े लंसा शांति के लिए कि उनको वो अच्छा लगेला उन लोग
0: उन लोग के हाँ
1: तो हम जुड़ले हैं संगीत से छोटे से माँ बोले रहल कि ये छोटे से गावेला तो सुन सुन के कॉपिए करके जो बड़े बड़े बॉलीवुड में जितना भी आर्टिस्ट बा उनको सुन सुन के बस संगीत में रुचि रहल लेकिन परिवार उस समय में कि संगीत का जो पढ़ाई था वो इतना
0: ज्यादा नहीं था
1: इतना ज्यादा नहीं था
0: हाँ।
1: तो हम तो दूसर क्षेत्र में पढ़ाई कर ली
0: हाँ।
1: बाद में फिर संगीत की ओर आईली
0: तो झुकाव तो संगीत के प्रति तो आगे से बाही परंतु बाद में ऐसा प्रश्न तो हर कति रख ले हैं तनी धैर्य रखिया और तो हर संगीत के सफर कैसे शुरू होल हमने जान गए ली सब बचपन से ही ये तो बुझाता कि जब से जन्म ले ले हुआ एगो पिछला जन्म के कोई पुण्य है जो ना हाय जन्म में तोहरा बहुत बचपन ही से प्राप्त हो गल
1: तो माँ बाप के आशीर्वाद बा
0: माँ बाप के आशीर्वाद बा
1: और हमर मामू वो संगीत से बहुत जुड़े रहल
0: अच्छा परिवार में
1: हाँ हमर मामू लोग बजावे हारमोनियम बजावे और गावत हल तो उसके देख देख के हम भी सीख ली
0: बहुत अच्छा
1: और हमर भाई जब वो जब हम सीजीएम में रही तो वो फोमिन में चल गल सुखदेव बिशुंदोयाल कॉलेज तो उधर भाई सीखा तहल सितार लाफली हारमोनियम तो घर आके पाँच के करी
0: अच्छा
1: अब हम ओके देख देख के हम बोले यार ये मुझे भी अच्छा लग रहा है
0: अच्छा लग रहा है आपको
1: तो कॉपी वो भी सुन सुन कर तो कॉपी करने

0: लगी, उसको भी मैं कॉपी करने लगा भाई को।
1: अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो एक संस्कार तुहरा मिल गल, माता पिता तुहरा बढ़ावा दिलन जा, अपन मामू के देख देख के संगीत के क्षेत्र में दाखिल हो ला, और कैसे जस्ती जैसे बोले जा सोने पे सुहागा तुहर अपन ज्येष्ठ भ्राता जो ना, जो केवल एक ही साल तुहर से बड़ा है, और ओके तो हम खूबे जानी ना सुगी भी सुनिया जात रहन, तो तू भी सुगी भी सुनिया जात रह, और हम भी तो हो जे रही तो तुहरा हम तो बहुत दिन से जानी ला, तो ओकर बारे में बात करब से अभी। तो तुहर संगीत के सफर जो ना इ प्रकार शुरू होल,
0: और जोड़ा कि हम लोग छोटे से आर्य समाज के साथ जुड़ेल,
1: आर्य समाज
0: आर्य सभा में भजन बहुत
1: सच बात बोला। हाँ,
0: तब भजन मंडली जो जितना भी पंडित लोग गावत हुआ था, हम हमके बहुत अच्छा लगा था।
1: हाँ,
0: तो वो भी सुन सुन के उसका भी असर है,
1: हम देख रहे हैं थोड़ा समाज में लोग बजाते हुए ना, जब पंडित लोग गावेलन भजन सब, जब नौजवान लोग करेलन, तू बहुत अकॉम्पनी में भी करे रहा जा।
0: हाँ, पहले तो हम गाने से नहीं शुरू कर लिया, हम हारमोनियम में बजावत लिए,
1: वही था हमके हमके चाहत था, वही था थोड़ा चाहत पहले बोले थे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहला।
0: हाँ, तो वो उसका भी बहुत ओकर असर बा।
1: हाँ,
0: पंडित महेश, पंडित महेश जी को जानते हैं ना,
1: हम बाल्मिक महेश जी
0: लेस्काली रहते हैं।
1: तो हाँ, बिल्कुल,
0: वो बहुत ही प्रसिद्ध, उसको हम भजनिक बोलते थे।
1: हाँ,
0: उस
1: हाँ,
0: जमाने में मैं छोटा था,
1: ओकर भजन बा जो निकले हुआ है
0: सीधे बा,
1: सीधे सब बा। हाँ,
0: तो ओकर संगे हम बहुत संगति कर ले हैं हारमोनियम पर।
1: अच्छा,
0: तो सुन सुन के सेंस डेवलप हो गल म्यूजिक स्वर का, वो सब उकर उकर आप भी सीधे कुछ नहीं जाने तली, बस सुन के पकड़ ले तली।
1: तो ये गो कहावत बा, जब तू दिल से कुछ पाए खुजत हुआ, तो सब कायनात तुहरा मदद करेला हो सब पाए के। तो कायनात के रूप में देखत हुआ पंडित जी रलन, तुहर परिवार रलन, और तुहर इर्द गिर्द के जो न, ये कभी कभार किस्मत नहीं बोलब जा, तोहर मेहनत भी इमें रंग लावेला। सगबा एगो म्यूजिकल फैमिली बैकग्राउंड में पैदा हुई, परंतु जे तोहर में हो नहीं रही, हो चाह
0: गुनवा
1: नहीं रही, चाहना रहे के, और ये जो गुण है ये ईश्वर के देन है।
0: हाँ,
1: परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद के बिना तो कुछ नहीं सीखे हुए। बिल्कुल, तो ई रहल हमनी के भाई विशाल जी जेकर से बहुत सारे प्रश्न बा पूछे कि अभी तक 5:13 हो गल, 13 मिनट बीत गल, और बहुत कुछ सुने के बाद भाई जी के सुंदर आवाज में, परंतु इतना ज्यादा समय नहीं मिली। तो चलो भाई जी, हमनी के हम जान के लिए जा कि तू तो हर प्रेरणा जो पहले हुआ गाय के, पहले तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रह लोग सब बजावत रह, तो बॉलीवुड गाय के हैं, गाय के प्रेरणा तू अपन जो कलाकार हुआ, बॉलीवुड के कलाकार हो लोग से पहले तो नहीं।
0: हाँ, हम जो एक वो कलाकार से नहीं, हम बोलब कि जब हम छोटा रही तो हम मुकेश और किशोर कुमार साहब को, इन लोगों को बहुत सुन ली है,
1: सुनने हुआ जा।
0: हाँ, जब फिर बाद में जब लैन गैली तो मोहम्मद रफी साहब।
1: अच्छा।
0: हाँ, उसका जो जो जो उसके अंदाज बा वो, फिर मन्नारी साहब,
1: क्लासिकल सिंगर्स
0: हैं। हाँ, क्लासिकल सिंगर्स। तो ये सब जब हम भारत रली तब वजह ज्यादा हम उन लोगों की सुन ली।
1: अच्छा, और भारत और, भारत कैसे
0: भारत, वही जब ये छात्रवृत्ति मिली, स्कॉलरशिप मिलल हमके।
1: अच्छा, संगीत अध्ययन संगीत में भारत में कर ला।
0: हाँ, हाँ,
1: बहुत अच्छा।
0: हाँ, तो और जो अभी जो मुदयन सिंह जो सौते बा,
1: उमें
0: सोनू निगम है, अरिजीत सिंह है, और फिर शंकर महादेवन जी हैं, ये सब कुछ, ये सबको हम पसंद करेला।
1: हाँ, पसंद करेला जा बेहद। तू ए लोग के पसंद करेला जा, आप तोहरा मॉरिशस में ढेर कोई पसंद करेला और जो नौजवान है तोहर नियर बने खजूरन जा। हाँ, इत बात बहुत लोग से सुनने हैं, जब प्रोग्राम करेला जा, हाँ, खाल कोनो प्रो कार्यक्रम रही, चाहे वो बर्थडे पार्टी रही, जा टेलीविजन पर कंपटीशन होए, या बड़ा बड़ा कॉन्सर्ट भी होए, तो तू रहेला कभी कभार बड़ा बड़ा गायिका लोग से भी गावेला तो बहुत से जो नौजवान है तुहर से तुहर प्रति प्रेरित हो जालन जा तू कैसे प्रेरणा पहले संगीत में दाखिल हो के और कितना हमने के नौजवान बाद तुहर से प्रेरित हो के संगीत के क्षेत्र में जात हुआ तो तुहरा कैसे लगेला एक बात सोच ले रहा

0: कि एक दिन तू संगीत के क्षेत्र में इतना सक्रिय रह, इतना एक्टिव रह?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं
0: सोचा
1: मैं रही था, हम सोच ले रही कि वो कहा कि तब बिजनेस में, क्योंकि पापा के हम पिताजी के बुटीक रहन,
0: अच्छा,
1: तो हम सोच ले कि कॉमर्स में या बिजनेस में। वैसे कॉलेज के बाद तो हमार इच्छा रहल कि हम लालवा पढ़े,
0: अच्छा, कानून।
1: हाँ, तो एक कदम तो रख ले यूनिवर्सिटी में, फिर बाद में फिर बीएससी मैनेजमेंट स्टडीज,
0: अच्छा,
1: यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिस,
0: सब पूरा कर ले
1: तीन साल उधर अध्ययन करके
0: मैनेजमेंट था।
1: हाँ, तब उस समय कॉलेज में बिजनेस स्टडीज, ये नुवो चीजें इंट्रोड्यूस हो रहा,
0: बिजनेस स्टडीज
1: हम
0: 90s में।
1: हाँ, तो हम बस हमार यूनिवर्सिटी मॉरिस हम खत्म कर ली 1996 में।
0: अच्छा,
1: तब जनवरी 97 से हम प्रोफेसर घुसली है हैमिल्टन कॉलेज में।
0: अच्छा, मैबग में।
1: हाँ,
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया।
1: तीन साल फिर काम उधर काम कर ली।
0: अच्छा,
1: फिर 99 में लाबूस मिलल
0: स्कॉलरशिप
1: पढ़े के।
0: हाँ,
1: तो वो फिर मजे 360 डिग्री टून हो गल।
0: हाँ, सच्चे के। हाँ, जो वोकेशन है बिल्कुल बदल गल,
1: बिल्कुल बदल गल। तो उसके पीछे भी कमजे 97 से 99 में हम प्रोफेसर के साथ साथ वो सफर वो बीच में हम एमबीसी के साथ भी जुड़ा रह ली।
0: वो मैं बारे के बारे में बात कर अब जाबी
1: मजे ओकर इन्फ्लुएंस से हम
0: हाँ, जितना प्रभाव पर रहल तोहर पर। हाँ, एमबीसी के प्रभाव से और तनी प्रेजेंटेशन वो सब ओकर बारे में आप सभी। हाँ, तो आपने अपना जो अध्ययन संगीत को लेकर किया और बहुत आगे तक बढ़ गए, परंतु उस समय कुछ गिने चुने लोग ही रलन जा जो ये विषय में उपाधि पावत रलन सब। ये विचार तोहर मन में तब आल जब बोलन 1997 से लेकर 1999 तक। बहुत अच्छा। तब हम तोहरा एगो बात बोलब, तनी पर्सनल में जात है जा, नाराज नहीं हुआ? हम तो तोहरा कॉलेज के जमाने से जानीला, हमेशा तू कॉलेज में गाते रहेला, हर म्यूजिक दे में संचालन करत रहला। तो चला थोड़ा अपन कॉलेज के जिंदगी के बारे में बात कर। हम तोहरा होजे से जनली। और खासकर तब हमने के जो हम तोहर से तनी सुनियो है, तनी सुनियो, तब हम दोस्त के बोली साजिन इसला, ये जो नौजवान बा ना, बाद में चल के बहुत बड़ा गायक मॉरिस में तो बहुत अपन नाम कमाए। तब बोल हमने के कॉलेज के जमाना कैसे रहल तोहर खतीर और कौन कौन तोहरा अनुभव प्राप्त हो?
1: तहिजा एगो प्रोफेसर के नाम लेब।
0: अच्छा,
1: एक्चुअली दुगो, एगो तो चल वो चल बसी है।
0: अच्छा,
1: मैडम रोजा बोधु।
0: अच्छा,
1: वो हमार अंग्रेजी के प्रोफेसर रहलन।
0: अच्छा, अंग्रेजी के।
1: हाँ, और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहलन मैडम शीला हनुमान जी। तो ये दोनों हमार क्लास, हम क्लास करत रही वो लोग संगे, तो वो लोग बोलन कि म्यूजिक दिया हुआ था एगो गीत प्रस्तुत करके। तो वो समय में मुझे ये हमके अमिताभ बच्चन बहुत मैं बहुत उसका बहुत बड़ा फैन था।
0: हाँ,
1: अभी भी, अभी भी
0: तो हुआ अभी भी, अभी भी, हाँ, बहुत कोई कर फैन हुआ।
1: हाँ, तो एगो गीत तैयार कर ली फिल्म शराबी की, जहाँ चार यार मिल जाए,
0: बहुत कठिन गाना है।
1: हाँ, तो वो गीत से दुगो प्रेजेंटेशन कर ली कॉलेज में। तो हो जा से एक मजे अब हर बरिस
0: तोहरे
1: एगो अमिताभ बच्चन के गाना
0: चला तोहरा गाय के। बहुत अच्छा। तई जो जहाँ चार यार मिले वही रात हो गुलजार, ई एमबीसी में भी गले रहला, टीवी पर हम देख ले रही तोहरा।
1: अच्छा,
0: हाँ, तू ही भुला गया बताब तोहरा कब गले रहला। तो हमने के जो न हम भाई विशाल जी हुआ न प्राध्यापक हुआ न अभी लेक्चरर हुआ जा।
1: हाँ, अभी तो चलो आशीर्वाद है कि अभी सीनियर लेक्चरर।
0: अरे वाह, बहुत बधाई हो। हम तो अब जाना था और बहुत अच्छा लगता हम के है अनाउंस करे कि हमने के भाई विशाल जी अब सीनियर लेक्चरर बगल हुआ न महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में, एमजीआई में, और हो जा संगीत के शिक्षा प्रदान करेला। और तोहर लगे खाली नौजवान नहीं बा, बल्कि जो न माचू स्टूडेंट्स बा वो भी आवे रंजा, जो न काम करे लंजा तोहर से सीखे लंजा। तो कैसे तोहरा है ये जो न प्राध्यापक होने के नाते, सीनियर लेक्चरर होने के नाते, वो है काम चैलेंजिंग है?

0: आई मीन संगीत सिखाए के थोड़ा मुश्किल भी है आसान भी है. वो कैसे कि अगर अगर जो बच्चा जो स्टूडेंट आवेलन से अगर ओकर तालों बा ओकर में तो वो आराम से वो सीख ली. आप सिर्फ आपको उसको रास्ता बताए के चाहिए.
1: हाँ बहुत अच्छा.
0: हाँ और जोन जोन जिन अब जोन जिनके गुण नहीं बा तो वो लोग की थोड़ा और मुश्किल रहेगा तो और ज्यादा मेहनत
1: पर रहेगा करे के लोग संगे. हाँ परंतु असंभव नहीं बा मुश्किल बा लेकिन असंभव नहीं.
0: और जब हम लोग अब हम क्योंकि हम लोग तो पोस्ट एचएससी वाले बच्चे को हम के साथ हम काम करते हैं ना तो वो लोग के कैसा है कि वो पेडागोजी अलग होता है कि उनको मेहनत ज्यादा करना पड़ता है. तो हम सिर्फ गाइड करते हैं. हम गीत करेला
1: बिल्कुल
0: तो गाइडेंस
1: गाइड करेला तो हर देख रेख में तो आगे बढ़ेला जा. बहुत अच्छा ये बोला जला. और तू एगो शिक्षक भी हुआ हमेशा बोली ला जा कि टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन. तो बहुत अच्छा कार्य करत हुआ और ईश्वर तुहर रक्षा करे इस क्षेत्र में. तुहर बदौलत कितना लोग सीखत हुआ जाए म्यूजिक. अब तो ये बहुत ही प्रचलित हो गल बा. अब सभी लोग संगीत की शिक्षा पाए खोजे रंजा. काहे की है जो आजकल के जिंदगी है बहुत तनावपूर्ण जिंदगी है और एगो माध्यम है तनाव के दूर करे के वह संगीत.
0: हम तो अभी ले सीखी
1: अभी ले सीखा तो वो तो और बड़कपन है तो और सादगी है जैसे बोली ला जा हमेशा सीखे ला. इतना मकाम पर आगल हुआ फिर भी बोलता सीखत हुआ तो इसने चाह हमनी के करे के और हमनी के जो जिंदगी है उम्र भर के हमनी के चाह सीखते रहे के. तो चल श्रोतागण आज कलाकार के बात है हमनी के भाई विशाल मंगरू जी के साथ. सुतीक्ष्ण कुमार जैसे बोली ला जा लेकिन हमने विशाल से जानी ला जा. सुतीक्ष्ण शर्मा क्षमा कर. तो चले एगो गाना हमने सुनी ला जा जिनमें आवाज है हमने के भाई विशाल जी के भी और एगो भोजपुरी गाना है. एक बारे में हमने बात करब सब. पहले हमने है गाना सुन ले ला सर तब बाद में विशाल जी से बात करब जा ई गाना पर.
2: You're listening to RM3 Radio.

0: Continuous music. RM3.
1: कलाकार के बाद श्री विशाल मंगरू जी के साथ श्रोतागण याद रखिए कि तोहर कहते प्रश्न भी हो लाए जा क्वीज एगो छोटा सुन प्रश्नोत्तर तनी धैर्य रखिए तो ऐसे प्रश्न पूछे के बखत आगल बा चल हमने विशाल जी से पूछी ला जाके है जोन बहुत ही सुंदर सा भोजपुरी गाना बा देशवा हमने के जोन प्यारा देश पर आधारित बा मॉरिशस पर ओकर इतिहास पर ओकर ज्योग्राफी पर भूगोल पर तो हमने के बताओ ये जोन गाना है एकर बारे में तनी चर्चा कर विशाल जी
2: ये गाना जोन रहल एल्बम एकता से एल्बम है तो
1: एकता
2: हाँ एल्बम एकता दुगो वॉल्यूम में बा
1: अच्छा
2: दुगो वॉल्यूम का है एक पहला वॉल्यूम में हिंदी पर जितने सब गीत हिंदी में बा
1: अच्छा
2: तो लेकिन जो लिखले हुआ सा सब मोगिस के लेखक लोग
1: हाँ
2: जैसे भगत जी बा या सुमदत बखूरी बा ऐसे ऐसे सब
1: अच्छा
2: मोरिशन
1: बड़ा बड़ा जो लेखक कौन जा हाँ
2: हाँ और दूसर जो सेदे रहल उमें जो स्थानीय भाषा बा भोजपुरी उर्दू मराठी तेलुगु तमिल ऐसन पैट्रियोटिक सौते एल्बम में बा अच्छा। दूसर से देवा में बा तो ये एल्बम एमजीआई के एगो प्रोजेक्शन रहल
1: अच्छा
2: ये एल्बम तो मेरे ख्याल से अभी 10-15 बरिस हो गल बा जब हम अयले रही हम भारत से तब हाँ तब ये पोजे हो रहल तो एक पीछे बहन जी इंदिरा पदावत जो उस टाइम पे वो जो CPD है क्रिएटिविटी एंड परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के हेड रहलन
1: अच्छा
2: तो उकर निर्देशन में ये प्रोजेक्ट कर ले रही सर और रिकॉर्डिंग हो रहल भाई देवेन मखन के यहाँ

0: के रूप में। हाँ
1: अच्छा।
0: हाँ तो ये प्रोजे ये सब सीधे सब बाटल गलबा सब लिकुल में ताकि मुझे जोंफा की फायदा हुई
1: तो हाँ लेखा लो क्या रहा और ऊपर से देशभक्ति की जो भावना है वो लोग में बहुत उत्पन्न हुई और सब
0: ये जो गीत बा बिहसिला देशवा के भाग हो इसमें हमर संगी बा भाई संजीव वुदू
1: हाँ बहुत बढ़िया कलाकार हो हैं। हाँ
0: और फीमेल वॉइस में बा हम हमर कोलेग डॉक्टर वर्षा रानी
1: डॉक्टर वर्षा जी हाँ
0: और श्रीमती ललिता गोपी
1: अच्छा तक चार गो महारथी हुआ जाए में संगीतज्ञ और बड़ा बड़ा नाम ये गाना से जुड़ल बा। जब गाना के चर्चा हम करत हैं जिक्र करत हैं तो चला बहुत मन लगता है कि दूसर गाना तो हर आवाज में सुने के और बहुत हम देखा था बहुत फरमाइश भी आवा था व्हाट्सएप के द्वारा
0: अच्छा क्या बोलो हम हमर संगत या लोग बोलत वन सा कि त एगो कलाकार बा मन्नारी जी
1: मन्नारी
0: हां तो हाँ हम जब भारत में रली तो ओकर आवाज में की पता नहीं कैसे मेरा एक दोस्त है उसने बोला कि तुम्हारी हाँ। आवाज मन्नारी जी से मिलता हुआ है तो
1: अच्छा
0: था उधर गवेलन मन्नारी की आवाज में
1: हाँ
0: तो दो लाइन मैं आपको मन्नारी का सुनाता हूँ ऐसा
1: अच्छा मन्नारी जी का ओके सुनाइए
0: ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो

0: नहीं देता मौसम का ये इशारा।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा गाना अभी गेला तू जा लता जी और मन्ना दे जी की आवाज में। बहुत ही सुंदर गाना बा। और ये रात भीगी भीगी चोरी चोरी फिल्म के गाना है।
0: हाँ, लेकिन भाई रोशन ये में प्रश्न नहीं पूछे
1: हम जानी ना हम जानी ना तू हमर कुछ बुलब तो हम मन के बात जान पढ़ ले ले हो आजा
0: नहीं एक्चुअली आप हाँ पूछा था लगा ना कि संगीत का हाँ, प्रभाव हाँ, हमारे जीवन में आप
1: कैसे आ
0: नहीं तो हम मध्यमा की परिचय हम ओकर एग्जाम दे
1: के जन परीक्षा रहल
0: हां परीक्षा रहल वो हम शायद दिल्ली जब हम फॉर्म थ्री में रही
1: मध्यमा
0: प्रथमा या
1: प्रथमा प्रथमा हां प्रथमा
0: हां तो वो में एक प्रश्न ऐसा रहल कि संत कबीर के दोहे पर
1: अच्छा
0: कुछ लिखना था तो कि कोई कोई दोहा जो संत कबीर ने लिखा
1: कबीर बोले हो अंजा
0: हां तो वो लिखे की तो हम ओकर जवाब में कौन सी लिख ली कहत कबीर सुनो भाई साधो बात कहूं मैं सही कि दुनिया एक नंबरी तो मैं दस नंबरी।
1: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया।
0: तो गुरुजी ने जब देखा तो बोले ये क्या जवाब लिखा है।
1: फिल्मी जवाब लिख देला लेकिन सच है लेकिन जवाब तो ठीक बा।
0: उस टाइम पे ये फिल्म निक ये फिल्म जो थी वो मैंने शायद टीवी पर मैंने देखा
1: इसीलिए
0: तो उस दिमाग में रह गया था ये गाना
1: तो ये गाना आपको गाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा एक छोटा सुन टुकड़ा गा दे
0: कहत कबीर सुनो भाई साधो बात कहूं मैं सही के दुनिया एक नंबरी तो मैं दस नंबरी।
1: बहुत बढ़िया तोहरा दस पर दस नहीं बल्कि सौ पर दस मिला था। तो चलो हमनी के जो श्रोतागण हुआ अभी विशाल जी अपन मधुर आवाज में गैलन ये दुनिया एक नंबरी तो आप दस नंबरी अगर आप दस नंबर पाए छे बा तो है फिल्मों के नाम हमनी के नहीं बतावा जा बल्कि ई में जो अभिनेता और अभिनेती अभिनेत्री बा उ दोनों के नाम बता दे हमने के जल्दी जल्दी बहुत आसान सा प्रश्न ब 4028070 जिस पर जल्दी जल्द अपन तकदीर आजमावा जा जो भाई विशाल जी अपन सुरीली आवाज में है एक गाना गैलन ई फिल्मों में के होन अभिनेता और के होन अभिनेत्री चला एगो लाइन पर एगो जल्दी जल्दी गोष्ट होता चला तोहर अनुमति से है ले ला जा अच्छा तो बोला थोन ले लेके तो चला

0: हमनी के पहला श्रोता से हमनी बात करी ला जा। हेलो
1: हेलो रोशन जी, हम है राधा मोचिदा से।
0: राधा जी मोचिदा से बात करत हो,
1: स्वागत बा। विशाल मंगरू जी की भी हमार सादर
2: प्रणाम। नमस्ते
0: नमस्ते। त विशाल मंगरू जी के देखेला कभी कभार टीवी पर?
1: हाँ देखले ऐसा सुनने भी है ऐसा। और उनका अब देखी रहा था, हमके गोविंदा के याद होला। गोविंदा पूरा दिन हंसते रहे
0: हम तो भूल गए रही सच्चे के हमारे जो डायलॉग रहा बड़े हसमुख चेहरा है ना। हाँ बहुत अच्छा राधा जी, खूबे तू नोटिस कर ला है। तुहर जवाब नहीं बा तो चला, तुहर जवाब नहीं बा लेकिन कौन जवाब दे बा?
1: हेमा मालिनी और मनोज कुमार।
0: चलो हमने तुहर जवाब लॉक कर दिया सर, देखी रहा सर कि तुहर जवाब सही है कि नहीं। अच्छा धन्यवाद राधा जी। एगो अंतिम श्रोता के ले ले ला जा। शुभ रात्रि। चलो एगो दूसरा श्रोता के हमने लाइन दे ले सर। हेलो
3: हेलो नमस्ते रोशन जी। नमस्ते विशाल जी।
2: नमस्ते।
0: कौन के बोल रहे हो?
3: सरिता हूँ काठरबोन से।
0: सरिता जी काठरबोन से बात करत हो, कैसे हुआ?
3: हम ठीक हैं, आप लोग कैसे हो?
0: ठीक है। प्रोग्राम कैसे चल रहा था तुम्हारा?
3: बहुत अच्छा। विशाल जी को हम जानते हैं।
0: अच्छा जाने लगा
3: वो SSS वगैरह में वह म्यूजिक के प्रोग्राम देते थे। मेरी बेटी वहाँ
2: का
0: अच्छा अच्छा अच्छा
3: कॉम 2 में थी, चांदनी भोजनर।
0: ओ आपने तो नाम बता दिया। सरिता जी इतना तुहरा याददाश्त के दाद देच के चाहे हम के
2: बेटी के नाम बोला
3: जी मेरा जवाब है
0: कि पोगेसाइड के कब तुहरा बेटी आ रहा है तो विशाल जी के
2: हमर पहला पोस्टिंग रहा जब हम इंडिया से आईली 2004 में
0: तो हो जाए तुहर पोस्टिंग रहा तो चलो हमने के बतावा कौन जवाब दे बा?
3: जी मनोज कुमार और हेमा मालिनी।
0: तू भी बोला तो ऐसे तो चलो तुहर जवाब नोट कर लेते हैं सर। एगो अंतिम श्रोता के लेला सर।
3: ओके बाय।
0: अरे ओके। हेलो हेलो हेलो।
4: नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते। शोभा जी हो अनबाकवा से?
4: जी हाँ। और मेहमान जी को भी नमस्ते।
2: नमस्ते।
0: बोला शोभा जी सुनत हुआ प्रोग्राम?
4: हाँ।
0: और विशाल जी के जो अभी आवाज में सुनला तनी दो तीन गो गाना कैसे लगल तुहरा?
4: हाँ बहुत अच्छा लगल और सुंदर आवाज भी एकदम बढ़िया सुंदर भी।
0: बहुत बढ़िया। तो हमके चना तुहरा धन्यवाद दे कि हम ऐसा ऐसा कलाकार कहे जानत है। बोला शोभा जी कौन जवाब देबा?
4: हमार जवाब है मनोज कुमार और हेमा मालिनी।
0: मनोज कुमार और हेमा मालिनी। चलिए हमने के कलाकार से हमने पूछी ला जाए, सही जवाब है भाई जी?
2: एकदम सही,
0: एकदम सही जवाब। विशाल जी बोलत हुआ और तोहर के सिर तालियों के गूंज। सही जवाब अमिताभ बच्चन जी के स्टाइल में बोलन। शोभा जी सरिता जी और राधा जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुभ संध्या। तो चलो शोभा जी और राधा जी और सरिता जी सही जवाब देलन विशाल भाई। हमने तो चाहते ही सके और तनी गाना गए बजा लेकिन का करब इतना ज़्यादा समय नहीं बा। MBC TV पर तो हर एगो प्रोग्राम आ रहा है बहुत ही मज़ेदार, श्वेता जी के साथ प्रस्तुत कर रहा था अंताक्षरी। आजकल तो अंताक्षरी रेडियो पर चलेला। हाँ रेडियो मॉरिशस में सुने ला जा।
2: उषा के साथ कर
0: रहा हाँ, उषा जी के साथ। हाँ उषा जी तो तुम्हारा संगे बहुत प्रोग्राम चले हुए जा, साथ साथ में तुम्हारा हमने देख ले जा परफॉर्म करे थे हुए। तो हमने के बताओ छोटी तरी चर्चा करे के बारे में, कैसे तुम्हारा हो मौका मिला अंताक्षरी प्रस्तुत करे के?
2: तो अगर लोगों को याद रही तो वो प्रोग्राम शुरू कर ले रलन कुमार प्रवेश।
0: कुमार प्रवेश भारतीय कलाकार।
2: हाँ, हाँ बस वो उस वो समय वो काम कर रहा था जा कोई कारण वर्ष उकर उकर फिर भारत वो लौट गए। हाँ फिनी
0: समाप्त हो गए।
2: तो अब कुमार जी एक सेमेन की दो सेमेन में MBC को चाह को उनको चाहिए था कि एक जो हिंदी बोलने
0: वाला
2: और जो थोड़ा बहुत गा भी ले। तो श्वेता तो पहले से था प्रोग्राम में, पहले से थी। तो हमके मौका मिलल।
0: हाँ
2: हमार इच्छा नहीं रहल, सही में बोली हमार इच्छा नहीं रहल लेकिन हमार मान ने यानी प्रोत्साहन दिलक हमके कि नहीं चलो आओ, ये मौका बार बार नहीं आई,
0: हर सप्ताह हम प्रोग्राम देखते रहिए हम तो उमे पहली बार तू एगो स्पेक्ट एगो ऑडियंस के रूप में आ रहला या नहीं?
2: हां हम नहीं, हम ओकर ताबलो में आ रहे,
0: ताबलो में आ रहला। हां एगो गाना

अरे लल्ला हाय प्रोग्रामा में हमके याद बा तब तो हर लंबा लंबा बार रहल याद बा हमके लंबा पथरा रहल और लंबा लंबा बार त हई एगो गाना गले रहल 90s के गाना ही रहल हमके याद बा इतना ज्यादा जहन में नहीं बार परंतु हमके याद बा त हई जोन प्रोग्राम ह और हमके ई भी याद बा भाई जी के जब फाइनल में रहल त अनु कपूर जा रहल हां बहुत बड़ा अनुभव रहल हां बहुत

0: करना था तो वो बाप रे
1: बहुत बढ़िया। जब संगीत के प्रतियोगिता होला भाई जी तो कितने बार जूरी के रूप में तू आवेल टीवी पर हमने कितने बार तुहरा देख रहे जा पर अपन परमागस जैसे बोले राजा तुहर जो कॉम्पिटिशन्स प्रतियोगिता तू भी कभी आगे भाग ले रहे हो जा कॉम्पिटिशन्स में तन ये कर बारे में चर्चा करो।
0: हम एक ही कॉम्पिटिशन में भाग ले ले
1: नेशनल
0: में
1: नेशनल
0: और विलाज में एगो
1: अच्छा
0: हम लोअर सिक्स में रली तो
1: अपन गांव
0: में हां गांव में उस समय हम लोग बोले तो राजू खोसे
1: राजू खोसे हां सुनने है हां
0: तो 95 में या 94 में हम लोअर सिक्स में रली
1: अच्छा
0: नहीं 95 तो यूनिवर्सिटी में रली सॉरी 91 में तो मौद अलबे में राजू खोसे हो रहल और हो जा गेले रली बाय बाय बाय बाय बाय बाय
1: कुमासानू के जो नाबाज हाँ बहुत अच्छा
0: ये गाना हमके पहला पुरस्कार मिल रहा
1: बहुत बढ़िया
0: तब हम जब यूनिवर्सिटी आईली 93 में तो संगतिया लोग बोलन तू संगीत पसंद कर ले तो कहीं ना एमजीआई जाके को थोड़ा ज्वाइन कर
1: कोर्स फॉलो कर
0: ले शुरू कर ली हम एमजीआई मुका से दो बरिस कर ली तो और आखिरी बरिस रहल हौ इमानुएल लॉन्गचिल में कंप्लीट कर ली तो जब हम सेकंड ईयर में रही तो कॉम्पिटिशन आल गीत गाता चल 1995 में
1: अच्छा
0: तो वो कॉम्पिटिशन के लिए कौन सा गाना चुने रही कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो

0: मैं हूँ बस एक तुम हो। 1942 लव स्टोरी का गीत था।
1: बहुत अच्छा।
0: तो उन कॉम्पिटिशन में हम बस प्रीलिमिनरी राउंड कर ली।
1: अच्छा हाँ।
0: तो वो प्रतियोगिता जीतले रलन डॉक्टर वर्षा रानी विशेष
1: कोलेगा।
0: हाँ दूसरे नंबर पर शायद उस नीतूषा राम प्रोग्रेस थी और तीसरे नंबर पर श्वेता
1: बाबूलाल
0: में।
1: यही जो एक मात्र ऐसे प्रतियोगिता है जो में जो भाग
0: कॉम्पिटिशन के बाद हम एक व्यक्ति के नजर में आईली और वो व्यक्ति कौन रहल वो हमर कार्य के पीछे उकर बहुत बड़ा हाथ और योगदान है वो रहल चांदनी जी।
1: चांदनी ननकू जी।
0: हाँ चांदनी जी वो प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे थे गीता चल। तो जब हमर प्रीलिमिनरी होल तो हमके भेटा बोले कि हम एगो लाफे लाने एगो प्रोग्राम कर रहे थे तो वजह नुवो नुवो तालो
1: सांस जब हाँ प्रोत्साहित करे
0: वो पहले से बोले कि तू सिलेक्ट हो गए ले हम तेरे को मैं तुमको ले रहा हूँ उस प्रोग्राम में।
1: देखा
0: तो हुआ से तब जब सफर शुरू होल कि ये जो फिर एमबीसी के साथ मेरा जो रिश्ता
1: गहरा हुए
0: हाँ तो वहाँ से फिर प्रेजेंटेशन में चले ली अंताक्षरी के माध्यम से। तो फिर वो जो क्या बोलेंगे संगीत के साथ जो रिश्ता बनल तो वो
1: गहरा
0: हुई हाँ तो गहरा होते गल और उही के प्रेरणा से हम
1: आज
0: स्कॉलरशिप लेके हम भारत गयी पांच बरिस उधार
1: पांच बरिस
0: हाँ बी ए एम ए करके
1: तब वापस आई बहुत कठिन है और भारत में संगीत के शिक्षा पाए के तो बहुत ही कठिन है।
0: और जैसे बोला उस समय में ज्यादा लोग ला म्यूजिक नहीं पढ़त रहन जा
1: बिल्कुल इतना ज्यादा महत्व नहीं देवत रहन जा। वही जमाना से जब ऐसे कार्यक्रम के आयोजन हो लगल जब नया नया कलाकार उभर के आए गंजा तब आदमी लोग के पता चला कि हाँ संगीत में दम बा। नाइन्टीज के जमाना से लेके जब अच्छा सुंदर सुंदर गाना निकले लगा बॉलीवुड में तब सब के रुचि आए लगा बॉलीवुड में।
0: और हम तो अभी की बात बोलते हैं भाई रोशन जी कि अभी एगो यूनिवर्सिटी से आप कोई भी डिग्री पढ़ के आओ और एमजीआई से आप एगो बीए ला म्यूजिक

0: और म्यूजिक में जब हम बोली ला नौ गो डिसिप्लिन हम लोग पर हम नौ गो डिसिप्लिन उसमें तीन गो डांस बा कथक भरतनाट्यम कुचिपुरी अब इंस्ट्रूमेंट में बा सितार तबला व्योलों हारमोनियम में बयान बा मृदंगम बा तबला बा सितार बा वायलिन बा और गाने में वोकल हिंदुस्तानी और वोकल कर्नाटिक तो ये सब डिसिप्लिन में अगर आप एगो डिग्री करत हो तो जिस तरह जिस चांस बा कि आप सरकार में या फिर कोई कॉलेज में नौकरी मिल जाए अभी एगो पोजिया हुआ था जो ला म्यूजिक को ये फोमकार फोमसैंक में किनिहू में लेके आवत हैं सर
1: बहुत अच्छा अभी फोम तो आवे रे बा
0: अभी फोम तो ग्रेड
1: 9
0: हां बस ग्रेड 9 तक बा तो ये प्रोजेक्ट पर हम लोग काम करते हैं सर कैम्ब्रिज के साथ एमयूएस के साथ और सब सब मिलके हां तो वो प्रोजेक्ट जब कंक्रीटाइज हो जाए तो और को डिबूसे मिली कि आपको रुचि है कि संगीत में रुचि है तो काये बना सकते हैं उसमें तो
1: बहुत अच्छा
0: ये सब मौका छोड़े के नहीं चाहिए हम हमने के नौजवान लोगों को
1: बिल्कुल नौजवान लोग के प्रेरित करत हुआ जा और एगो कार्य तही जा बा खाली थोड़ा छा मेहनत करे के गाना और संगीत के प्रति अपन रुचि जगाए के तो है जो बगल तोहर जो कार्य प्रोस्पेक्ट बा बहुत ही बढ़िया बा बहुत ही लाजवाब तो हमने के बतावा भाई जी अब तो 5:47 तो हो गल बा बहुत कम समय रह गल बा तो नहीं सब सा और प्रश्न पूछे खाली के गो प्रश्न पूछे कि हमने के मौका मिलल तो तोहर तोहर जो संगीत टोली है जहाँ पर अनेकों कलाकार के साथ तोहर कला के प्रदर्शन हो रहा ज़्यादातर हिंदी फिल्मों में तोहर परफॉर्मेंस रहेला तो तुहर जो फेवरेट स्टार्स है कलाकार है जैसे हम बोला अमिताभ बच्चन जी वो तो 80s और 70s के महानायक रलन तो आज कल के दौर में के पसंद करेला तू
0: तो अच्छा जो काम करेला तो उमे तो रणवीर सिंह है रणवीर कपूर बा दो अच्छे
1: कलाकार बा
0: और हम कैसे हम एक्शन फिल्म
1: पसंद करेला जा अच्छा
0: था
1: इतना रोमांटिक गाना गा के
0: गाना तो रोमांटिक हम पसंद करेला लेकिन फिल्म एक्शन और जो सस्पेंस बा वो पसंद करेला तो उसमें एक तो सनी देओल बा फिर अजय देवगन बा
1: एक्शन हीरो
0: वाले
1: बहुत अच्छा एक बार एगो प्रोग्राम रहल तो एगो दोस्त संगे परफॉर्म करत रहा टीवी पर चलत रहल दुगो गाना गरे रहा एगो दरार वाला ओ प्रिया मैं तेरे दीवाना अरबाज खान पर आधारित रहल और एगो दूसर गाना सनी देओल के चर्चा कर लेते हमके याद चला मेरा दिल ले गए कमो किधर हाँ
0: वो हमार संगतिया गए राज रामजीन गए
1: हाँ तो आज बहुत अफसोस के बाद बा कि आज वो इस दुनिया में नहीं होन और बहुत जल्दी हमने के छोड़ के चल गए ननु भी वो बड़ा कलाकार बनतन
0: सुखदेव सुंदयाल
1: हाँ तो हम देखे रही दोनों संगे संगे प्रोग्राम कर रहे थे नाटक भी कर रहे थे क्लासमेट रह लजा तो जो निश्वर के हमने के समझ के बाहर है तो चला अब हमने के बतावा अपन जो सम्मान के बारे में अवार्ड्स के बारे में खासकर म्यूजिक के क्षेत्र में संगीत के क्षेत्र में और वो भी जब हमने तोहरा देख रहे जा शंकर महादेवन जी से तोहर इंटरेक्शन टीवी पर हमने भारत में जाके वो कैसे तोहर मुलाकात हो
0: एक्चुअली हम बोले रही ना कि हम अभी हम अभी ले सीखत हैं तो अब हम भारत से सीख के आयल हैं तो हेजा मजे अब हम की सिखाई की बात जब हम देख ली कि ऑनलाइन शंकर महादेवन एकेडमी वो कोच लावेला
1: अच्छा
0: और वो भी वन टू वन पर्सनल
1: इंडिविजुअल
0: अटेंशन तो हम ज्वाइन कर ली वो एकेडमी
1: अच्छा
0: तो 2 साल के अंतर्गत ही वो हम की मजे नोटिस कर दिलन तो हम की बुलेलन एक प्रोग्राम वो हर साल करेलन प्रयाग और संगम तो जो नोकर उकर सबसे एक मजे बेहतरीन जो जो जो स्टूडेंट बा तो के बुला के एक प्रोग्राम होला अच्छा। तो उसमें सोलो परफॉर्मेंस हाँ गाय के परेला क्लासिकल हाँ तो हाँ तो पिछले बरिस दिमिल वैनसैंक में हम गए रही बेंगलोर तो उकर सामने गए ली
1: सामने गए
0: हाँ वो सामने वो तो सामने

0: बैठे बैठे बैठे बैठे रहता तो और मास्टर क्लास भी उनके साथ होएल तो वो एक्सपीरियंस बात तब बाप रे अवर्णनीय है जो बोलते हैं
1: सच्चे के तो वहाँ पर भी
0: तो बस वो एक एक तरह से अभी भी कोच ने करा था ही
1: एक तरफ से सकब सब बोले कि एगो बहुत बड़ा अनुभव रहल तोहर खातिर और ऐसे त हम सकब सब बोले कि तोहर जीवन ईगो घटना से धन्य हो गल इतना बड़ा कड़ाका से मुलाकात करके और हमनी के बतावा बहुत कम समय रह गल भाई विशाल जी तो तोहर जोन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है संगीत के बारे में तोहर जोन आने वाले जोन प्रोजेक्ट है कुछ एगो एल्बम निकाले
0: बहुत हाँ बहुत
1: काम
0: इच्छा रहल कि एक तो इच्छा रहल कि भजन का एक एक संग जो कलेक्शन बोलते हैं कि वो ऊपर काम करे कि शुरू करब और हमर खुद के जो काम पर जो विशेषता बा उसमें पीएचडी का काम भी शायद
1: अच्छा
0: हाँ शुरू करे कि पढ़ी
1: तो डॉक्टरा जैसे पीएचडी
0: पीएचडी स्टडीज
1: का अच्छा बहुत बढ़िया तो ईश्वर तो रक्षा करे जो कार्य तू सोच के आगे बढ़त हुआ उमे तो बहुत ही सफलता प्राप्त करब खाली हमर ओर से नहीं बल्कि तुहरा जो सैकड़ों फैंस बा मॉरिशस में वो लोग के प्रति यार तुहर जो शिष्य गण हुवन जा वो लोग भी के प्रति भी बहुत तो वो लोग के हृदय भी तुहर संगे धड़केला तो एगो अंतिम प्रश्न भाई विशाल जी और एकर बाद में तुहरा एगो हम मन करे बा एगो अंतिम गाना सुने के और आज तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है हाँ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज तू देखबा नहीं देख कोनो गाना जो बहुत तोहर दिल के करीब है हमने के प्रस्तुत करिया तो अंत में तोहर जो संदेश है छोटा सुन संदेश हमने के नौजवान के प्रति और हमने के जो देशभक्त लोग के प्रति कोने को छोटा सुन संदेश दे बजा
0: नहीं तो हम हमेशा बोले मजा यही बोले
1: बोल
0: कि संगीत के साथ हमेशा जुड़े रहिए
1: या जा बिल्कुल हाँ
0: संगीत में मैं कुछ शक्ति बा
1: एगो शक्ति बा बहुत अच्छा
0: शक्ति बा कि वो बहुत सी चीज कालमी करेला शांत रखेला तो कोई भी माध्यम से कि भजन हो या फिल्मी सॉन्ग हो या क्लासिकल हो जो भी है तो संगीत के साथ जुड़ा
1: बिल्कुल
0: और एमबीसी पर रेडियो के माध्यम से तो
1: जुड़े तो करेगा हाँ, बिल्कुल हाँ और संगीत के बात कर लिए सब विशाल जी तो रोज के रोज तू अपन साधना करे रह जा रिहर्सल रोज के रोज
0: अगर घर पे नहीं हो तो क्लास में तो
1: होबे कर बिल्कुल यही क्षेत्र में तो हुआ तू तो चला आज श्रोतागण बहुत हर्ष की बात रहल कि हमने के मुलाकात गुरुजी विशाल मंगरूजी से होल और बहुत ही अपन कीमती समय निकाल कर अभी एमजीआई में काम कर तलन बेचारा जल्दी जल्दी हो जा से छलांग मार के हजा चले लन वाजे हैं बिल्कुल एमजीआई हो बगल एमबीसी है बगल फिर भी अपन शिष्यगण के छोड़ के हजा एलन हमार निमंत्रण स्वीकार कर लन त दिल से बहुत धन्यवाद विशाल जी तो चला जाते जाते एगो छोटा सुन टुकड़ा तुहर बहुत ही मधुर आवाज में हमने सुनब आज्ञा लिप सर
0: आपने बोला ना कि अभी परिवार दिवस मनावत है सर एक गीत बा फिल्म हम साथ साथ में
1: बहुत अच्छा
0: हमर बहुत से परिवार को पसंद गीत पसंद आवेला तो एक
1: हरिहरन की आवाज में
0: शायद हाँ
1: बहुत अच्छा गाओ
0: इमें तीन को कुपले बा एगो कुपले माँ पर बा एगो कुपले बाप पर बा और जो तीसरा कुपले बा तीसरा जो अंतरा है वो दोनों पर है
1: दोनों
0: तो,
1: पर।
0: तो जो तीसरा अंतरा है वो मैं
1: माता पिता से ही ता परिवार परिपूर्ण रहेला हाँ बोला
0: आपके ख्वाब हम आज होकर जवां उस परम शक्ति से

एक पल रह सके हम जिनके बिना, आप दोनों सलामत रहे सबके दिल में ये अर

0: क्या बात है बहुत धन्यवाद ई गीतवा खतिर भाई विशाल जी एगो टुकड़ा बाई में धरती पे रूप माँ बाप का ई हम ढेर कलाकार लोग के सुनने हैं जा नहीं सकेलन सहेले कहे कि है चाहना नाभी से लेके बहुत नीचे उतर के हरिहरन जी गहरे हुआ और तू बहुत बखूबी है निभाईला
1: इसको हम अपने भाषा में बोली लन सर मंद्र
0: सप्तक पर लेकर मंद्र साधना बहुत साधना बहुत बढ़िया तपन साधना ऐसे ही जारी रखिए भाई विशाल जी ऐसे ही संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते चल जाइए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मुलाकात हुई हमने
1: बस
0: के?
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई रोशन और जितने भी श्रोतागण जुड़े प्रोग्राम से उनको भी हम बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद
0: चलो
1: नमस्ते
0: नमस्ते तो श्रोतागण ही रहा थोर खतीर कलाकार के बात आज विशाल मंगरू जी के साथ और ठीक 6 बजे आप समाचार विदेश और देश के समाचार सुन बजा तब तक हई जोन गाना विशाल जी गेलन चल हरिहरन जी की आवाज़ में सुनी ना जा और तोहर से हमने बोला था सर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस अभिनंदन
2: RM3 Radio.

सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर हमारी सड़कों पर 11 ब्लैक स्पॉट्स पाए गए हैं। गाड़ी चालकों की आवाजाही को बेहतर करने और राहगीरों की हिफाजत के लिए इन ब्लैक स्पॉट्स पर काम किया जा रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी यूनिट में 2.4 मिलियन रुपए निवेश किए गए हैं। गैब्रिएला बाटू ने बोबासन रोजिल की मेयर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। गए 28 अप्रैल को उन्हें एमएमएम से खारिज कर दिया गया। वो बहैसियत नगर पालिका काउंसिलर से काम करती रहेंगी। कालोजीन में एक जमीन पर कुछ काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से गांववासियों और अधिकारियों ने मालिक के खिलाफ आवाज उठाई। कार्यों को रोक दिया गया है क्योंकि पर्यावरण के लिए ये नुकसानदेह है। और कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के नए मामले सामने आए हैं। पूर्वी इतुरी राज्य में करीब 246 संक्रमित मामलों की पुष्टि की गई और 65 मौतें दर्ज।

0: नमस्कार और आदाब। समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर हमारी सड़कों पर 11 ब्लैक स्पॉट्स पाए गए हैं। गाड़ी चालकों की आवाजाही को बेहतर करने और राहगीरों की हिफाजत के लिए इन ब्लैक स्पॉट्स पर काम किया जा रहा है। सबसे पहले देश के पूर्व स्थित ब्रह्मस्थान की B38 सड़क पर सिग्नल लाइट स्थापित किए जाएंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी यूनिट में 2.4 मिलियन रुपए निवेश किए गए। ये कार्य 11 जून को खत्म होंगे। कुनाल गोजी, गीता सुनारान।
1: फ्लाक बिलिया और कोइचे गांवों को जोड़ने वाले इस चौराहे पर नए ट्रैफिक सिग्नल लगाए जा रहे हैं। ब्लैक स्पॉट माने जाने वाले इस इलाके में वाहन चालक उम्मीद जता रहे हैं कि ये कार्य यहां होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने में मददगार साबित होंगे।
2: Ici, il y a Marie l'avantage pour nous, parce que des fois, il y a un transport, quand je fais aussi l'autre lane là-bas. Là. Je ne sais même pas qu'on est, ça peut virer exactement pour, comment dire, pour contourner, pour le virer tous les douces. Il y a l'autre côté là-bas, quand il y a un accident, maintenant, fait comment.
3: La dernière fois, parce qu'il y a un accident, là. Le robot là, il peut donner la facilité du monde, priorité, l'autre, ce qu'on va passer.
1: Ici, là, quelques différents endroits pour les sandboats vont être placés. En plus, एक डायरेक्शनल आइलैंड का पुनर्विकास किया जा रहा है ताकि पदयात्री चरणबद्ध तरीके से सड़क पार कर सकें और यातायात भी सुचारू रूप से चल सकें।
4: Et pourquoi par mot 60?
5: Speed limit, code car augmenté, nous augmenté, mais la place nous bidait diminuer pour l'intérêt road safety.
1: दक्षिण पूर्व दिशा से बेलिया की ओर से आने वाले और फ्लाक या कोइचे की दिशा में सड़क पार करने में इच्छा रखने वाले पैदल यात्रियों के लिए एक दूसरा पैडल ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी बनाया जाएगा। मुख्य उद्देश्य इस दुर्घटना क्षेत्र में पदयात्रियों और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
6: Sébastopol, ben tout passe la même. Mais peut-être le crossing, pendant que vous allez attendre quand l'auto passe et que vous apprenez l'école, tout passe la même. Vous allez attendre là, puis améliorer, vous bien content.
1: सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर परिवहन मंत्री ने कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। मंत्री उस्मान मोहम्मद कहते हैं,
7: DRMSU
1: ने देश भर में 11 ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की है। पहला कार्य ब्रह्मस्थान में कर रहे हैं। बजट निर्धारित है, प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। अब इन्हें लागू की जाएंगी। ये कार्य मुख्य रूप से राहगीरों की सुरक्षा के लिए है। ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी यूनिट के बजट से 2.4 मिलियन रुपए का निवेश किया गया है और कार्य 11 जून तक पूरा होने की उम्मीद है।
0: पूर्व मंत्री नंदो बुद्धा के बेटे जिनो रोनी बुद्धा की लाश आज लानिकोलिया में बरामद की गई। कालूजीन के रहने वाले 44 साल के जिनो ओम्ब्रेक्स कंपनी में डिजाइनर थे। वो कल से गुमशुदा थे और उनकी मां के बयान के अनुसार वो कल सुबह 10 बजे अपने घर से रवाना हुआ और उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। प्रथम जानकारियों के मुताबिक पुलिस एक आपराधिक हरकत का शक कर रही है। दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। आज रात पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक इन तीन व्यक्तियों के बीच झगड़ा हुआ था और सीसीटीवी कैमरों की बदौलत पुलिस ने तलाश की। संक्रामक बीमारियों के चलते अधिकारी अपने कदम और ठोस कर रहे हैं। सिर्फ एक ही दिन में देश में पर्यावरणीय जुर्मों के 61 कंट्रावेंशंस जारी किए गए। इनमें सार्वजनिक जगहों पर कचरे फेंकना शामिल हैं। इमरजेंसी रेस्पॉन्स सर्विस के सहयोग से पर्यावरण पुलिस ने कार्रवाई चलाई। चिकुनगुनिया, डेंगू और लेप्टोस्पायरोसिस के मामलों के चलते ये कदम उठाए जा रहे हैं। साल के आगाज से इलीगल लिटरिंग के लिए 507 कंट्रावेंशन जारी किए जा चुके हैं। मॉरिशस में कीटनाशकों का जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल करना। अधिकारी मुख्तलिफ साझेदारों के साथ मिलकर एक अहम फैसला लेने वाले हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य की हिफाजत करने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एक्ट 2018 के तहत इस परियोजना पर विचार विमर्श करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उर्वशी बिकारी बंजन, असिता रघु।
1: राजेंद्र गोपाल पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से खेती कर रहे हैं। रुजबेल में अपनी 10 बीघा जमीन पर वे विभिन्न प्रकार

0: की सब्जियों की खेती करते हैं। अपनी फसलों को बनाए रखने के लिए वे बायो फर्टिलाइजर्स, कंपोस्ट और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, लेकिन संतुलित तरीके से जिम्मेदार और संरक्षित उपयोग को प्राथमिकता देते हुए। वे कहते हैं, हम खाद, कंपोस्ट, मिल्टिंग को मिलाते हैं और जब वो सही फर्टिलाइजर बन जाता है, संतुलित हो जाता है, तब उसे मिट्टी में मिलाते हैं ताकि पैदावार अच्छी हो।
1: Le fertilisant là, il demande un process assez fort, bien équilibré. Là, nous mettons ça dans la terre pour nous gagner une bonne production.
0: कीटनाशकों के मिश्रण और उनके उपयोग से संबंधित मानकों को नियंत्रित करने के लिए जल्द ही एक नियामक ढांचा लागू किया जाएगा। डेलॉइट की लीगल एंड रेगुलेटरी की डायरेक्टर स्मिता सिबोरन कहती हैं, हम इन नियमों को तैयार करते हैं, कैसे पेस्टिसाइड्स को मिलाते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं और डिब्बों से कैसे छुटकारा पाए, क्योंकि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। छोटे खेतीहरों को प्रशिक्षण देते हैं, जागरूकता जरूरी है। मंत्री अरविंद बुलेल ने प्रक्रियाओं को मजबूत करने और निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वे बताते हैं, आज टेक्नोलॉजी के साथ एआई से कैसे मदद मिल सकती है, मिट्टी कैसी है, किस तरह की खेती के लिए उचित है, खेतीहर को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। मदद के लिए योजनाएं हैं, प्रयोगशालाओं में नए उपकरण हैं, पारंपरिक खेती मजबूत करनी चाहिए।
2: Compliance, parce que nous besoin aussi une agriculture de précision, nous besoin élégant, mais l'agriculture traditionnelle nous consolide.
0: वर्तमान में मॉरिशस में 10,000 से ज्यादा किसान हैं। सरकार संबंधित पक्षों के सहयोग से कीटनाशकों के ज्यादा सुरक्षित प्रबंधन के लिए उपायों को तेजी से लागू कर रही हैं।
3: गैब्रिएला बाटू ने बुबा सेंट रोजिल की मेयर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। गए 28 अप्रैल को उन्हें एमएमएम से खारिज कर दिया गया। वो बहैसियत नगर पालिका काउंसिलर से काम करती रहेंगी। उनके साथ चार नगर पालिकाओं के 13 काउंसिलरों की भी यह स्थिति है। रिजा उतीम ने कहा कि एमएमएम कानूनी प्रावधानों के हिसाब से कदम उठाएगी ताकि उनके पद को खाली घोषित की जा सके। कालोजीन में एक जमीन पर कुछ काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से गांव वासियों और अधिकारियों ने मालिक के खिलाफ आवाज़ उठाई और शिकायत दर्ज की। कार्यों को रोक दिया गया क्योंकि पर्यावरण के लिए ये नुकसानदेह थे। साथ में पत्थरों को गैर कानूनी तरीके से बेचा जा रहा था। मालिक का कहना है कि वो अपने अधिकार से काम कर रहा था। आज 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी, जिसका मकसद समाज में खानदानों के अहम किरदार पर रोशनी डालना है, वो भी उन चुनौतियों का उल्लेख करते हुए जिनका सामना एक परिवार द्वारा रोज रोज किया जाता है। मॉरिशस में बहुत से परिवारों को गरीबी, बीमारी या फिर किसी विकलांगता का सामना करना पड़ता है। जिंदगी के उन मसलों के बावजूद कुछ लोगों को दूसरों की सॉलिडारिटी और सहारे की बदौलत ताकत मिल जाती है। आज फेडरेशन दे ट्रावायर्स यूनी प्रेस से मुखातिब हुआ। टेक्सटाइल वर्ल्ड निट्स के 3 कारखानों के करीब 550 कर्मचारियों की हालत पर बात की गई, जो एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आत्मा शांतो ने उन्हें उनकी तनख्वाह चुकाने में देरी और क्लाइंट टेक्सटाइल तथा यूनिवर्सल फैब्रिक के कर्मचारियों की बेरोजगारी का भी उल्लेख किया। आत्मा शांतो ने एक जुटाव का भी ऐलान किया। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के नए मामले सामने आए हैं। पूर्वी इतुरी राज्य में करीब 246 संक्रमित मामलों की पुष्टि की गई और 65 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब अमीरात यूएई ने एक रणनीतिक प्रतिरक्षा साझेदारी ढांचे पर मंजूरी जताई है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अरब देशों की यात्रा पर हैं। अबू धाबी में उन्होंने ईरान की जंग के बीच भारत और यूएई के दरमियान रिश्तों को और मजबूत करने का अनुरोध किया। इसके अलावा रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति के वास्ते समझौते भी तय किए गए हैं। आस्था गोविंदमन।
4: अबू धाबी पहुंचते ही भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बेहद खास और भावनात्मक अंदाज में किया गया।

0: यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को इमिराती हवाई क्षेत्र में सुरक्षा घेरा देते हुए आगे बढ़ाया। ये सिर्फ एक औपचारिक सैन्य सम्मान नहीं था, बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति यूएई के विश्वास, सम्मान और करीबी रिश्तों का प्रतीक माना गया। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान खुद भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए मौजूद थे। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री को सैन्य सम्मान भी दिया गया। श्री नरेंद्र मोदी ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को अपना भाई बताते हुए इस विशेष स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई, जहां रक्षा, ऊर्जा निवेश, समुद्री सहयोग और आपूर्ति व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और यूएई के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे दोनों देशों के सुरक्षा और रक्षा संबंध और मजबूत होंगी। ऊर्जा के क्षेत्र में भी कई बड़े समझौते तय किए गए। तेल भंडारण और घरेलू गैस आपूर्ति से जुड़े करार ऐसे समय में हुए हैं जब पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के कारण पूरी दुनिया ऊर्जा संकट की चिंता से जूझ रही है। इस दौरे का आर्थिक महत्व भी बेहद बड़ा माना जा रहा है। यूएई की ओर से भारत में लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की गई है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला और सुरक्षित रहना चाहिए। यूएई भारत का एक प्रमुख व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार है और अब दोनों देशों के संबंध सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि रक्षा, ऊर्जा, निवेश और वैश्विक सहयोग के नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं।
1: अब नए होर्मुज के बंद होने और ईरानी युद्ध की वजह से ऊर्जा संकट जारी है, इसलिए भारत ने नतीजतन ईंधन के दामों को 3% से बढ़ाया है। नई दिल्ली में सरकार ने ऐलान किया कि गैसोलाइन का के दाम 97.77 भारतीय रुपए हैं, जबकि डीजल 90.67 रुपए में बेचा जा रहा है।
0: भारत की सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने शुक्रवार से पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें लागू कर दी हैं। नई दरों के अनुसार पेट्रोल की कीमत लगभग 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 67 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। ये बढ़ोतरी लगभग 4 वर्षों में पहली बार की गई है और इसे पश्चिम एशिया में बिगड़ती स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल ईरान और इसराइल के बीच जारी संघर्ष और अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद पैदा हुए तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में भारी अस्थिरता पैदा की है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बड़े पैमाने पर आयातित तेल पर निर्भर है और विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर अब घरेलू ईंधन कीमतों पर दिखाई देने लगा है। भारतीय सरकार के अधिकारियों का कहना है कि ऊंची वैश्विक कीमतों के कारण सरकारी तेल कंपनियों को भारी वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन कीमतों में ये वृद्धि आने वाले समय में महंगाई पर भी असर डाल सकती है, क्योंकि परिवहन लागत बढ़ने से खाद्य पदार्थों समेत कई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है।
1: स्थानीय स्तर पर कालोजी में जमीन पर कुछ काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से गांव वासियों और अधिकारियों ने मालिक के खिलाफ आवाज उठाई और शिकायत दर्ज की। कार्यों को रोक दिया गया क्योंकि पर्यावरण के लिए ये नुकसानदेह है। साथ में पत्थरों को गैर कानूनी तरीके से बेचा जा रहा था। मालिक का कहना है कि वो अपने अधिकार से काम कर रहा है।
0: कालोजिन में फिलहाल मशीनें बंद हैं, लेकिन एक हफ्ते पहले तक यहां चल रहे पत्थर हटाने के काम को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी थी। इसी के बाद अधिकारियों ने अस्थायी रूप से काम रुकवाने का फैसला किया। कुछ निवासियों का कहना है कि इस इलाके में इस तरह का काम कई सालों से चलता आ रहा है। उनके मुताबिक साल 2021 में भी इस मामले को लेकर अधिकारियों से बातचीत की गई थी। इस साल अधिकारियों को भेजी गई एक याचिका में बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर हटाने और पत्थरों की बिक्री के आरोप भी लगाए गए हैं। गांव के निवासी पुनोलोगत भी इस विरोध में शामिल हुए।
2: Pour faire un courrier, un courrier, parmi les places, et ben habitants de Kalouzine, j'ai aussi une abandonnée.

0: payant que ban pollution d'air qui causait et dans ban pollution sonore aussi pour ban camion qui n'ont pas prévoir.
1: वहीं जमीन के मालिक जिन्होंने गुमनाम रहने की इच्छा जताई उनका कहना है कि उन्होंने ये जमीन 2025 में खरीदी थी, इसीलिए पहले क्या हुआ इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। हालांकि चल रहे काम को लेकर वे अपने पक्ष पर कायम हैं। मैं सिर्फ अपनी जमीन की सफाई और उसे समतल कर रहा हूं। इसके लिए मुझे किसी अनुमति की जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब जरूरी अनुमति ली जाएगी। पर्यावरण मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की।
2: मन जैसा मोबाइल ऑफिसर अल्फेन साइड विजिट पुगेते इफेक्टिवमेंट सेना मन ट्रावो इलीगल के पीछे होले एवं ऑफिसर फेमन साइड विजिट जो इन फेन रापो आमों ए जो इन जवां वी इफेक्टिवमेंट एना डी रॉकिंग मैं c'est pas district council sur responsabilité pour donner une PMI pour de-rocking. C'est la responsabilité des ministères de l'environnement. Ce qui nous fait pour peine polémique là, nous dans board nous décider pour servir une stop notice.
1: मंत्रालय के अनुसार ये काम निजी स्तर पर किया जा रहा है, व्यावसायिक नहीं, और फिलहाल कानून के दायरे में माना जा रहा है। जहां तक पत्थरों की बिक्री का सवाल है, अधिकारियों का कहना है कि सफाई के दौरान निकले पत्थरों को बेचना गैर कानूनी नहीं है। हालांकि मौजूदा स्टॉप ऑर्डर प्रदूषण से जुड़ी शिकायतों के कारण जारी किया गया है। नेशनल पार्क्स एंड कंजर्वेशन सर्विस के अनुसार ये क्षेत्र पायों के पक्षियों के घोंसले बनाने की जगह नहीं है। फिलहाल पर्यावरण मंत्रालय इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाएं इस पर सवाल ले रहा है। वहीं एनवायरनमेंट पुलिस की जांच भी जारी है। जब तक सभी पक्षों के बीच सहमति नहीं बन जाती तब तक काम बंद रहेगा।
3: और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत, हमारे इलाके में सामान्य हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात मौसम अच्छा रहेगा, आज रात को ही और कल सुबह बादल घिराएंगे और पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों में रह रहकर बारिश होगी, ऊंचाइयों पर कोहरा भी छाया रहेगा। कल दिन के दौरान घने बादल होंगे और ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके तेज झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में ना जाने की दरखास्त है, खासतौर पर पश्चिम और दक्षिण वाले लगुनों में। तापमान, सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 24 से 26, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:31 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:41 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो ये थी अब तक की खबरें आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी लुडोविक जोहांगिया की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। शोक समाचार सुनिए। नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

सीतेता याक में विलेज हॉल के सामने 93 साल की 93 years old श्रीमती दयावादी कारुपानेन श्रीमती दयावादी कारुपानेन पैदाइशी नाम चिलेन जो अमाई दादा के नाम से अमाई दया के नाम से जो अमाई दया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल 11 बजे इनके बेटे इंदिरन कारुपानेन के घर सिते तायाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तायाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM अली ब्रियन कास्टेल में 48 साल के 48 years old श्री विनय जगनारायण जो विनय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी वो पूर्व पुलिस सर्जन भी थे इनकी अर्थी कल 11 बजे इनकी पत्नी कृष्णी जगनारायण के घर आले ब्रियन कास्टेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले ब्रियन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रमेशन टुमारो 11 AM वाल्टोलोंग माउंटेन में 83 साल के 83 years old की श्रीमती कायोली मोहन श्रीमती कायोली

विली मोहन जो देवरानी के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दो बजे इनके भाई सत्यम दिनाराम के घर वाल्टों लॉन्ग माउंटेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। बोलेवियाजनी स्ट्रीट लेस्पेरेंस क्वार्टर मिलिटेयर में 75 साल के 75 years old श्री जानेश्वर बिस बिहारी, जो जानेश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल एक बजे की पत्नी बिजवंती बिस बिहारी के घर पुलेवियाजनी स्ट्रीट लेस्पेरेंस क्वार्टर मिलिटेयर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेस्पेरेंस क्वार्टर मिलिटेयर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी हैं।

0: RM3 Radio.
1: नमस्कार, इस समय शाम के 6:22 हुए हैं और हमारा आपका साथ है रेडियो मनोरंजन पर। हम हैं सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं और हमारी आपकी मुलाकात रहेगी रात्रि की 11 बजे तक। हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आज का नई सोच कार्यक्रम, बस इस उम्मीद में कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा, आपकी सेहत अच्छी होगी, आप खुश होंगे और आप संतुष्ट होंगे। हम अपने इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाते हैं। वैसे हमारी तो दुआ हमेशा रहती है कि आप संतुष्ट और प्रसन्न रहें, और ऐसे में हम आपके लिए आज भी इसी दुआ के साथ आए हैं और लेकर आए हैं नई सोच। सोच हमारी हमेशा अगर नयापन दिखाए तो हमारे जीवन में भी नयापन आए और नएपन के साथ हमारे जीवन को रिष्ट पुष्ट बनाए। चलिए हम जीवन में अच्छी बातें सोचें, हम जीवन में हिम्मत प्रदान करने वाली बातों पर ध्यान दें और अपने जीवन को सफल बनाए। चलिए, जीवन चाहे छोटा हो पर हो गहरा, पर हो बहुत ही हृष्ट पुष्ट, चलिए जरा हम यही उम्मीद करते हैं। ये है किशोर कुमार की आवाज़, चलिए जरा सुनते हैं बड़े दिलवाला मूवी का ये गाना आपके लिए है।

और चलिए हम लेकर आए हैं जो नई सोच कार्यक्रम का अगला गीत, ये मुकेश की आवाज़ में है। और चलिए इस पर हम ज़रा विचार करें कि जब कई बार कोई आता है और आ करके हमारे जीवन में एक छाप छोड़ जाता है, उसके जाने के बाद क्यों हमको इस तरह से उनकी याद आती है।

क्यों ना हम चले इस तरह हम चले कि हम गाती चलें और मुस्कराती चलें। ज़िंदगी में तो हमें गम मिलते ही मिलते हैं, पर गुनगुनाते चलें हम और गमों से जूझते चलें हम, मुस्कराते चलें हम और गमों को मुस्कुराहट में कन्वर्ट करते चलें हम, तो ज़िंदगी ज़िंदगी लगने लगेगी। आप ज़रूर मानिएगा हमारी ये बात।

संसार की बात क्या कीजिए, इस संसार में तो गम ही मिलते हैं। बस संसार को एक नदी जो समझेंगे तो हम तो संसार हम इस नदी के दो किनारे हैं और इन दो किनारों को का मिलना ज़रा मुश्किल होता है। फिर भी जो पानी होता है वो इन दो किनारों को मिलाता है। जो मिलता है इस जहां में उससे संतुष्टि कर लीजिए और उसी से काम करने की आप कोशिश कीजिए। जिंदगी में आपको सुख चैन अवश्य मिल जाएगा।

उद्देश्य तक पहुंचने की हर तरह से कोशिश करते हैं, पर होता है कभी कभी कुछ यूं कि थोड़ा मिलता है थोड़ा नहीं मिलता है। बस जो नहीं मिलता है उस पे गम मत कीजिए, जो मिला है उसको और भी दृढ़ बनाने की कोशिश कीजिए।

कहने वाले ने सही कहा है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। हम तो भाई अपने जीवन में उद्देश्य रखते हैं।

बेशक इसी वजह से जिंदगी का सफर जरा कठिन सफर लगता है और इस कठिन सफर को हम अगर आसान बनाने की कोशिश करें तो सच में लाभ होगा। सच में हमारा माइंडसेट अगर कहेगा कि मुश्किलों का सामना करना है और इन मुश्किलों को आसान बनाना है, तो हमारे जीवन में, हमारी सोच में और हमारे व्यवहार में ज़रूर ज़रूर बदलाव आएगा।

बस यहीं पर समाप्त हो जाएगा हमारा आज का नई सोच कार्यक्रम। आप लोगों को चुने हुए गाने प्रोत्साहित कर पाए होंगे, यही हमारी उम्मीद है। शाम के लगभग 7 बजे हम पेश करेंगे आप लोगों के लिए आज का दिलों की आवाज़ कार्यक्रम। इस समय 6:58 हुए हैं।

0: सुनो, किन के ख्यालों में डूबे हुए हो? लगता है गहरा ख्याल है। हेलो,
1: कुछ कह रही थी क्या?
0: हाँ, तुम्ही से बात कर रही थी। कहाँ खोए हुए हो?
1: ओ सॉरी, म्यूजिक सुन रहा था।
0: ऐसा क्या सुन रहे थे?
1: रेडियो मनोरंजन पर दो दिलों की आवाज सुन रहा था। रात 7 से 9 बजे तक कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। मन पसंद गीतों का सिलेक्शन है, वाह क्या कहीं।
0: ऐसा क्या?
1: हाँ, जलने की कोई जरूरत नहीं, तुम भी अपना मन पसंद गाना सुन सकती हो। बस आसान तरीका है, बस नंबर मिलाओ 402-8070 पर और अपनी पसंद जाहिर करो।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: बेशक हमारे पास आएंगी कितनी आवाजें हम इनवाइट करते हैं सभी आवाजों को जिनको भी जो गाना सुनना है उसके बारे में बताने के लिए आपके दिल की आवाज क्या गाना सुनना सुनने की गुजारिश कर रही है जरा हम तक पहुंचाइएगा और पहुंचाइएगा ये मैसेजेस द्वारा 5250-6200 पर 5250-6200 पर और जो कॉल करना चाहते हैं तो बातें हमसे भी करना चाहते हैं तो 4028070 नंबर है हमारा सो हम हैं सुरेखा आपकी सेवा में हम हैं सुरेखा आपकी खिदमत में आपके लिए लेकर आए हैं आपके लिए दिलों की आवाज़ बस दिलों की ये आवाज़ें हम तक पहुँचे और हम ये आवाज़ें आप तक पहुंचाएंगे चलिए ज़रा हम आपको सुनवाते हैं इज्जत मूवी का एक गाना सबसे पहले और दिल का तड़पता हुआ ये साज़ है दिल की तड़पती हुई ये आवाज़ है चलिए ज़रा मोहब्बत की ये आवाज़ सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों के ज़रिए

0: Continuous music. RM3.
1: हुजूर, दिल तो हमारा भी लगेगा तब जब आपकी फरमाइशें हम तक पहुंचेगी, और दिल लगने लगा है हमारा क्योंकि फरमाइशें पहुंचने लगी हैं हमारे पास। सो दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में आप लोगों का हम करते हैं स्वागत, और हमारी पहली फरमाइश, हमारे प्रोग्राम की पहली फरमाइश हम ज़रा पेश करते हैं। ये गाना है फिल्म कुछ कुछ होता है से लिया गया, और इस गाने की फरमाइश गुलशन जी ने की है। उन्होंने ये गाना अपनी मामा प्रभा के लिए, बहन दीक्षिता के लिए और आयशा के लिए मांगा है, तथा भोला परिवार के लिए और हमारी सखी हंसिनी के लिए। तो चलिए ज़रा सुनते हैं ये शादी वाला गाना। अगर आपके यहाँ शादी हो रही है इस वीकेंड तो ज़रा समा बांध देगा ये गाना।

सो शादी का मौसम जहां पर हो उस मौसम में बाहर आ गई होगी इस गाने के साथ, ये उम्मीद करते हैं हम। और चलिए जरा हम बढ़ते हैं श्वेनल जी की पसंद के गाने की ओर। और श्वेनल जी ने पसंद किया है जो गाना, वो गाना है आदमी खिलौना है मूवी से। और इस गाने की फरमाइश श्वेनल जी ने की है भाई श्रवण के लिए, भाभी कृति के लिए, अभिनव, कियान, अन्नाव्या और पूरे तिलक फैमिली के लिए, और उन सभी के लिए जिनकी शादी होने वाली है इस सप्ताहांत। तो चलिए मेहंदी लगाने की रात जिनकी आई है उनकी ज़िंदगी में बाहर ही बाहर रहे, मेहंदी की रंगत हमेशा गाढ़ा ही गाढ़ा रहे।

इस समय 7:24 हुए हैं और दिलों की आवाज़ें तो हम तक पहुंच रही हैं। दिलों की आवाज़ों के मुताबिक हम पेश कर रहे हैं फरमाइशी गीतों का ये सिलसिला, और पेश करते हैं इस बार हम प्यार प्यार मूवी का गाना। प्यार प्यार मूवी का ये गीत हमें हमसे मांगा है सुदेवी जी ने, और सुदेवी जी के नाम करते हैं हम ये गाना। उनकी तरफ से ये गाना त्रियोले की दीदी ललिता जी के लिए और कुशल फैमिली के लिए, आत्मारम भैया के लिए, दीदी सुनीता, शोभा के लिए, मालेगा के अनुषा, किरण, यशना, नीरज, पूरे रामरतन परिवार के लिए। तो सुदेवी जी की तरफ से सुनने का ये गाना, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू की आवाज़ है।

और इस बार चलिए जरा बढ़ते चलें, हम उदय जी के नाम करते हैं गाना। उदय जी व्यस्त रहते हैं और डिनर कर रहे हैं इस वक्त, बन अपेची आपको कहेंगे, और अपने पूरे परिवार के साथ खुश रहिएगा, बहुत अच्छी सी शाम बिताइएगा। चलिए आपके नाम करते हैं हम दिल आखिर दिल है मूवी का ये गाना, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

0: और जो बढ़ते चलेंगे तो बेशक नजर आएगा हमको अगला वाला ऐसा गाना जिसके साथ हमें कुछ नाम याद आएंगे, कुछ आवाज़ें याद आएंगी और कुछ ऐसे पल याद आएंगे जिनको भुला देना अच्छा नहीं लगता, जिनको भुला देना गवारा ही नहीं होता। लता मंगेशकर की आवाज़ का ये गाना है, किनारा मूवी से लिया गया, और ये गाना हम पेश करते हैं हमारी श्रोता किरण जी के लिए जो रहती हैं मेबक, और यही गाना हम पेश करते हैं सूरज शर्मा सजादा जी के लिए, उनकी तरफ से उनके बेटे निशाल के लिए और पूरे बिसेसर परिवार के लिए जो त्रियोले के रहने वाले हैं। तो चलिए ज़रा हम लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ें सुने साथ मिलके।
1: दूर होते होते वो आवाज़ डूब गई,

सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है गरीब।

गाना सुन सकते हैं। जी हाँ, किशन कन्हैया मूवी का ये गीत हम पेश करेंगे चांदनी पुरुषोत्तम जी की तरफ से। चांदनी पुरुषोत्तम जी ने ये गाना मांगा है स्पेशली टू भौजी रानी और भतीजा आदर्श छोटी, जो रिश्ते में तो माता पिता है, माता बेटा है, माँ बेटे हैं और दोनों साथ में अपना बर्थडे मनाते हैं। सो उनके बर्थडे के अवसर पर उन्हें बेस्ट विशेष चौटी परिवार की तरफ से, सैंपिया के पुरुषोत्तम परिवार की तरफ से, और साथ ही साथ फैन होंगे माधुरी दीक्षित नैने की, उन्होंने माधुरी दीक्षित नैने को भी हैप्पी बर्थडे कहा है।

चलिए जरा हम इस बार फिजा मूवी का गाना सुनते हैं और फिजा मूवी का ये गीत हमसे पॉम्पलेमूस से सूरज जी ने मांगा है और उन्होंने ये गाना मांगा है हमारे माफ कीजिए पॉम्पलेमूस के सचिन जी ने मांगा है। सचिन जी आप हमें डंडा से मत मारिएगा, आपके लिए ही गाना पेश कर रहे हैं हम। पॉम्पलेमूस के सचिन जी के नाम करते हैं हम फिजा मूवी का ये गाना जिससे आशा भोसले ने गाया है। तो चलिए जरा डांस करने का मूड हो तो साथ में हो लीजिएगा।

दिलों की आवाजें हमारे दिलों तक पहुंच रही हैं और वो हम आपके दिलों तक पहुंचा रहे हैं। और अभी जो गाना हम आपके लिए पेश कर रहे हैं बाजी मूवी का ये गाना है, और धीरे धीरे से जिंदगी में आने की ये जो गुजारिश है, चलिए ज़रा इसको सुनते हैं। ये वो गाना है जिसकी फरमाइश की है मीना जी ने, और मीना जी ने ये गाना मांगा है कथों बोन से, और मीना जी के नाम करते हैं हम ये गीत, और यही गाना

इंसिडेंस है कि मांगा है अनीता जी ने फ्लिक ऑफ फ्लैग से, अनीता जी की पसंद का गाना और मीना जी की पसंद का गाना दोनों एक ही है। चलिए जरा सुनते हैं हम ये गाना अनीता जी की तरफ से, उनके पति राज जी के लिए, बेटे अंतिश अंकुश के लिए, बहू मनीषा और अशीमा के लिए, पोती हिमेशा आध्या के लिए और पोते अंश के लिए। तो चलिए अनीता जी साथ मिलके सुनते हैं ये गाना, मीना जी हम आपके भी साथ मिलके ये गाना सुनने वाले हैं।

और चलिए जरा हम इस बार सुनते हैं हाथ ही मेरे साथ ही मूवी का गाना. मोहम्मद रफी की आवाज़ का ये गाना है. बहुगोश की गुडलैंड्स की संध्या जी ने इस गाने की फरमाइश की है अपने पति विनोद के लिए, सेजल और रैना के लिए.

और चलिए जरा हम पेश करते हैं संध्या जी की पसंद का गाना। सैंपिया से संध्या जी ने मांगा है ये गीत, उनकी तरफ से ये गाना हम पेश कर रहे हैं पूरे हमारी पूरी टीम के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सभी लिसनर्स के नाम करते हैं हम संध्या जी की तरफ से ये गीत।

जी आज की पसंद, जी हाँ है ये परदेसी परदेसी गाना फिल्म राजा हिंदुस्तानी से लिया गया, उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी की आवाज़ों में। तो जिया जी ने इस गाने की फरमाइश की है अपने पति राजू जी के लिए और अपने बेटे हेमंत के लिए।

चलिए जरा जन्मदिन की शुभकामनाएं हम लेकर आते हैं। जन्मदिन की शुभकामना हम देते हैं विवेक आयुष को, विवेक जी को, और आशनी जी को। आशनी जी अपना बर्थडे मना रही हैं जी। ज्योति जी ने शादी बिनागत से हमें बताया कि आशनी सेलिब्रेटिंग बर्थडे टुडे, और उन्हें मंदिर परिवार की तरफ से, उनके भाई विवेक की तरफ से, और आयुष की तरफ से, सुरेखा की तरफ से, रेखा की तरफ से, कमल, ऋषि एंड फ्रेंड्स की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप लोगों को जन्मदिन की मंगल कामनाएं अगर आप अपना जन्मदिन मना रहे हो। अभी इधर ललिता कुशल जी ने तो ये से बताया कि ताहरा कुशल जी का जन्मदिन है आज, उनकी बेटी विमला की तरफ से, उनके दामाद इंद्रदेव की तरफ से उनको बहुत सारी मंगल कामनाएं। और आज ही ललिता जी के परिवार में उनके बेटे अजय का है जन्मदिन। अजय जी को हमारी पूरी टीम की तरफ से वेरी हैप्पी बर्थडे। उनकी पत्नी आशना की तरफ से, बेटी आयुषी की तरफ से, आलिया और आलिना की तरफ से, कुशल परिवार की तरफ से। फिर ललिता जी ने इसी गाने को बजवाया है, अपने बजवाना चाह रही हैं अपनी बहनों के लिए, सुदेवी, देवीना और ज्ञानी के लिए, छोटी जी, प्रभावती जी, हरीश जी और आत्माराम जी के लिए, सुखलाल मौसी के लिए, कालबास की देवी, और फिर माला रामजावन जी के लिए।

0: 94.6, 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: और RN3 पर आपकी पसंदों का ये सिलसिला चल रहा है और पेश करेंगे हम समाधि मूवी का गाना। समाधि मूवी का ये गीत हम पेश कर रहे हैं।

हैं जे के सुकन जी के लिए। पद्मी मौ से जे के सुकन जी ने मांगा है अपनी माँ सोना के नाम, मौसी सिवंती के नाम, अपने दोस्तों के नाम और पूरे सुकन परिवार के नाम। समाधि मूवी का ये गीत।

और चलिए इस बार हम पेश करते हैं सुदेवी जी की पसंद का गाना, तुमसा नहीं देखा मूवी का ये गाना उन्होंने अपने बच्चों के नाम किया है। चलिए रूप कुमार राठौर की आवाज़ को ज़रा सुनते हैं, उनकी आवाज़ के जादू

मुझे दिल की बात कहने दो, मैं पागल दीवाना तेरा। मुझे

तो आप लोगों के नाम करेंगे हम इस बार जो गाना वो होगा हीरा पन्ना मूवी का गाना। ये गाना हम नंदा जी के नाम करते हैं। पायसे नंदा जी ने इस गाने की फरमाइश अपने बच्चों के लिए की है और अपनी नई नवेली गुड़िया सी बहू दिव्या के लिए की है और पूरे पुनीता परिवार के लिए, गणेश परिवार के लिए, अरवी के लिए, गुल्लू के लिए, अभिषेक उनके बेटे, अश्विना के लिए, अविनाश और आशील के लिए।

तो चलिए अंतिम गाना हम पेश करेंगे दिलों की आवाज कार्यक्रम का। ये गाना होगा तुम बिन मूवी से लिया गया। चित्रा की आवाज का ये गाना है और ये गाना हम बजवा रहे हैं गोंगुब से विद्या जी के लिए और विद्या जी की तरफ से उनकी बहन अनुषा के लिए। और यही गीत हम क्यूपीप की अनीता जी के लिए बजवा रहे हैं जो हमारा प्रोग्राम रेडियो मनोरंजन पर कभी नहीं मिस करती। सो हम भी क्यों मिस करें, आपके नाम का गाना हम ज़रूर बजवा रहे हैं अनीता जी। और ऐसे में आप इस गाने को पसंद करेंगे यही उम्मीद रहेगी हमारी। और हमसे देखा यहाँ पर आपसे इस प्रोग्राम को समाप्त करने की परमिशन मांगते हैं। इनफैक्ट हमें समाप्त करना पड़ेगा ये प्रोग्राम, 9 बजे तक का ये प्रोग्राम है। 9 बजे तक आप सुनिएगा दिलों की आवाज़ का ये अंतिम गाना और उसके बाद हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम हम रेडियो मॉरिशस से प्रसारित करेंगे जो हमारे रेडियो मनोरंजन पर भी प्रसारित होगा। तो फिर मिलते हैं थोड़ी ही देर में।

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: नमस्कार, अभी हमने रेडियो मॉरिशस पर हैं, जाओ री भोजपुरी में तड़का लगाए आल हैं, जाओ भोजपुरी के दुनिया में तड़का लगाए आल हैं, जाओ हम हैं सुरेखा तो हर संगे और ये भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तो हर स्वागत करते हैं। भोजपुरी तड़का अभी से हमने चलाओ अब जा 11 बजे लेकर अभी 9:04 होल बाद तो लोग सक बजा हमने के टेलीफोन करें या फिर मिसाज भेजे, SMS करे या फिर व्हाट्सएप मैसेज भेजे 5251700005 पर और ये अपन पसंद के गाना के फरमाइश करे और जो टेलीफोन करे खोजा था वह जात 4028085 पर सब बचा टेलीफोन करे तो हर पसंद के गाना से हमने तड़का लगाओ जा भोजपुरी तड़का में। चला अभी हमने सुनी जा राजा बाबू, ऋषि कुमार मन, ऋषि कुमार बिनोद जी के गावली जन गाना बा, ये हम नाम करत हैं जा रवि जी के, रवि जी रहे लन पेची तो और ये गाना मंगले हो अपन सब संगतिया लोग के नाम।

गाना सुनब जाओ और एक कुकड़ी मुनी ढाई ढाई बचपन याद दिला देवेला तो चला बचपन के एक थोड़ा बहुत बात हमने याद कर लेला जा और ये गाना हमने विनोद जी के पसंद पर सुनी जा। विनोद जी थ्रियोले रहेला ना अपन पत्नी राधिका के नाम करत हमने गाना।

अब चला तनिसन नखरे वखरे हो जाए और नखरा के साथ साथ तनी फरमाइश भी हो जाए। ये है ऋषि राज रामफल जी के गावल गाना है, कर में तनी मांग बा झुमका ला दे के, ला दे सजना हमर खातिर झुमका, ला दे हमर झुमका सजना। चला ये गाना हमने सुना थे जा वीना जी के पसीन पर, और वीना जी अपन सजना के नाम कर ले हवन निगाना, उनकर सजना हवन सुदेश जी।

तो चलो अब हमनी जो गाना प्रस्तुत कर अब जाओ है नीरज गुप्त मधु जी के गावल गाना और ये गाना आत्माराम जी बेलिया से मंगले हुआ ना पंतीन गोदमात के नाम और ये अपन बहिन प्रभावती बहिन ललिता और बहिन छोटी तथा बहिन सुदेवी जी के नाम

बसंत सुपाल जी के गावल खंसिया होला गाना हमने से सुने खोजत हवन मीरा बाई दरमियान जी अपन बेटी दामाद के सुनावे खोजत हवन गाना अपन पति के पादिया परिवार और दामिया परिवार के।

खसिया के पकड़ते पकड़ते त फाती के ओगल हो बजा चला आगे बढ़ी जा और अभी कुछ हमनी विक्रम कुलाचन जी के आवाज़ के गाना सुनब जा। ये गाना सुनीता जी गाँव गुप से मंगले हवन अपन कुंकुमा के बहन विमाला के नाम करत हवन गाना। तो चलो सुनीता जी और विमाला जी के पसंद के गाना सुनी जा हमनी विक्रम कुलाचन जी से।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का तो चला तड़का तो हमने लगाते हैं जा चला हमने गाना सुनी जाओ अभी कुछ अनीता जी के पास इन पर फ्लिक ऑन फ्लाक के अनीता जी मंगले हवन रेशम के साड़ी ही रंभाराम दयाल जी के गावाली गाना और ये गाना अनीता जी फ्लिक ऑन फ्लाक से अपन सब परिवार खातिर और सब दोस्तों खातिर मंगले हवन।

और अब चला अभी 9:38 होल बाउरी हमने वंदना हमारे सोना सुनब जा रोशन सरा सिंह जी के गावल और ये गाना हमने से अनीता जी मंगले हो वन मोदल पे से अनीता जी करुणा अमृता इतु परिवार खातिर परि और लालजी परिवार खातिर गोगा परिवार खातिर मंगले हवन अनीता जी गाना चला सुनी जा संगे संगे मिलके

जब बत्ती से धुआं निकलने लगी तो तेल डालने से क्या होगा। जब असर के भूत सर से उतर गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा। जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर प्यास

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या

कौन फुलवा फूले लामो रंगलवा सुना नयन जी के गावल विजय बेनी प्रसाद जी मंगले हवानी गाना शामुनी से बेनी प्रसाद परिवार खातिर दूली परिवार खातिर और मोताबा के दोस्त शास्त्री बनुमाली जी खातिर

0: l'occasion lancement MBC Play, prépare-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir à l'essence des grands gagnants pour un pot des tickets de sacane pour un hélicoptère joyride exceptionnel dans Région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et crée un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voir un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini de recevoir par SMS après qu'ils ont créé un compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la sens, participe dans le grand final le 29 mai. MBC Play avec vous partout. Pour plus d'informations, téléphone l'eau 400D 8000. Conditions applicables.
1: Bhojpuri Tarka. Bhojpuri ke sawad, sangeet ke khushbu, Surekha Sangeet. Bhojpuri Tarka.
2: भोजपुरी तड़का में चला हमनी तड़क के सुनवाओ अब जा फिर से गो गाना सुना नयन जी के गावल सुना नयन जी के तीन गो गाना एक बगले से हमने के श्रोता लोग मंगले हवन जाता चला अभी गायत्री जी के पसंद के गाना प्रस्तुत करीला जा गायत्री जी अपन बेटा अजय खातिर माबीपू के अपन मामी कल्याणी मोहन जी खातिर मोतायलों के अपन भाऊजी भाभी शकुंतला जी खातिर और रिनुवेल फ्रांस के अपन सखी गीता बाई खातिर मंगले हवन गाना चला सुनी जा सब कोई मिलके

अब जैसे बोलनी जाता है लोग के हमने के कार्यक्रम में तीन को एक बगले से सुना नयन जी के गाना के फरमाइश सुलबा चलो सुनी जा त्रियोले के हरी प्रेम जी के पसंद के गाना खाले पीले सुना नयन जी के संगे

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: अब कौन जी से तड़का लगाए ला जाने के तड़का तो जूली से लगते जाता है, बड़ी बड़ी स्वाद से लगते जाता। और अभी जन स्वाद आने के सिलसिला बा ये सुदेवी जी के पसंद के गाना से, और सुदेवी जी पसंद कर ले हवन संतोष महादेव जी के वो गाना चला हमने सुदेवी जी के चीत के तरफ से। तो योले के दीदी ललिता के नाम, कुशल परिवार के नाम, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, मालेगा के केशनी, कृषय, कृषिका, लक्षिका और ये राम रतन परिवार के नाम करे थे जाई गाना चला सुनीचा संतोष महादेव जी के।

तो शायद तोहर के भूख बढ़ गल हो या फिर ये गाना सुन के तोहर मुँह में पानी भराल हो। चला अभी कुछ सुनाते जा हमने संभावती धुमन जी के गावल एगो गीत। ये गाना हमने से मंगले हवन ललिता कुशल जी तारा कुशल जी के जन्मदिन के अवसर पर उनकर बेटी विमाला बगल से उनकर दामाद इंद्रदेव बगल से और ललिता जी अपन बेटा अजय के जन्मदिन के अवसर पर मंगले हवन ये गाना उनकर पत्नी आशना बगल से बेटी आयुषी आलिना और आलिया बगल से कुशल परिवार बगल से और ललिता जी गाना अपन बहन सुदेवी जी खातिर मंगले हवन देवीना ज्ञानी खातिर और री प्रभावती जी हरीश जी आत्माराम जी और छोटी जी खातिर और यही गाना मंगले हवन कालबास के देवी जी खातिर और माला राम जवन खातिर और मौसी शुक्ला जी खातिर।

कि मैं आज के गावल ई गाना तनी नखरा नखरा वाला गाना ई गाना हमने बजाओ थे जा पीतों के अमृता जी के पसंद पर सोनिया परी खातिर और ई विशान और मीनाक्षी खातिर।

अभिमन्यु हरपाल जी के गावल गाना हबीस के पसवा होला बाहवन ततन बंतारी कर दवन चल राज लक्ष्मण जी राफ्टोगा से गाना मंगले होना बन पत्नी माला खातिर बेटी प्रगति और प्रार्थना खातिर बहिन मानती खातिर और भगिनी उर्मिला तुलसी खातिर लक्ष्मण परिवार खातिर

और अब चला सुनी जा हमनी अगला गाना और ये अगला गाना श्रीमती जी के पसंद के है श्रीमती जी सुयाक रहलन अपन पूरा परिवार के नाम करत हवन संतोष महादेव जी के गीत

कल्याणी जी के पसंद के गाना है ये महबूब से कल्याणी जी गाना मंगले हवन वेल फ्रांस के अपन भगिनी गायत्री जी खातिर उनकर बेटा अजय खातिर सुनीता देवी दीन जी खातिर और बिंदु कालीचरण जी खातिर

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: और भोजपुरी तड़का में शोभा जी का थोबोन से सुना नयन जी के गावल ललका जी रैया हमी के सब श्रोतालों के नाम करे को जतवन और विशेष तौर पर उनकरा नहीं भूलल हवन जे जे रात के काम करत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी।
3: दादा

भोजपुरी गमट हमने के खून में बारोशन सदा सिंह जी के गावल गाना वीना जी मंगले हवन ई गाना का थो बोन से और अपन दोनों बहन खातिर संध्या और देवीना खातिर

भोजपुरी तड़का तड़का आगे बढ़ी जा हमनी पीति पीति छोकरी संगे और सुदेश भोजू जी के आवाज संगे तो ये गाना हमने बजवाई ला जा मानती जी खातिर मानती जी रहलन वाकवाई गाना मंगले हुआ बन पूरा परिवार के नाम

जन्मदिन के बधाइयां राधा जी के। राधा जी वाकवा रहेलन उनका जन्मदिन की बधाई मिलता उनकर पति यादव जी के तरफ से, उनकर बेटा यश और उनकर बेटी स्नेहा तरफ से। ये गाना सुनाते हैं जी हमने संजय गोविंद जी के गावा है।

संगे हमने आगे बढ़ब जाम के अंतिम गाना लेके पूर्वज के कहानियाँ एल्बम से गाना सुनत है जहाँ हमने कुंती शुक्लाल जी के आवाज़ में और यही गाना संगे हमने के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम समाप्त हो जाए और थोड़ा घड़ी में यानी कि 11 बजे सुनिया जा आज के सुनहरे पल कार्यक्रम पुराना गीत के कार्यक्रम गिनी शाह से आवत हला फिर मिलब जा शुभ रात्रि नमस्ते।

सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ A very good evening to all of you. Namaskar aur Ganesha ka pyar bhara pranam. Ji haan dosto, aaj ki sham hogi yaadon ke naam jahan har geet aapko le jayenge un sunehre palon mein jab mohabbat bhi seedhe dil se hoti thi aur gaane rooh ko chhu jate the. To taiyar ho jaiye purane Bollywood ke amar nagmon ke saath ek khoobsurat safar ke liye kyunki sur kabhi purane nahi hote hain dost, wo sirf aur bhi khaas ban jate hain. To aap sabhi logon ka music lover का बड़े प्यार से स्वागत करना चाहेंगे इन्हीं और सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस. गिनेशा का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.

थैंक यू सो मच जी हमारा साथ देने के लिए ऑन द रेडियो मॉरिशस। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए, पुराने गाने हमेशा दिल को सुकून देते हैं। आज के इस खास शो में हम लेकर आए हैं वो गीत जो हर जनरेशन को जोर देते हैं प्यार और एहसासों के धागे से। जी हाँ, तो फिलहाल के लिए आप मुस्कुराइए क्योंकि ऑल बॉलीवुड मेलोडीज फिर से सजाने वाली हैं आपकी इस महफिल को।

रेडियो के इस रंगीन सफर में आप सभी का हमने तो प्यार से स्वागत कर लिया है जी, जहां हर गाना एक कहानी है। वैसे देखा जाए तो हर लफ्ज एक एहसास और हर धुन एक याद। तो आइए मिलकर महसूस करते हैं पुराने बॉलीवुड संगीत का वो जादू जो आज भी दिलों में जिंदा है, और ये सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर आपकी सुनहरे पल में।

दोस्तों, अगर दिल उदास हो तो पुराने गाने उसका इलाज बन जाता है, और अगर दिल खुश हो तो वही गीत जिंदगी को और हसीन बना देते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस म्यूजिकल जर्नी में, जहां सिर्फ पॉजिटिविटी, प्यार और खूबसूरत यादें होंगे, यानी कि आपकी खूबसूरत यादें फिर से हम ताज़ा करने आए हैं। तो ये अगला नगमा खासकर आपके नाम।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: वैसे देखा जाए एक जमाना था दोस्तों जब गाने सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस किए जाते थे। आज हम लेकर आए हैं वही अनमोल खजाना ओल्ड बॉलीवुड क्लासिक्स का। तो जल्दी से आप आराम से बैठ जाइए, मुस्कुराइए और खो जाइए उन गीतों में जो कभी पुराने नहीं होते और जो आपके दिल के बहुत ही ज्यादा खास और पास होते हैं। तो चलिए, दिस वन गोज आउट टू यू स्ट्रेट अवे फ्रॉम माय हार्ट। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप गिनिशा को इजाजत दीजिए, फिर से मिलेंगे एक और खूबसूरत से सुनहरे पल में ऑन रेडियो मॉरिशस। हमारी तरफ से शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

रेडियो हर पल आपके साथ।